नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। एक महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा। इस दौरान उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग, मौसम से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाने पर बल दिया जाएगा। इससे

श्री चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। आज से 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान और मतगणना 18 तारीख को होगी। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति ने विधान परिषद चुनाव के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगोलिया के उलान बटार स्थित गंदतेग चेगलिंग मठ में अरहत सारिपुत्र और अरहत महामोगलन के पवित्र अवशेषों को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। ये दोनों भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। इन अवशेषों को भारत से 10 दिन की प्रदर्शनी के लिए लाया गया है, जो 10 जून तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मंगोलिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे की उपस्थिति में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख की भारत यात्रा के दौरान इस प्रदर्शनी की घोषणा की थी। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुमन कल्याणपुर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीत लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली की नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शब्द सरुण कर रहे सिपाही गुरचंद सिंह रागियों पासों त्यों शब्द सरुण करते हैं भाई हरजीत सिंह ते भाई शमनदीप सिंह रागी होना दी आवाज़ दे विच।

आकाशवाणी FM बठिंडा FM बैंड 101.1 MHz ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ऐप ते तुसी सर्वन कर रहे हो प्रोग्राम अमृत।

आकाशवाणी FM बठिंडा 101.1 MHz ते इस वेले तुसी सर्वन कर रहे हो प्रोग्राम अमृत वेला।

हाँ खैर जी, मैंने उम्मीद है कि आज दे दिन जी जो भी साथियों से कम उलीके ने, मैं दुआ मांगदा कि तुहाडे ओह कम पूरे हो जाण और तुसी साथियों हमेशा तंदुरुस्त हो और जिंदगी दे साथियों इन्हां रंगां नूं माणदे हुए आकाशवाणी एफ एम बठिंडा दे प्रोग्रामां दे रंगां नूं प्रोग्रामां नूं भी इसे तरह आनंद माणदे रहो। बिल्कुल साथियों, दिन है अज सोमवार और अज भी साथियों तुहाडे नाल करांगे सी ढेर सारियां गल्लां खूबसूरत गीतां दे नाल। वैसे साथियों, अज तो कुछ दिन पहला जिहड़े साडे घरां अंदर गलियां अंदर पिंड दीआं सथां दे अंदर जिहड़ी तकरीबन ज्यादातर साडी गल्लां दा विशा सिर्फ ते सिर्फ एक ही हुंदा सी ते ओह सी साथियों नगर पंचायतां ते नगर निगम दीआं चोणां नूं लैके। बिल्कुल जी, आ बंदा जितूगा, आ हारूगा वगैरह वगैरह। खैर साथियों, हुण तां नतीजा भी आ गया और कुछ पार्टियां दा उम्मीदवार हार गए ते कईआं ने जित प्राप्त कीती है। और साथियों, इस दौरान जिहड़ी सोशल मीडिया ते अखबारां अंदर भी कई थावां ते बहसबाजी जां फिर कुछ थाई झड़पां दीआं खबरां भी लगातार तुसीं सोशल मीडिया ते अखबारां अंदर देखियां होणियां ते पढ़ियां होणगियां। खैर साथियों, असीं तां इही कहना चाहवांगे कि सानू हमेशा अपने पिंड अपने शहर दे अपने वार्ड दे लई हमेशा विकास दी ही गल करनी चाहीदी है और कोशिश करनी चाहीदी है कि असीं जिहड़े साडा आवाम है लोकां दे दिलां नूं जित्तीए। क्योंकि साथियों, सिर्फ आपां कह दईए कि बाजी जित्तण वाला ही सिकंदर नहीं हुंदा, कई वार बहुत कुछ हार के भी असी सिकंदर बन सकते हैं। सो जी, बने रहो 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी एफ एम बठिंडा। शो है जी सजरी सवेर, करदे हां जी प्रोग्राम दा आगाज़ खूबसूरत जिहे गीत दे नाल।

0: अपना डेजर्ट आ गया पर अपनी चैम पे नहीं आई अजय तक।
1: बिल पर अंत पहला तो आवेगी ना।
2: सो गर्ल्स की हो रहा है?
0: बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
3: RBI कहता है कि अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी नु ना दियो। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क पे करो। है कि खान दी चैंपियनशिप सी। RBI कहता है जानकार बनो सचेत रहो।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से ना सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी FM बठिंडा 101.1 MHz ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ

दा जी। बिल्कुल जी, आकाशवाणी एफएम बठिंडा यानी कि 101.1 मेगाहर्ट्ज़ से दोस्तों जारी है जी प्रोग्राम सजरी सवेर दा इस सफर। और साथियों गल करते हैं अज दे खास दिन ते खास तारीख की। जी साथियों, अज है जी 1 जून, यानी कि 1 जून का दिन है और 2026 चल रहा है जी। वैसे जे मैं साथियों 1 जून के इतिहास के पन्नों पर मैं थोड़ा नज़र मारा तो साथियों अज ही दे दिन यानी कि 1 जून 1874 की जे मैं गल करा तो इस दिन साथियों ईस्ट इंडिया जिहड़ी कंपनी है उसनों आधारिक जिहड़े अधिकारिक तौर पर उसनों भंग कर दिता गया सी। उह दिन सी जी 1 जून 1874। इस तरह साथियों 1 जून 1930 भारत दे विच पहली एक जड़ी लग्जरी ट्रेन है डेक्कन क्वीन जड़ी बॉम्बे तो पुणे दे विच जड़ी ओ शुरू हुई सी, ओ भी साथियों अज दा ही दिन सी यानी कि 1 जून 1930 नूं। और साथियों इसे ही तरह एक थोड़ी एक ना पक्षी भी एक जड़ी खबर आई सी सानू 1 जून 2001 साथियों नेपाल दे एक शाही परिवार दे विच एक समूहिक हत्याकांड हुआ सी जिस दे विच राजा राणी ते राजकुमार दे नाल नाल कई जड़े लोग है वह मारे गए सन 1 जून 2001।

एफएम बठिंडा दा प्रोग्राम श्रोता मंच ते देओ अपने नेक सुझा। प्रोग्राम दा समा हर मंगलवार दोपहर 1:15 तो 2 बजे तक अते शुक्रवार दोपहर 12:10 तो 1:10 तक।

श्रोतियों, न सिर्फ भेलपुरी बल्कि इडली, वड़ा पाव, रसम, बिरयानी, बहुत सारा मराठी तड़का लगन वाला है। सिलसिला जायका दे विच जो कि तुसी सुनोगे, मिति 1 जून दिन सोमवार दोपहर 1:15 बजे। इस प्रोग्राम दे विच महाराष्ट्र दे पुणे तो बठिंडा आके वसे भाग्यश्री जी सानू खास तौर ते मराठी अते साउथ इंडिया दे वक वक पकवाना बारे जानकारी देंगे कि किवें असी ओहो अपनी रसोई दे विच खुद बना के खा सकते हैं। सो जरूर सुनना सिलसिला जायका, मिति 1 जून दिन सोमवार दोपहर 1:15 बजे।

0: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन से वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी।
4: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी।

0: दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: 10 राज्यों से राज्यसभा के 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीटें, झारखंड में 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव होंगे। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में 1-1 सीट के लिए राज्यसभा उपचुनाव की अधिसूचना भी आज जारी की जाएगी। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 18 जून को होगा, उसी दिन मतगणना भी होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भाजपा 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी है, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का यह अभियान 30 जून तक चलेगा।
2: यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए की दिशा में एक बड़ी पहल है। इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि सभी मिलकर भाग लेंगे। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोयल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की पहचान करने के बारे में भी किसानों को सजग किया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई प्रमुख पहल की। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
5: योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से।
3: वही न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार के द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है।

0: दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिन में 11 बजे लोकभवन में होगा। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 89 वर्ष की थी। एक श्रद्धांजलि।
2: कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को ढाका में हुआ था। सुमन कल्याणपुर ने 1950 के दशक के मध्य में हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने महान संगीतकारों और गायकों, विशेष रूप से मोहम्मद रफी के साथ सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, नाना करते प्यार शामिल है।
3: नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे।
2: सुमन कल्याणपुर के करियर की एक विशेषता ये थी कि उनकी आवाज महान गायिका लता मंगेशकर से काफी मिलती जुलती थी। इस तुलना के बावजूद सुमन कल्याणपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी मधुर तथा सधी हुई गायकी के लिए वो हमेशा याद की जाएंगी। उनके निधन से भारतीय फिल्म संगीत का एक और स्वर्णिम अध्याय समाप्त हो गया है।

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में लू के दौरान सुरक्षा, सावधानियां और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस चर्चा में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई जिलों में आंधी, बारिश और खराब मौसम की घटनाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन, राहत आयुक्त कार्यालय और संबंधित विभागों को निरंतर निगरानी बनाए रखने और किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 155 रन बनाए। विराट कोहली के नाबाद 75 रन की पारी के बदौलत बेंगलुरु ने 18वें ओवर में ही मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती। वो 15 साल 65 दिन की उम्र में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी गए। कागिसोर अबाडा ने सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की। मनीष पांडे को बैकवर्ड पॉइंट पर टिम डेविड का शानदार कैच लेने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोहम्मद सिराज को सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 172 डॉट बॉल फेंकी। साई सुदर्शन को सबसे ज्यादा चौके लगाने का पुरस्कार मिला। उन्होंने 75 चौके लगाए। वैभव सूर्यवंशी को सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी, 237.3 के स्ट्राइक रेट के साथ सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और 72 छक्कों के साथ सर्वाधिक छक्के लगाने का पुरस्कार भी मिला। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुनीश शर्मा।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपील की कि गर्मी और लू से बचने के लिए खूब पिए देसी पेय। ये खबर जनसत्ता समेत सभी अखबारों में है। पत्र आगे लिखता है कि प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स में बने कीर्तिमानों की सराहना की है। भारत ओमान व्यापार समझौता आज से लागू, भारतीय उत्पादों को शुल्क मुक्त बाजार। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से देते हुए लिखा है, मोदी

0: सरकार के कार्यकाल में पांचवां एफटीए, पश्चिम एशिया संकट के बीच दोगुना होगा द्विपक्षीय कारोबार। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 30 जरूरी दवाओं के दाम निर्धारित करने पर हिंदुस्तान लिखता है कि इससे हड्डी, हृदय रोग और मधुमेह के रोगियों को राहत मिलेगी। सुरक्षित सोशल मीडिया शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है कि भारत में 9 से 17 वर्ष के करीब 76% बच्चे सोशल मीडिया मंच का इस्तेमाल समय बिताने के लिए करने लगे हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित हो रही है और ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता भी काफी घटती जा रही है। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से राहत मिलने और हवा में सुधार पर अमर उजाला ने सचित्र देते हुए लिखा है कि उत्तर पश्चिम में भारत में आंधी तूफान और बारिश के आसार, जबकि नवभारत टाइम्स की सुर्खी है दिल्ली वालों की राहत वाली हवा, 2018 के बाद तीसरी बार सबसे साफ हवा दर्ज की गई। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर के निधन पर स्मृति शेष विशेष में राजस्थान पत्रिका लिखता है 3000 से ज्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गीत उन्होंने गाए। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है रहे ना रहे हम महका करेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनने को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। 10 राज्यों से राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। केंद्र उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज 35 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर का मुंबई में निधन। और क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

और इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से आपको सुनवाएंगे गाने।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सुनते हैं ये गीत। सन ऑफ सरदार 2 फिल्म का ये गीत है नेहा कक्कर की आवाज़।

सन ऑफ सरदार टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज नेहा कक्कर की थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। दोस्तों आज है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी वैश्विक मातृपितृ दिवस, हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है माता पिता के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने का। यह अवसर है माता पिता के प्रेम त्याग और बच्चों के पालन पोषण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस ओर ध्यान दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। जिनकी उंगली थामकर हम चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, वो है हमारे माता पिता, हमारे जीवन की पहली पाठशाला और पहले गुरु होते हैं। उनके प्यार दुलार और मार्गदर्शन से ही हमारा सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, अच्छे भविष्य का निर्माण होता है। आइए हम अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उनके साथ कुछ समय बिताएं, उनका सहारा बने और हमेशा ये एहसास दिलाएं कि वे ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। माता पिता का सम्मान हर रोज किया जाता है, जीवन भर अपना कर्तव्य निभाई जाने वाली हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम आपको ये गीत सुनवाते हैं।

तनु वेट्स मनु फिल्म का गीत कृष्णा की आवाज में आप सुन रहे थे। इस गीत को राजशेखर ने लिखा था और कृष्णा ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम में अब गदर 2 फिल्म का ये गाना आपको सुनवा रहे हैं।

उदित नारायण और साथियों की आवाजों में गदर टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक।

मुल्क फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सफाकत अली और साथियों की आवाजों में। शकील आजमी ने इस गीत को लिखा था, अनुराग सैकिया का संगीत। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। आज है वर्ल्ड मिल्क डे, आज विश्व दुग्ध दिवस है। हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य ये है कि स्वास्थ्य के लिए दूध के महत्व को जानना, डेयरी क्षेत्र के योगदान, या कहें कि डेयरी क्षेत्र के समग्र योगदान को जानना। विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे सिर्फ पोषण के लिए ही नहीं, बल्कि उन लाखों पशुपालकों, डेयरी कर्मियों और वितरण व्यवस्था से जुड़े लोगों के योगदान को भी सम्मान देने की ओर ये दिन याद दिलाता है, ध्यान दिलाता है, जिनके प्रयास से प्रतिदिन शुद्ध दूध हमारे घरों तक पहुंचता है। एक ग्लास दूध में किसान की मेहनत, पशुपालकों का समर्पण और उदारता और त्याग, साथ ही डेयरी व्यवस्था का अथक प्रयास भी इसमें समाहित होता है।

0: विश्व दुग्ध दिवस पर आइए इस अमूल्य योगदान का सम्मान करें और संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन का संकल्प लें। और एक संदेश आपको और सुनाते हैं।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनिधि चौहान और अरिजीत सिंह की आवाजों में हेलीकॉप्टर इला फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं।

सुनिधि चौहान और अरिजीत सिंह की आवाजों में हेलीकॉप्टर इला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इसे स्वानंद किरकिरे ने लिखा था और अमित त्रिवेदी का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, सविता सिंह को नमस्कार।

सही पहचाना आपने। आज के फनकार हैं सुमन कल्याणपुर। सुमन कल्याणपुर की ये विशेषता भी है और अभिशाप भी कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती है। कई बार बड़े बड़े दिग्गज भी धोखा खा जाते हैं सुमन कल्याणपुर और लता मंगेशकर की आवाज में फर्क करने में।

सरगम के अथाह सागर में डूबकर गीतों के सच्चे मोती तलाशने की धुन जिन्हें रही है, वे सुमन कल्याणपुर के गीतों के शौकीन जरूर रहे हैं। सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक अल्हड़पन है, शोखी है और चंचलता है, और है देसीपन जो हर श्रोता को अपनी ओर आकृष्ट करती है।

गीत के बोल में चाहे प्यार की गहराई हो या पश्चिमी धुन पर थिरकता शरारती गीत या फिर शास्त्रीय संगीत का लोच हो, हर तरह से खरी उतरती है उनकी आवाज और यही उनके गायन की विशेषता है।

सुमन कल्याणपुर के हिंदी फिल्मी गायन का सफर शुरू हुआ फिल्म मंगू से। बोल थे कोई पुकारे धीरे, जिसके संगीतकार थे मोहम्मद शफी। इसके पहले उन्होंने बहुत सारे मराठी गीत गाए थे। फिल्म मंगू से जब सुमन कल्याणपुर ने फिल्मी गीतों के विशाल आंगन में कदम रखा तो छत की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सारी सीढ़ियां तलाशनी पड़ी, काफी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन आज उनकी आवाज को पसंद करने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है। अपने

सुमन कल्याणपुर अपने विवाह के पूर्व सुमन हेमाड़ी के नाम से गाती थी। उनका जन्म 28 जनवरी सन 1937 को बंगाल के ढाका में हुआ था, लेकिन संगीत की विधिवत शिक्षा उन्होंने मुंबई में हासिल की।

आइए अब सुने सुमन कल्याणपुर की गायी एक लोरी, जिसमें माँ की ममता है, दुलार है, स्नेह है और है सूरज की रश्मियों की तरह फैल जाने वाली रोशनी।

सुमन कल्याणपुर के गाए गीतों की ये खासियत है कि उनके गीत हर उम्र के लोग, हर वर्ग के लोगों के जुबा पर गुनगुनाए जाते हैं। प्रेम की गहराई में डूबा मन हो या किसी के विछोह में आकुल मन, किसी का इंतजार हो या किसी से मिलन की घड़ी, हर ऐसे वक्त में सुमन कल्याणपुर के गाए गीत उनका साथ निभाते हैं। हर ऐसे वक्त में उनकी जिंदगी से जुड़ जाते हैं सुमन कल्याणपुर के गाए गीत।

दुश्मनी जमकर करो, दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रखना जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। जी हां श्रोतियो, यह मशहूर लाइना साडे प्रसिद्ध कवि बशीर बदर दी हन, जिन्हां ने बहुत सारिया इस तरह दियां नज़मां कवितावां ते गीत लिखे। साथियों, कोई भी कवि शायर किसी मज़हब किसी कौम किसी भाषा का मोहताज नहीं हुंदा। ते इस तरह के ही एक कवि सन बशीर बदर, जिन्हां दा साथियों पिछले वीरवार नूं भोपाल दे विच एक लंबी बीमारी तो बाद जिन्हां दा देहांत हो गया। साथियों, उन्हां दे परिवारिक मैंबरां ने जानकारी दित्ती कि बजुर्ग कवि ने अपने भोपाल घर विच आखिरी सांह लिया। भारत अते पाकिस्तान विचकार 1972 ते शिमला समझौते दौरान बदर ने बहुत कुछ लिखिया जो कि अमर हो गया।

मैं धन्यवाद करना चाहूंगा साड़ी टेक्निकल टीम दा, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा। जी साथियों, इस गीत दे नाल ही प्रोग्राम गीत पिटारा दा वेला हुण मुकदा। अपने रेडियो दोस्त पवन दो इजाजत। आकाशवाणी एफ एम बठिंडा एफ एम बैंड 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते हुण तो थोड़ी देर बाद यानी कि 11 बजे तुसीं सुणोगे हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तों। 11:05 ते साथ रिले करांगे एफ एम रेनबो दिल्ली दे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। इस दौरान सुरक्षा और संपर्क सुविधा सहित भारत और म्यांमा के समग्र संबंधों पर चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिप्रहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान आरंभ करेंगे। उर्वरकों के संतुलित और सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का ये अभियान 30 जून तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में 35 नए मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन में आयोजित हो रहा है। श्री अधिकारी ने ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद 9 मई को पदभार संभाला था। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 41 हो जाएगी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए संवैधानिक रूप से तय 15% की सीमा के अनुरूप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स आज नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के दूसरे संवाद की संयुक्त अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार बैठक में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाने, सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने, रक्षा उद्योग में साझेदारी, सह विकास और सह उत्पादन के अवसरों पर चर्चा होगी। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री लामिछाने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं।

उनका नई दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व सहित कई उच्च स्तरीय राजनीतिक और राजनयिक बैठकों में शामिल होने का कार्यक्रम है। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजे गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मेहंदी लगा लीजिए, थोड़ा तैयार हो जाइए, एकदम नहा धो के फ्रेश पाउडर ऑर्डर लगा के मस्त हो जाइए। और अगर आपने ऐसा नहीं करने का इरादा किया है, मतलब थोड़ा लेट चल रहे हैं, या हो सकता है आप ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, तो भी आपको बता दूं कि आपका मूड एकदम बढ़िया, एकदम फ्रेश होने वाला है, क्योंकि शुरू हो चुका है बीटी विद बीटी, यानी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ, ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। तो रोला तो पहचाने दो फिर।

what to do, आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एंजॉय करते रहना है। आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक, बीटी विद बीटी चल रहा है, यानी बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ। बॉलीवुड में क्या कुछ खास चल रहा है वो सब यहाँ पर होता है, और साथ में होता है एक आपके लिए सवाल जिसका जवाब आसान होता है, और वो आसान सा जवाब आप अगर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमको 11:30 बजे के आसपास जब सवाल पूछा जाएगा तब दे देंगे, तो क्या होगा कि बॉलीवुड सरताज आप बन सकते हैं, और नहीं भी बने तो आपका नाम तो शामिल होगा ही। तो उसके लिए आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा, और बॉलीवुड सरताज अगर बन गए आप तो क्या होगा वो भी मैं बताते चलती हूं कि तब आप हमसे बात करने का आपको मौका मिलेगा, और हमें आपसे बात करने का सौभाग्य मिलेगा, और ऐसे सौभाग्य के लिए का मौका आप खोना नहीं चाहेंगे। उसके लिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा, और उस बात में एक छोटा सा जवाब छुपा होगा जिसका सवाल मैं पूछूंगी 11:30 बजे, और व्हाट्सएप मैसेज करना है, बता ही चुकी हूं, इतनी सी बात है, और इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा बहाना नहीं चलेगा। आप सुनते रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स और इंजॉय करते रहिए धमाकेदार गाने। अब खबरें आएंगी, इतनी जल्दी भी क्या है, इस गाने को एंजॉय कर लेते हैं, लौट कर आते हैं बीटी विद बीटी में। बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ चलता है।

देखिए जी, ये तो हुई मेरी बात, लेकिन आप फिल्मों की बात अगर जानना चाहते हैं तो आने वाली फिल्में कौन सी हैं उसके बारे में आपको एकदम अपडेट रखते हैं, ताकि आप कहीं ऐसा ना हो कोई चीज मिस कर दे अपनी फेवरेट टॉपिक यानी बॉलीवुड के बारे में। तो

फिलहाल आपको बता दूं कि मासूम का सीक्वल आ रहा है, अगर आपको नहीं पता तो जान जाइए, और शेखर कपूर बना रहे हैं, और शेखर कपूर के दिमाग में क्या आ रहा है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर जानिए, क्योंकि उनको ना अभी बहुत सारी चीजें फाइनल करनी है। तो अभी फाइनल करते वक्त उनके दिमाग में क्या आया कि उनकी जो मासूम का जो सीक्वल आ रहा है ना उसमें कौन होना चाहिए, ऐसा कुछ वो सोच ही रहे होंगे शायद, तभी उनको लगा कि वैभव सूर्यवंशी उनको बड़े फिट नजर आ रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी अब आपको जान आप सब जानते हैं कि कितना बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त, लेकिन शेखर कपूर उनके बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं? उनका कहना है कि मासूम में कास्ट करने के बारे में वो सोच रहे थे, लेकिन अब क्या करें, क्रिकेट ने उनको अपना बना लिया है। इतने बड़े वो क्रिकेटर ना होते तो मासूम द न्यू जनरेशन जो उनकी आने वाली मूवी है ना उसमें वो एकदम फिट बैठते। अब इससे लग रहा है कि ये फिल्म जो है कुछ खास तो होने वाली है, कुछ मासूम जैसा होने वाली है, और मासूमियत झलकती है उनको ऐसा लगता है कि इस क्रिकेटर में, शायद इसी वजह से वो इनको लेना चाह रहे थे। और फिल्म के बारे में बात करें तो इसमें फिल्म पहचान, परिवार, प्यार और पलायन जैसे विषयों को कवर करती दिखाई देगी, काफी भावुक होगी ये भी पता चल रहा है। और क्या पता चल रहा है, और क्या जानना चाहते हैं आप वैभव सूर्यवंशी के बारे में? नहीं, फिल्म के बारे में। फिल्म जो आने वाली है मासूम द न्यू जनरेशन, शबाना आजमी उसमें दिखेंगी, मनोज वाजपेयी दिखेंगे और नसीरुद्दीन शाह भी दिखेंगे, यानी पुरानी जो कास्ट है उसमें से ये लोग दिखेंगे। साथ में नित्या मेनन, मनोज वाजपेयी भी दिख रहे हैं और कावेरी कपूर भी नजर आएंगे। अब प्री प्रोडक्शन स्टेज में ये मूवी है, बनकर कब तैयार होगी पता नहीं, लेकिन साल के आखिर में उम्मीद की जा सकती है कि इसकी शूटिंग जरूर शुरू हो जाएगी। बाकी की अपडेट्स के लिए आप और हम कहां ही जा रहे हैं, सुनते रहिए बीटी विद बीटी, आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी यहीं ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्यघर.gov.in।

0: राधेघर।
1: ओह माय गॉड, दिस इज ओरिजिनल।
2: देखिए जी, ये जो गाना है ना, इतनी बार मैं बजाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि चंडीगढ़ में मैं घर मैनिफेस्ट ना कर लूँ। तो चलिए, इससे पहले कि इस गाने को हम प्ले करें, मैं सोच रही हूँ आपको बता दूं कि जून आपका बड़ा अच्छा जाने वाला है। जून का पहला वीक तो खास तौर पर अच्छा जाने वाला है। फिल्मों के लिहाज से अगर बात करें तो वैसे तो मुझे लगता है कि आप आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़े हैं, तो आपका हर वीक हर दिन 2400 घंटे बेहतरीन जाते हैं जब भी आप इससे कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन है दिल से दिल तक। लेकिन आपको बता दूं कि 5 फिल्में कौन सी आने वाली हैं, रिलीज होने वाली हैं। एक्शन, स्पोर्ट्स, ड्रामा और रोमांस का धमाका होने वाला है, तो आपको बताना बनता है। मूवी कौन सी आ रही है बता दूं, पेड्डी। इस समय पेड्डी की चर्चा गरम हमेशा से थी, और इस समय जब रिलीज होने वाली है तो भाई इसकी गर्माहट दिल्ली के टेम्परेचर से भी ज्यादा हो रही है, और खूब बात हो रही है क्योंकि सुपरस्टार, साउथ की सुपरस्टार रामचरण इस फिल्म में है, साथ में जानवी भी है, जानवी कपूर लीड रोल में इनके साथ नजर आ रही है, तो भाई इसकी चर्चा तो होनी ही थी। और अब इस फिल्म के साथ साथ ये मूवी बता दूं 4 जून को रिलीज होगी, और उसके बाद कौन सी मूवी आ रही है बता दूं, अनुराग कश्यप की बंदर आ रही है। बंदर में बॉबी देओल भी हैं, बॉबी देओल हीरो हैं भी क्या कह सकते हैं, लीड एक्टर यही है। समीर मेहरा नाम के टीवी स्टार का ये किरदार निभा रहे हैं, और समीर मेहरा कैसा टीवी स्टार होगा जब देखेंगे तो पता चल जाएगा। कब देखेंगे ये, 5 जून को थिएटर में रिलीज होगी तब देखेंगे। और है जवानी तो इश्क होना है, ये गाना नहीं फिल्म का नाम है, और ये वरुण धवन की फिल्म का नाम है जो आने वाली है। है जवानी तो इश्क होना है, और वरुण इस किरदार, वरुण के किरदार में ये मूवी इर्द गिर्द उनके ही किरदार पर घूमती है, और बाकी कहानी तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, ये बता दूंगी 5 जून की ये भी आ जाएगी। और मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, ये अमेरिकन सुपर हीरो फिल्म है, और इस मूवी को भी आप थिएटर में देख सकते हैं। और अगर आपको भाई हॉलीवुड मूवीज का शौक है तो आपके लिए भी कुछ होना चाहिए ना, तो थिएटर्स में है तो मैंने आपको बता दिया, मतलब इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप एंजॉय करने वाले हैं मूवीज को गर्मियों में ठंडी ठंडी एसी की हवा के साथ। तो देखिए, प्लान कर लीजिए जब आपको जाना है, फिलहाल तो आप यहीं रहिए आकाशवाणी रेनबो पर, बहुत कुछ चल रहा है, बॉलीवुड ढेर सारी अपडेट्स देता है और हम आपको प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए चंडीगढ़ में घर एक लेके डाल ही देते हैं, किराए तो उठा देंगे।

बॉलीवुड की ढेर सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती हैं, लेकिन इसी बीच आपको बहुत सारी जब खुश करने वाली खबरें आती हैं तो कई बार गमगीन करने वाली, खुश करने वाली या दुखद खबरें कह सकते हैं उनके बीच में आ जाती हैं, जब खुशियों के बीच में, तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करें, बॉलीवुड से प्रेम है, आपसे बात तो करेंगे ही, आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। आज महान सिंगर सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही, तो उनकी बात ना करें कैसे हो सकता है। स्वर साम्राज्ञी से इनको नवाजा गया था और स्वर सामग्री लता मंगेशकर को भी कह सकते हैं और कहते ही हैं, लेकिन उन्होंने भी जो जिस तरह से मतलब इनको अप्रिशिएट किया हमेशा, और एक टाइम था जब लता मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर और आशा भोसले, इनका एक टाइम था 50s और 60s का दौर था जब यही सुर सुनाई देते थे, यही आवाजें सुनाई देती थी और एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने सुनाई देते थे, और लगभग सभी जो मेल सिंगर्स हैं उनके साथ इन्होंने गाना गाया है। सुमन कल्याणपुर 31 मई 2026 को 89 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। हाल ही में हमने आशा भोसले को खोया और कुछ साल पहले ही हमने लता मंगेशकर को खोया, उसके बाद इतनी महान गायिका सुमन कल्याणपुर भी आज हमारे बीच नहीं रही, तो ऐसे में हम उनको याद करते हैं। उनके महान गाने हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन हम उनके हिंदी गाने के अलावा हम उनको याद कर सकते हैं बंगाली, मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, राजस्थानी, उड़ीसा, पंजाबी जैसे कई भाषाओं के गीतों में भी, क्योंकि वो लगभग हर जो मेन भाषाएं हैं उनमें गाया करती थी। और आज ये आवाज़ खामोश भले ही हो गई है, लेकिन उनकी जो उनके जो गाने हैं वो हमेशा हमें एंटरटेन करते रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे और हमेशा बने हुए हैं। ये टाइम बहुत पुराना हो गया जब इनके गाने आए थे, लेकिन आज भी जब ये गाने बजते हैं तो हम उसी तरह से झूमते हैं, उसी तरह से गुनगुनाते हैं जैसे वो गाने शुरुआत में आए थे, उतने ही रिफ्रेशिंग लगते हैं ये गाने। और कई बार लता मंगेशकर को और सुमन कल्याणपुर को सुनते थे ना तो समझ ही नहीं पाते थे, कि एक बार कंफर्म तो ज़रूर करना पड़ता था कि ये वाकई सुमन कल्याणपुर है, ऐसा लगता था कि लता मंगेशकर गा रही हैं। ये आवाज़ें इतनी ज़्यादा मिलती थी, बेहतरीन क्वालिटी की आवाज़ें। लेकिन क्या करें, अब जब वो हमारे बीच नहीं है तो हम उनको रोते रोते विदा नहीं करेंगे, उनके गानों के साथ, उनके जो ज़बरदस्त नटखट गाने थे उनको प्ले करके उनको खुशी खुशी विदा करें तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो किया है बॉलीवुड के लिए वो हमेशा हमको खुश करने के लिए किया है, हम एंटरटेन करने के लिए किया है, तो हमें लगता है कि हम उनके गानों के जरिए उनको अगर अपने दिल में बसाएं तो इससे अच्छी श्रद्धांजलि हो नहीं सकती है। एक गाना लौट कर आती हूँ और बातें करते हैं।

नमन कल्याणपुर ने बॉलीवुड में लगभग 740 गाने गाए हैं, 740 गाने, और मोहम्मद रफी के साथ तो लगभग 140 गानों में ड्यूएट किया। तो एक गाना तो आपने सुन ही लिया और मुझे लगता है एक और गाना बनता है। और अगर बात करें और जो उनके साथ गाने वाले मेल सिंगर्स की, तो लगभग सभी के साथ उन्होंने एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं। और उनमें नाना करते प्यार तुम ही जो आपने सुना, तुमने पुकारा हम चले आए, अजहुन आए बलमा बालमा, इतना है तुमसे प्यार मुझे, तमाम गाने हैं। ये तो मोहम्मद रफ़ी के साथ हम कह सकते हैं, लेकिन और भी जो सिंगर्स हैं उन सब के साथ उन्होंने ज़बरदस्त डुएट गाने गाए और हिट थे, सुपर डुपर हिट थे। और हम कई बार ये सोचकर भी उनको सुनते थे कि ये शायद लता मंगेशकर की आवाज़ है, लेकिन वो हुआ करती थी सुमन कल्याणपुर की आवाज़। और ज़बरदस्त ये आवाज़ हम सब के बीच हमेशा गुनगुनाएगी, हम हमेशा उनको याद करेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हम मिस करेंगे फिजिकली उनको, हमेशा मिस करेंगे। मन्ना डे के साथ अगर बात करें तो उनके युगल गीत न जाने कहाँ हम थे, और एक ये किसने गीत छेड़ा, आँखियों का नूर है तू, मेरा प्यार भी तू है, दिल ने फिर याद किया, कई गाने हैं जो उन्होंने गाए हुए हैं। और बेहतरीन गीतों की अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया, ये लिस्ट इतनी लंबी है कि मुझे लगता है कि ख़त्म नहीं होगी, लेकिन टाइम की लिमिटेशन है। और मैं चाहती हूँ कि हम उनको हमेशा खुशी खुशी उनको याद करें, उनके गानों को याद करें। फिजिकली वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन फैंस के दिलों में हमेशा वो रहेंगी और उनके गाने हमेशा अमर रहेंगे। तो उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, साथ में ये गाना भी सुनते हैं जो मोहम्मद रफ़ी के साथ सुमन कल्याणपुर का डुएट है।

कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि बबीता ने आज धोखा दे दिया? हाँ, बॉलीवुड सरताज का सवाल ही नहीं पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे बिल्कुल याद है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा लेट हो जाता है, तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि आज का जो सवाल है वो बिल्कुल आने के लिए तैयार है। आप सब अपना मोबाइल उठा लीजिए व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, अगर आंसर सही कर दिया तो आप बॉलीवुड सरताज बन सकते हैं और हमसे बात करने का मौका मिल सकता है। अगर नहीं भी बात करने का मौका मिला तो आपका नाम शामिल जरूर होगा, ये तो बात पक्की है। तो फिलहाल आपको फॉलो करना है जैसा मैं कहूं वैसा। तो अपकमिंग फिल्म बंदर की मैंने बात की और इसमें बात की कि बॉबी देओल मुख्य किरदार में है, और साथ में आपको ये भी बता दिया था मैंने कि इस किरदार का नाम क्या है। बस यही आपको लौट कर हमें बताना है व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कि अपकमिंग फिल्म बंदर में बॉबी देओल के किरदार का नाम क्या है। और इनका नाम यानी किरदार का नाम लिखने से पहले सबसे पहले अपना नाम और शहर का नाम, ताकि आपका मैसेज शामिल हो। उसके बाद आंसर लिखकर ये लिखिए जो किरदार का नाम है उनका, और उसके बाद भेजना है 9868107070 पर। 9868107070। आपके साथ हूं मैं बबीता।

देखिए जी, ऐसे ऐसे एक्टर्स हमारे बीच में हैं और हर दौर में कुछ एक्टर्स ऐसे जरूर होते हैं जिनके बिना गुजारा नहीं होता। मतलब कुछ भी अगर एक वैरायटी अगर आपको चाहिए ना, तो एक एक्टर होगा जिसका नाम आपको लगेगा कि ये एकदम फिट बैठेगा, और उनमें से एक है हमारे मन्नू भैया। मन्नू भैया किस तरह के किरदार में फिट हो सकते हैं आप इमेजिन करिए, जब इस वक्त धुरंधर में जबरदस्त धुआंधार उन्होंने जो एक्टिंग करके दिखाई और साथ में एकदम डिफरेंट रोल में, तो मतलब मजा ही आ गया देखकर। ऐसा लगा कि क्या डिफरेंट रोल्स ये कर सकते हैं, हमें तो अंदाजा ही नहीं है। और ना सिर्फ उसमें, बल्कि हम मन्नू भैया की बात कर रहे हैं तो तनु वेड्स मनु को कैसे भूल सकते हैं। तनु वेड्स मनु हो या तनु वेड्स मनु रिटर्न्स हो या फिर थ्री इडियट वाले हमारे मतलब जो एक्टर हैं, मतलब एक से बढ़कर एक आर माधवन के जो रोल्स हैं वो याद करेंगे। रंग दे बसंती हो, गुरु हो, थ्री इडियट्स हो, मतलब एक से बढ़कर एक नाम है। और कई सारी भाषाओं में वो एक्टिंग करते हैं, सिर्फ हिंदी मूवीज की मैं बात कर रही हूं। और जब इतने जबरदस्त एक्टर का बर्थडे आए तो आकाशवाणी रेनबो पर बॉलीवुड रील्स चल रहा हो, उनको विश नहीं किया जाए, हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज हम अपने मन्नू भैया को कुछ उन्हीं के अंदाज में, मतलब चुलबुले अंदाज में, जिसके लिए वो ज्यादा जाने जाते हैं, विश करते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आने वाली फिल्मों के लिए, और चाहते हैं कि वो हमारा एंटरटेनमेंट इसी तरह से अलग अलग किरदारों के जरिए करते रहें। तो मन्नू भैया ढेर सारी शुभकामनाएं, आई मीन आर माधवन जी, आपके जन्मदिन की। अब मन्नू भैया क्या करी है फिल्मों में, पता नहीं, बताएंगे। बॉलीवुड ट्रेल सुनते रहिए, सब पता चल जाएगा। फिलहाल तो आप सुन रहे हैं बीटी विद बीटी यानी बॉलीवुड ट्रेल्स बबिता त्रिपाठी के साथ, उन्हीं ऑन आकाशवाणी रेनबो। दिल से दिल तक एंजॉय करते रहिए।

0: देखा, अरे काहे को जानना है आपको कि मन्नू भैया का करी हैं? आप अपने काम से काम मतलब रखा ना। चल आगे बढ़ी। तो मैं ये कह रही थी कि बॉलीवुड रेल्स चल रहा है और आपके लिए जो सवाल पूछा है, और रिपीट कर दूं क्या? चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, तो उससे पहले मैं आपको सवाल एक बार फिर से बता देती हूं। वैसे जवाब मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं ऑलरेडी। अपकमिंग फिल्म बंदर में बॉबी देओल के किरदार का नाम क्या है, ये आपको आंसर लिखना है। लेकिन उससे पहले अपना नाम, अपना शहर का नाम लिखना है ताकि आपका मैसेज शामिल हो सके। व्हाट्सएप मैसेज करना है 9868107070 पर। एक ब्रेक, लौट कर आते हैं, आपके नाम शामिल करते हैं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

जैसा कि मैंने कहा था कि लौट कर आऊंगी, आप सबके नाम शामिल करूंगी, लेकिन आपको मैंने ये भी कहा था कि सबसे पहले अपना नाम और शहर का नाम लिखना है। कैसे भूल जाते हैं, हर बार जब भूल जाएंगे तो सजा तो मिलेगी, बराबर मिलेगी, आपका नाम शामिल क्या पता ना भी हो। तो देख लीजिए, अब आप आगे से ध्यान रखा करिए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं आप सबके मैसेजेस शामिल करने की पूरी कोशिश करती हूं, दिल ही मेरा बहुत अच्छा है, क्या कर लूं अब मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं भाई, कंप्यूटर हमारा बढ़ता ही जा रहा है आगे और दिखाता ही जा रहा है इतने सारे मैसेजेस। कौन करता है भाई? आप लोग करते हैं, आप लोगों का प्यार है। हैरी सिंधु बटिंडा से कर रहे हैं, बसंत तोमर मेरठ से, प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से, और समीना शेख मुंबई से, और दिनेश अजय और भी आगे नाम, अमर कॉलोनी कहां पर है पता नहीं, हमारा कंप्यूटर उतना ही दिखा रहा है। सबसे पहले अपना नाम और शहर का नाम लिखते तो आज आपका आपके शहर का नाम भी शामिल हो चुका होता। ये सुनील कुमार यादव और मिंटू यादव कहां से लिख रहे हैं, ये भी इन्होंने बाद में लिखा है। और ये कौन है भाई, अपना नाम ओम प्रकाश पहले लिखते हैं उसके बाद शहर का नाम, उसके आगे की बातें नहीं लिखते हैं। और आंसर के बाद लिखा हुआ है सलीम मलिक मेरठ से सही जवाब के साथ, और उसके बाद सही जवाब भटिंडा से मिसेस धर्म भाटिया भी कर रही हैं, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से कर रहे हैं, और इरशाद कहां से कर रहे हैं, राजस्थान से, उपेश शर्मा जम्मू कश्मीर से, कुरेश रिजवान का मैसेज दिख रहा है, अर्चना राजपाल मुखर्जी नगर दिल्ली से, चित्रंजन सक्सेना का भी मैसेज आ रहा है, और नाम नहीं लिखा तो कैसे कॉल करेंगे, कॉल करने की बात कर रहे हैं आप और उसके बाद नाम भी अपना नहीं लिख रहे हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा। सही जवाब दिया है आपने, थैंक यू सो मच, नाम भी लिखिए तो अच्छा लगेगा। राजकुमार गुप्ता मेरठ से लिख रहे हैं, और जिन्होंने भी लिखा है उनका नाम नहीं दिख रहा है, बाद में लिखा है, गलत जवाब। पटना बिहार से प्रिंस का मैसेज है, और दानिश कतौली से मैसेज कर रहे हैं, जाहिद मुजफ्फरनगर से मैसेज कर रहे हैं, और नेक्स्ट मैसेज किसका दिख रहा है भाई, ये सब ने गलतियां की है, मैं कुछ नहीं जानती, मैं नहीं देखने वाली किसी का मैसेज खोल के, क्योंकि आपने अपना नाम अपने शहर का नाम पहले नहीं लिखा है। रवि मेरठ से लिख रहे हैं, और शालू भी मैसेज कर रही है, दिल्ली से ही इनका कहीं से आता है। अनुज राठी मेरठ से कर रहे हैं, आसिफ सैफी मेरठ से कर रहे हैं, शु कटारिया पवन कटारिया पंजाब से, सुदर्शन मुखी अनीता मुखी दिल्ली से, और इतनी लंबी चौड़ी बात लिखने के लिए किसने कहा था आपको, मोहम्मद सरफराज।

जालम आपका नाम छुप गया था, ढूंढना पड़ा। प्रदीप सागर बसंत विहार से लिख रहे हैं और उमेश खयाला से लिख रहे हैं। फैजल का भी मैसेज कहीं से तो दिख रहा है, उत्तर प्रदेश से। और भी जो मैसेजेस है ना, उनकी गलती यही है कि उन्होंने अपना नाम, अपना शहर का नाम पहले नहीं लिखा। लेकिन हाँ, आप सब में से कोई तो बॉलीवुड सरताज बनेगा, जरूर बनेगा। फोन उठा लेना, नहीं तो मेरे इस दावे पर पानी फिर जाएगा ना। आप ही लोग ऐसा काम करते हैं, फोन उठाइएगा और नेटवर्क में रहिएगा, रेडियो बंद कर दीजिएगा। क्या पता कॉल आप ही को जा रही हो बॉलीवुड सरताज बनाने के लिए। सुनते रहिए बीटी विद बीटी, लौट कर आती हूँ होपफुली बॉलीवुड सरताज के साथ।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों,

जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

0: आकाशवाणी रेनबो और आप सब कह रहे हैं हमारे बॉलीवुड सरताज कहाँ है भाई, और टाइम बता रहा है कि बॉलीवुड सरताज अब नहीं तो कब आएंगे भाई, टाइम तो इतना ज्यादा हो चुका है। लेकिन हम ऐसे कैसे हार मानने वाले हैं, हम तो ढूंढ कर ही लाते हैं। और आज के बॉलीवुड सरताज कौन है वो हमेशा की तरह खुद ही बताएंगे। हेलो
1: जी मैम,
0: कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं आबिद बोल रहा हूँ, खान आबिद, मेरठ से।
0: मेरठ से खान आबिद का बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर।
1: जी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम।
0: बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
1: आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा आपकी एंकरिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे।
0: सो स्वीट।
1: मेरा भी दिल करता है मैं भी ऐसी एंकरिंग करूँ।
0: ऐसे ही मेरा एक बार दिल करता था और फिर मैं आरजे बन गई। आप भी कोशिश कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ है तो, है ना? ये जुनून जोश होना चाहिए और अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो उसके लिए ट्राई करना चाहिए। क्या पता आप भी बॉलीवुड सरताज बनने के बजाय बॉलीवुड सरताज बनाने वाले हो जाए।
1: बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है मुझे।
0: सो स्वीट
1: आपकी वॉइस वगैरह।
0: तो आबिद, चलिए हम जो फॉर्मेलिटी है वो पूरा कर लेते हैं कि हमने जो सवाल पूछा था, बंदर फिल्म में बॉबी देओल के किरदार का नाम क्या है, आपने सही जवाब दिया है। एक बार ऑन एयर बता दीजिए।
1: बॉबी देओल का नाम है समीर मेहरा।
0: समीर मेहरा, बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ बनते हैं आबिद आज के बॉलीवुड सरताज। कॉन्ग्रेचुलेशंस खान आबिद जी।
1: जी, थैंक यू मैम।
0: और आबिद, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ना, आप क्या करते हैं और कैसे आकाशवाणी रेनबो के साथ दिन भर जुड़े रहते हैं?
1: जी, मैं तो डेली सुनता हूँ उसको, डेली ऑन एयर आपका प्रोग्राम सुनता हूँ डेली।
0: कैसे सुन पाते हैं, मतलब आपकी जॉब है, आप कुछ अपना काम करते हैं?
1: नहीं,
0: क्या
1: शॉप है मेरी अपनी क्रिकेट की।
0: ओके।
1: उसमें भी क्रिकेट का सामान होता है मेरे पास।
0: अच्छा, चलिए ठीक है। तो आबिद, मुझे लग रहा है कि आपके पास आना चाहिए, मेरठ में ही तो है, ज्यादा दूर नहीं है आपसे।
1: जो क्रिकेट आइए, वो मोस्ट वेलकम मैम।
0: क्रिकेट के आइटम्स है
1: ये तो बहुत अच्छा लगेगा,
0: उस पर कुछ कंसेशन तो दे ही देंगे, है ना?
1: बिल्कुल।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़े रहिए, ठीक है? और बॉलीवुड सरताज के बनने के लिए एक बार फिर से मुबारकबाद। थैंक यू, बाय बाय। तो ये थे मेरठ वाले खान आबिद जो आज बने बॉलीवुड सरताज। आप भी जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो के साथ और एक से एक शोज एंजॉय करते रहिए। प्ले इट कूल लेकर थोड़ी देर में निहारिका आ जाएंगी, उसके बाद फिर एक खास प्रोग्राम आता है रेनबो हेल्पलाइन। एक बार फिर से आपके साथ होंगी मैं बबीता त्रिपाठी और साथ में होंगे हमारे साथ आज के एक्सपर्ट अनिल।
2: हुणे तुसी सुन रहे सी आकाशवाणी FM रेनबो दिल्ली दे प्रसारण। ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਮਾਂ 11:59 ਤੇ 30 ਸਕਿੰਟ 12 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੇ 12:05 ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਪਲ ਕਰੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हो रही है। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए ये चर्चा हो रही है। म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति का काफी व्यस्त कार्यक्रम है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिमंडल का पहला बड़ा विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्रिपरिषद के 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह का आयोजन कोलकाता के लोक भवन में हुआ। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभागों का आवंटन बाद में घोषित किए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन आज से 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। इस महीने की 18 तारीख को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। होटल, रेस्तरों और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के व्यवसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 4 प्रमुख शहरों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। घरेलू उपयोग में आने वाली गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की ने JEE एडवांस्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 56,880 उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 10,107 छात्राएं हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 6 वर्षों में इस योजना से लाखों रेहड़ी पटरी वालों को आसान ऋण मिला है। इसके माध्यम से अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण वितरित किए गए। शहरों और कस्बों में इस पहल के माध्यम से 75,00,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 17,800 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। अफ्रीकी संघ ने इबोला से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आपातकालीन निदान, उपचार और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। संघ की स्वास्थ्य एजेंसी अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि ये सामान युगांडा में पूर्वी क्षेत्रीय समन्वय केंद्र के माध्यम से भेजा गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 41 अंक बढ़कर 74,816 पर था, जबकि निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अब से थोड़ी देर पहले ये 23,551 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

आकाशवाणी दे विशेष प्रसारण संबंधी सूचना। आकाशवाणी दा समाचार सेवा प्रभाग भारत सरकार दे 12 साल पूरे होण ते मिति 1 जून 2026 तो मिति 21 जून 2026 तक प्रसारित करेगा विशेष प्रोग्राम। ए प्रोग्राम तुसी शाम 7:10 तो 7:45 तक सुन सकोगे। इस विशेष प्रसारण दे चलदिया शाम 7:30 आकाशवाणी जलंधर तो प्रसारित किते जान वाला पंजाबी विच खबरां दा बुलेटिन हुण तुसी सुनिया करोगे शाम 7:00 तो लेके 7:10 तक। इस दे नाल ही तुहानू दस दईए प्रोग्राम शाम सुहानी दा समा मिति 1 जून तो 21 जून तक बदल के रात 7:45 तो 8:15 तक कर दिता गया है। अते NCERT वालों प्रायोजित प्रोग्राम उमंग हुण प्रसारित होया करेगा रात 7:15 तो लेके 9:45 तक। प्रोग्रामा दे समय विच ए सारे बदला मिति 1 जून 2026 तो लेके मिति 21 जून 2026 तक लागू होणगे। सूचना समाप्त हुई।

श्रोतियों, न सिर्फ भेलपुरी बल्कि इडली, वड़ा पाव, रसम, बिरयानी, बहुत सारा मराठी तड़का लगन वाला है। सिलसिला जायका दे विच जो कि तुसी सुनोगे, मिति 1 जून दिन सोमवार दोपहर 1:15 बजे। इस प्रोग्राम दे विच महाराष्ट्र दे पुणे तो बठिंडा आके वसे भाग्यश्री जी सानू खास तौर ते मराठी अते साउथ इंडिया दे वख वख पकवाना बारे जानकारी देंगे कि किवें असी ओह अपनी रसोई दे विच खुद बना के खा सकते हैं। सो जरूर सुनना सिलसिला जायका, मिति 1 जून दिन सोमवार दोपहर 1:15 बजे।

आकाशवाणी दे विशेष प्रसारण संबंधी सूचना। आकाशवाणी दा समाचार सेवा प्रभाग भारत सरकार दे 12 साल पूरे होण ते मिति 1 जून 2026 तो मिति 21 जून 2026 तक प्रसारित करेगा विशेष प्रोग्राम। ए प्रोग्राम तुसी शाम 7:10 तो 8:15 तक सुन सकोगे। इस विशेष प्रसारण दे चलदिया शाम 7:30 आकाशवाणी जलंधर तो प्रसारित किते जान वाला पंजाबी विच खबरां दा बुलेटिन हुण तुसी सुनिया करोगे शाम 7:00 तो लेके 7:10 तक। इस दे नाल ही तुहानू दस दईए प्रोग्राम शाम सुहानी दा समा मिति 1 जून तो 21 जून तक बदल के रात 7:45 तो 8:15 तक कर दिता गया। NCERT वालों प्रायोजित प्रोग्राम उमंग हुण प्रसारित होया करेगा रात

0: आकाशवाणी दे विशेष प्रसारण संबंधी सूचना। आकाशवाणी दा समाचार सेवा प्रभाग भारत सरकार दे 12 साल पूरे होण ते मिति 1 जून 2026 तो मिति 21 जून 2026 तक प्रसारित करेगा विशेष प्रोग्राम। ए प्रोग्राम तुसी शाम 7:10 तो 7:45 तक सुन सकोगे। इस विशेष प्रसारण दे चलदिया शाम 7:30 आकाशवाणी जलंधर तो प्रसारित किते जाण वाला पंजाबी विच खबरां दा बुलेटिन हुण तुसी सुनिया करोगे शाम 7:00 तो लेके 7:10 तक। इस दे नाल ही तुहानू दस दईए प्रोग्राम शाम सुहानी दा समा मिति 1 जून तो 21 जून तक बदल के रात 7:45 तो 8:15 तक कर दिता गया अते NCERT वालों प्रायोजित प्रोग्राम उमंग हुण प्रसारित होया करेगा रात 7:15 तो लेके 9:45 तक। प्रोग्रामा दे समय विच ए सारे बदला मिति 1 जून 2026 तो लेके मिति 21 जून 2026 तक लागू होणगे। सूचना समाप्त हुई।
1: आउन सुनदियां।

0: बड़ा सा बैटर बना के फिर उसको गोले बना के एक रोटी की तरह बनाओ कपड़े पे, फिर वो कपड़ा ऐसे ही तवे पे उलट करके फिर इसको एक चीले की तरह सिकवा के फिर आपका ये थाली पीठ बनेगा
1: जी।
0: अभी जो था थेपले जो आपने बोले, ये थेपले क्या है, ये गेहूं के आटे से बनेंगे, ये बेल के बनेंगे। जिसको थाली पीठ नहीं आता वो थेपले बनाता है, टेस्ट वाइज सेम ही है बट अंतर है, ऐसा नहीं है 99% नहीं 50% अंतर है। बट थेपले क्या है, इसमें आप इसमें भी सेम ही चीज है, आप इसमें कसूरी मेथी डालो, मेथी डालो, धनिया डालो, हरी सब्जी जो मर्जी डालो, जैसे पालक हो गया, कोई भी हरी सब्जी बारीक चॉप करके इस आटे में मिक्स कर दो। हमारी जरूरत के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, अजवाइन हो गया, जीरा हो गया, ये सारे डाल के अच्छे से रोटी की तरह बेल के घी लगा के अच्छे से सेक के फिर आपके थेपले भी रेडी है
2: जी, बहुत अच्छे। असी स्प्राउट्स वाल आने आ, असी अंकुरित जो दालां, चने, छोले मोठ हुंदे आ, इन्हां नूं भिओं के रात भर छड्डदे आ, फिर ये अंकुरित हो जाते हैं, उदों असी इन्हां नूं स्प्राउट कहने आ। स्प्राउट्स नूं सीधे भी खाया जाता है जां स्प्राउट तो बहुत सारिया चीज़ा भी बना लिया जाती हैं। स्प्राउट तो महाराष्ट्र दे विच एक सब्जी जिहड़ी उह तैयार की जाती है, मिसल कहिंदे आ उसनूं। तुसीं सानूं दस्सो इहदे विच असी किहड़े किहड़े इनग्रीडियंट्स लैने हैं, किहड़ियां चीज़ां लैणियां ते उहनां नूं किवें ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਿਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ।
0: ਸਪਰਾਊਟ ਅਭੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਛੋਲੇ ਖਾਏ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੇ ਮੋਠ ਕੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਅਭੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਏ ਜਾਤੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਠ ਗਰਮ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਛੋਲੇ ਇਸ ਲਈ ਖਾਏ ਜਾਤੇ ਹੈ। तो स्प्राउट बनाने के लिए उसको हमें कम से कम 4 घंटे से 5 घंटे पानी में भिगो के रखने, फिर बाद में उसको रात भर बांध के एक कपड़े में, कॉटन, सूती कॉटन में
1: जी।
0: उसको बांध के रखो, फिर उसमें हल्के हल्के बाल आएंगे यानी अंकुरित होगा, वो स्प्राउट्स होंगे। तो उसको आप सब्जी बनाएंगे, तो सब्जी इसके कैसे बनेगी, इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं है, हल्की सी एक चीज की चेंज की वजह से सब्जी का टेस्ट चेंज होता है। तो यहाँ पर आप प्याज वगैरह रेडी, प्याज, टमाटर, हल्का सा हमारा बेसन यहाँ पे लगेगा। तो जब हम तेल में तेल गरम करेंगे तो उसमें सरसों, जीरा, कड़ी पत्ता हर टाइम महाराष्ट्र में यूज़ होता है हर सब्जियों में, हर रेसिपी में, मीठा छोड़ के, यानी नमकीन जो तीखा है उसमें कड़ी पत्ता पड़ेगा, तो कड़ी पत्ते का एक अलग अपना स्वाद होता है। उसके बाद हमें टमाटर और प्याज डालना है, लाल मिर्च पाउडर। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, जो बेसन है, लाल मिर्च से पहले आपको बेसन जो है, बेसन 1 चम्मच लेना है, वो तेल में डालना है, गरम तेल में, वो हल्का सा ब्राउनिश होगा यानी उसका झाग आएगा, तो उस झाग में आपको लाल मिर्च पाउडर डालनी है। यहाँ पे कांदा, लहसुन, मसाला अगर अवेलेबल है तो वो डाल सकते हो, नहीं तो उसे स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे गरम मसाला डाल दो, फिर उसमें हमारे जो स्प्राउट बने हुए हैं वो डाल दो, हल्की सी मूंगफली, दो चार मूंगफली डाल दो, चाहे आपको पसंद हो ना पसंद हो, और स्प्राउट हमारे डाल के बस ढक्कन रख दो कढ़ाई के ऊपर, पानी डाल के 15-20 मिनट लेंगे हमारी मोठ पकने के लिए, फिर आपकी ग्रेवी भी रेडी है। उस टेस्ट के अनुसार आप मिर्च भी डाल दीजिए और नमक भी डाल दीजिए।
2: असी एदे च पानी कितना पाउणा है भाग्यश्री?
0: पानी अगर आप कुकर में डालते हो तो दुगना डालना है, अगर आप कढ़ाई में पका रहे हो तो फिर दुगना ठीक है, यानी कम वो कम ज्यादा होता रहता है।
2: ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਘਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਪਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਕੌੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜੀ?
0: ਅਭੀ ਪਕੌੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੇ ਵੀ ਪਿਆਜ ਕੇ ਪਕੌੜੇ, ਕਾਂਦਾ ਭਜੀ ਇਸ ਨਾਮ ਸੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ, वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी होते हैं। तो अभी यहाँ पे कांदा भजी अगर आप खाओगे यानी प्याज के पकोड़े खाओगे तो इसमें एक चीज है, वहां पे पानी ऐड नहीं होता, बेसन में बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है
1: जी।
0: वो कैसे ही, जैसे प्याज आपका काट के आपने उसके ऊपर नमक, लाल मिर्च पाउडर अच्छे से स्मैश करके रखना है, फिर आपका प्याज पानी छोड़ देगा ठीक है, नमक की वजह से। फिर यहाँ पे आप बेसन ले लो, उसी बेसन जितना क्वांटिटी, जैसे अपने 2-4 प्याज लिए तो आधी कटोरी आपको बेसन लगेगा, फिर उसी में आपको मिक्स करना है। इसमें आप सौंफ डाल लिए, अजवाइन डाल दीजिए, जीरा डाल दीजिए, ये हो गया बारीक कटी हुई।

0: मिर्च भी आप डाल सकते हो या फिर अलग से फ्राई की हुई मिर्च भी पकौड़ों के साथ रख सकते हो। तो अभी जब आटा आप मिक्स कर रहे हो, जो प्याज का पानी छूटा हुआ है, नमक का पानी छूटा हुआ है, तो उसमें हल्का सा 2 या 4 छींटे पानी के लगेंगे। ऐसा नहीं कि आप एकदम से नॉर्मल पकौड़ों की तरह एकदम बेसन का घोल बनाना है और पानी डालना है, बिल्कुल भी नहीं। हल्के सा छींटा लगेगा, आधा कप पानी लगेगा, उसमें मिक्स कर लो और फिर आपके पकौड़े फ्राई कर लो।
1: जी
0: फिर यहाँ पे बिना पानी की वजह से आपके ये पकौड़े बहुत ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लगेंगे और सोप का एक अलग सा मजा, उसमें टेस्ट फ्लेवर आएगा। उसके बाद अरबी के पत्ते, अभी पंजाब में अरबी के जो जड़े होते हैं वो खाए जाते हैं, महाराष्ट्र में अरबी के पत्ते की वड़ी बना के खाते हैं। यानी इसकी वैसे तो 2-3 तरीके के प्रोसीजर है, तरीका है अपना अपना, एक लेंदी है, एक शॉर्टकट है। अगर शॉर्टकट में बात की जाए तो अलग अलग एक पत्ता आपका बेसन के घोल में, यहाँ पे बेसन का घोल है, इसमें आपको नींबू, सिरका और शक्कर, ये चीजें भूलनी नहीं है। क्यों नहीं भूलनी? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका जो अरबी का पत्ता है वो कौन सा है, कैसे है, वो आपको नहीं पता लगता। बट बेसिकली नॉर्मली एक होता है, सब्जी वाले अपने आप से अच्छे से ही पत्ते लेके आते हैं, बट कभी कभी एक आध पत्ता हो ही भी जाता है। तो इसलिए ये चीज ना हो, वो जीभा हमारी काटे ना, वो फील ना हो, इसलिए उसमें आपको नींबू, सिरका और शक्कर, ये चीज ऐड करनी है
1: जी
0: बेसन के घोल में। अभी बेसन का घोल ये इतना भी नहीं जो एकदम से पतला हो, बैटर ही हो, ठीक हो, जैसे एक क्रीमी टेक्सचर में। एक एक पत्ते को आप फोल्ड करके या बारीक काट के डाल दो, चाहे एक एक पत्ता लगा के उसको फोल्ड करो, ठीक है, और फिर उसको फ्राई करो। आपका ये वहां पे अरबी के पत्ते के पकोड़े भी रेडी हो जाएंगे। हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये रेयर होते हैं, ये चीजें अभी हम भूल रहे हैं, तो ये खाना जरूरी है। अगर मिलते हैं तो एक आध बार जरूर ट्राई करना चाहिए।
1: बागेश्वरी, अरबी दे पत्तियां दे उत्ते यह लेप लगा के उसनों अंदर दी तरफ फोल्ड करना
0: फोल्ड
1: है,
0: करना है, हाँ
1: ये सानू दसो, फोल्ड करके उन्हों बनना है या किमें करना है? क्योंकि जदों उस तेल च पावांगे तां वो फोल्ड कीता होया पत्ता जे तेल च खुल गया तां किमें करांगे, वो सानू दसो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी भूल गई। जो पत्ते हैं, जो पत्ते की क्या बोलेंगे आप उसको,
1: डंठल बोलते हैं पंजाबी
0: हाँ
1: में।
0: डंठल बनते हो, जो स्टिक्स होती है उसकी, जो नसें होती है, तो वो काट के उसको बेलन से प्रेस करना है। बेलन से प्रेस करेंगे तो उसकी जो टाइटनेस है, जैसे आप बोल रहे हो कि उसको खोलने के बाद वो सॉरी तलने के बाद वो खुल जाएगा तेल में, तो ये नहीं होगा, और उसमें जो कड़वाहट है जो भी है वो निकल जाएगा।
1: यानी कि तुहाडा कहना है कि पत्तियां नु बेल लिया जावे,
0: हाँ
1: पत्तियां दे उत्ते पेस्ट लाउन तो पहला उन्हां नु बेल लिया जावे, बेलन दे नाल पत्तियां दे विचों रस जां उन्हां दा पानी जिहा निकल जूगा ते ओह आपस च जुड़ के रहणगे पत्ते, ओह साडे कढ़ाई दे विच जाके खुलेगा नहीं ओह बेसन दा पकौड़ा। सो बेसन दे पत्तियां दे पकौड़े जिहड़े ओह बनाए जा सकदे आ। इक सूप किस्म दी सब्जी राज तुहाडे इत्थे महाराष्ट्र दे विच, एक सूप किस्म दी सब्जी भी साडे मुल्क दे विच महाराष्ट्र दे वल लोकी बनाउंदे है, रसम उस नूं कहिंदे आ, ते ओह पाणी वांगू ही पतला हुंदा है, उस दी की रेसिपी है?
0: अभी रसम एक सांबर का ही टेक्सचर है। रसम में हल्का, यहाँ पे जैसे सांबर में ज्यादा क्वांटिटी में आपकी दाल यूज होती है, पर इस रसम जो होता है वो वही चीज होती है, उसमें अंतर बस खटास की होती है, यहाँ पे मीठा ऐड नहीं करते। तो रसम जो है वो पतला रहेगा, यानी दाल का पानी पानी का ही रसम बनता है, ना कि दाल का। बस सेम तड़का वगैरह जो भी आपको लगाना है, जैसे सांबर को हमने तड़का लगाया, वही तड़का यहाँ पे भी यूज करो, रसम आपका रेडी है। बस यहाँ पे मीठा नहीं डालना है आपको, ये खट्टा रहेगा, ये स्ट्रांग रहेगा, इस यानी खटास ज्यादा होती है इसमें रसम में।
1: सो ये सारे ही खाने बनाउन लगे हां भाग्यश्री, असी केड़ियां गल्लां दा ध्यान रखना है सानू वो दसो, केड़ियां केड़ियां सावधानियां असी रखनी है, या ये चीजा दे विच्चों इन्हां डिशेस दे विच्चों केड़ी डिश बनाउन लगे हां, केड़ी एक खास गलती असी कर दिन्ने हां, तुसी सानू सावधानियां दसनी है ते गलतियां जिहड़ियां असी करदे हां जिस दे करके साडा एक्चुअल टेस्ट नहीं आंदा वो सानू दसो।
0: एक्चुअल टेस्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि हर टाइम, मैंने 2-3 रेसिपी में ये चीज आपको हर टाइम बोला कि तड़का लगाने के बाद कोई भी चीज हमारी फाइनल चीज, जैसे सूजी गई या फिर पोहा गया, जो भी तड़का लगाने के बाद फाइनल चीज हम डालेंगे, तो उसके ऊपर कढ़ाई रख के फ्लेम आपका बंद करना ही करना है।
1: जी
0: तो उससे क्या होता है ना, हम उसमें भूनते रहते हैं तो वो हार्डनेस बन जाती है, तो उसका फ्लेवर उड़ जाता है।

0: उसके बाद यहाँ पे आप अदरक लहसुन या फिर कड़ी पत्ता ये चीजें भूलनी नहीं है, तो ये टेस्ट आपका मेंटेन करेगा।
1: जी
0: बस क्वांटिटी यहाँ पे थोड़ा सा अपने हिसाब से कीजिए कि आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद फ्राई करने का या फिर जो तड़का आप लगा रहे हो, जीरे जैसे तेल हम गरम कर रहे हैं और मैं सरसों और जीरे का तड़का लगा रही हूँ, एकदम से तेल गरम करके रखा हुआ है और सरसों डाल दिया और जीरा भी डाल दिया, सरसों जलती नहीं है पर जीरा जल जाता है, तो ये आपको यहाँ पे रखना है कि भाई कितना टेम्परेचर मैंने रखा हुआ है, यानी ध्यान रखना है कुछ जल्दबाजी में कुछ ये ना हो जाए, है ना।
1: सो बहुत अच्छे तुसी सानू बहुत सारियां डिशेज जड़ियां है वह दसियां। भाग्यश्री असी ये जानना चाहुंदे आ कि जिवें असी खाना घरां दे विच भांड्यां दे विच परोसदे आ हुण तां क्योंकि स्टील दे

0: फैमिली इकट्ठा होके खाना खाओ। बोलते हैं कि जिस टाइम आप खाना खाते हो उस टाइम आप क्या सोचते हो वही अन्न आपके पेट में जाके आपकी सोच में जाता है। तो इसीलिए जब आपकी फैमिली इकट्ठा होती है तो हम प्यार से एक दूसरे से बातें करते हैं, तो उसका कुछ फायदा हमें मिले। अभी फिलहाल हम अपनी जिंदगी ऐसी हुई है भागा दौड़ी में, खाना हम बस एक पेट के लिए खा रहे हैं, बस मेरा पेट भर जाए, अभी मुझे भूख लगी है मैं उसको कवर कर दूं, फिर वो अपने आप काम कर लेगा। तो ये सारी चीजें, तो इसलिए सारे दिन में से एक दिन दो टाइम ही खाना खाते बड़े मुश्किल से, तो वो भी हम शांति से और हैप्पीली खाएं, यही बस एक मैसेज मेरी तरफ से रहेगा।
1: भाग्यश्री, असी तुहाडे तों, क्योंकि तुसी अपना निजी रेस्टोरेंट भी चलाउंदे हो, असी तुहाडे तों इक होर सवाल पुछना चाहुंदे आ। बाहर जदों असी खाना खाण जाने आ तां असी किहड़ियां चीज़ां दा ख्याल रखना है, किस तरह दियां आइटम्स साडे लई खाणियां ज़्यादा वधिया रहिणगियां, हैल्दी रहिणगियां, असी उही जाके ऑर्डर करिए, अते बाहर खाना खाण लग्गिआं होर किस किस तरह दी सावधानी रखणी है, किहड़ियां गल्लां दा ख्याल रखणा है?
0: अगर वैसे सोचा जाए तो सोचने की बहुत सारी चीजें हैं। मैं खुद रेस्टोरेंट चलाती हूँ तो मोस्टली प्रेफर यही करूँगी अपने घर का ही खाना खाओ
1: जी
0: कितना भी हो, क्योंकि अगर हम घर में भी 2 लोगों का खाना बनाते हैं और 10 लोगों का खाना बनाते हैं तो अंतर होता है
1: जी
0: बराबर ना। तो ये चीज है। दूसरी बात अगर देखी जाए तो जहाँ पे जाओ कभी भी बड़े रेस्टोरेंट में, मेरा कहना ऐसा किसी को भी नहीं है कि बड़े रेस्टोरेंट पे ना जाओ, बट एक चीज ये होती है जहाँ पे बड़ा रेस्टोरेंट है वहां पे मोस्टली फ्रोजन फूड होता है या फिर स्टोर किया हुआ फूड होता है। वही आप नॉर्मल दुकानों पे चले जाओगे तो वहां पे आपको फ्रेश फ्रूट मिलेगा।
1: जी
0: तो ये मेंशन है कि आप जो भी खाना है तो वो आपके सामने बने, यानी जो भी खाना खाओगे तो वो फ्रेश रहे और फिर खाओ। अभी कुछ बहुत सारे सिस्टम ऐसा है कि हमारे पास भी टाइमिंग नहीं है, हमें भी जाते ही तुरंत ही चाहिए, भी हमें ये ऑर्डर दिया और बस 2 मिनट में हमें ला दो।
1: जी
0: तो ये चीज हमने खुद ने अपने में बदलाव करना चाहिए कि अगले को बनाने के लिए टाइम दो। मैं अपने यानी एक मेरा अपना खुद का भी मैं यहाँ पे फायदा रखूंगी, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि मैडम बस ऑर्डर दिया है और मुझे 2 मिनट में आए, तो यार पेशेंस हमारे में है नहीं। तो अगर हमारे में पेशेंस हम रखेंगे तो ऑब्वियसली अगला थोड़ा आपको अच्छा खाना देगा।
1: जी
0: अगर आप उसको जल्दबाजी करोगे आपके टाइमिंग के हिसाब से तो वो चीजें नहीं होगी। और मैक्सिमम यही चीजों पे खाओ जहाँ पे आपकी किचन सामने हो, बस यही आपको बोलना चाहूंगी। बाकी बर्तन वगैरह ऑलमोस्ट सारा कुछ हम करते हैं, कोई भी किसी किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि मैं लोगों को खराब दूं, और यानी अपना नाम कोई भी खराब करना नहीं चाहता।
1: बिल्कुल
0: जो भी काम करता है वो अपने नाम कमाने के लिए करता है, कुछ अर्निंग करने के लिए करता है, तो ऑब्वियसली ऐसा कोई नहीं है कि आपको कोई खराब दे। ये बहुत रेयर केसेस होती है और कुछ चीजें सडनली हो जाती है, जैसे अभी हमारे भी होता है ऐसे घरों में कि कभी कभी बाल आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे रेस्टोरेंट में होता नहीं, हो जाता है क्योंकि इंसान ही काम करते हैं तो इंसान से ही गलतियां होगी। तो ऐसा कुछ नहीं, बस फ्रेश फूड खाओ। दूसरा ज्यादातर घर पे ही खाओ, कुछ चीजें नई नई आइटम बनाने बनाने का सीखो, नया कुछ ट्राई करो।
1: ते बिल्कुल, तुसी सानू बहुत सारियां आइटम्स दसियां हैं, जिस दे विच अज तुसी साडे नाल डोसा, डोसे तो बनन वाली चटनी, डोसे दे नाल खादी जान वाली लाल चटनी, सफेद चटनी, नारियल दी चटनी जिहड़ी के, उस तो बाद तुसी सानू पोहा, उपमा, पाव भाजी, वड़ा पाव, सांबर, इडली वड़ा, सांबर वड़ा, तुसी सानू रसम, जो कि एक तरी है, एक करी है अंग्रेजी दे विच जिसनू कहने आ, साबूदाने तो बनने वाली खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, थाली पीट, थेपला, स्प्राउट्स तो बनने वाली मिसल जां स्प्राउट तो बनने वाली सब्जी जिहड़ी कि असीं बना सकदे आ, बहुत तरह दे पकौड़े तुसी सानू दसे, तुसी सानू सोल कड़ी, आम पन्ना, कोकम शरबत, एप्पल जूस भी सानू तुसी दसिया, ते असीं कोशिश करांगे कि हुण असीं बाहर ना खाइए, तुहानू घाटा जरूर पएगा तुहाडे रेस्टोरेंट दे उत्ते, पर तुसी सानू बहुत अच्छा मैसेज दिता कि घरे बना के खादा जावे घरे, क्योंकि जे असीं बनावांगे उहदे विच प्यार भी शामिल होएगा, ते असीं रल के बैठ के खावांगे, ते स्वाद उसदा दुगना होएगा, ते असीं बाहर कोशिश करिए घट ही खाइए गर्मी दे दिनां दे विच खास तौर ते, क्योंकि इह संभावना ज्यादा हुंदी है कि कंटामिन

0: राष्ट्रपति उमिन ऑनलाइन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए वार्ता हुई। बातचीत के दौरान म्यांमार और भारत के बीच सुरक्षा और संपर्क सहित दोनों देशों के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे।
1: सांस्कृतिक परिसर में आयोजित लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन वन प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा पवित्र अवशेषों तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहरों का प्रदर्शन किया जा रहा है। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों के संगम पर स्थित है। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह आधिकारिक यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और गहराई मिलेगी तथा दोनों देशों के बीच साझेदारी के नए अवसर खुलने की आशा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में आयोजित समारोह में 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। नवनियुक्त मंत्रियों को विभाग बाद में आवंटित होंगे।
2: ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य सरकार की प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए मंत्री राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनमें अनुभवी विधायकों के साथ साथ पहली बार विधायक बने सदस्य भी शामिल है। समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ वरिष्ठ राजनीतिक नेता, सरकारी अधिकारियों और आमंत्रित अतिथियों उपस्थित थे। नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन बाद में घोषित किया जाएगा। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों में सपन दास गुप्ता, अर्जुन सिंह, तापस राय, शंकर घोष और अन्य शामिल है। काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इस चुनाव के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 3-3 सीट, झारखंड में 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में 1-1 सीट पर मतदान होगा। नामांकन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA आज से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता नए बाजार खोलेगा, इससे निर्यात में वृद्धि होगी तथा निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि इससे रोजगार बढ़ेगा और विद्यार्थियों, कामगारों, महिलाओं, किसानों, मछुआरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ होगा। वस्तु और सेवा कर GST का सकल संग्रह पिछले महीने 3.2% बढ़कर 1,94,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष मई में ये 1,88,000 करोड़ रुपए था। पिछले महीने केंद्रीय GST का सकल संग्रह 37,397 करोड़, राज्य GST का 45,143 करोड़ और एकीकृत GST का 51,990 करोड़ रुपए रहा। इस अवधि के दौरान वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति में 26.9% की वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र में इसमें 22.2% की बढ़त दर्ज की गई। GST रिफंड में 2.6% की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा 27,281 करोड़ रुपए रहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि पीएम स्वनिधि ने बिना गारंटी के ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर खोलकर लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये योजना विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2020 में योजना शुरू होने के बाद से

0: अब तक 1,12,00,000 से अधिक ऋण दिए गए हैं।
1: देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 6 साल से पीएम स्वनिधि स्कीम के जरिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। इससे उनके लिए अस्थायी आजीविका सुनिश्चित हो पाई है। इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के 3 चरणों में क्रमशः 15,000, 25,000 और 50,000 रुपए तक के कर्ज उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कर्जों पर ब्याज सब्सिडी तथा ऋण गारंटी सहायता भी प्रदान की जाती है। इस पहल से देश भर के शहरों और कस्बों में 75,00,000 से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 55,00,000 से अधिक लाभार्थियों को इस स्कीम से डिजिटल रूप से जोड़ा गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के रामसिया गांव से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा।
2: 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान देश की कृषि भूमि को बचाने और किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
3: ये खेत बचाओ कार्यक्रम इसलिए कि हमारी माटी बर्बाद ना हो जाए, हमारे खेत बर्बाद ना हो जाए। धरती कहे पुकार के इतना खाद मत डालो, इतना कीटनाशक मत डालो।
2: इस अभियान में कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और जनप्रतिनिधि मिलकर भाग ले रहे हैं। अभियान के तहत किसानों को मिट्टी परीक्षण, सोइल हेल्थ कार्ड, प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसानों तक पहुँचाया जाएगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
4: विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को पदोन्नत किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना को भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक अध्यादेश जारी कर कानून में संशोधन किया था। इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़कर 37 कर दी गई थी। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में देश भर में वृद्धि की गई है। हालांकि घरों में उपयोग होने वाली घरेलू खाना पकाने की गैस की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब इसकी कीमत 3,113.50 रुपये होगी। मुंबई में 43.50 रुपये की वृद्धि के साथ नई कीमत 3,067.50 रुपये होगी। कोलकाता में 53.50 रुपये की वृद्धि के साथ व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत अब 3,255.50 रुपये होगी। चेन्नई में कीमतों में 42 रुपये की वृद्धि हुई है और अब नई कीमत 3,283 रुपये होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका के ईरान में रडार और ड्रोन नियंत्रण स्थलों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने जवाबी हमले की बात स्वीकार की, जबकि कुवैत ने कहा कि वो आने वाले ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहा है। कुवैत की सेना ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रही है। इसराइल द्वारा लिटानी नदी के पार लेबनान पर अपना कब्जा बढ़ाने के कारण तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट।
5: सैन्य टकरावों के बीच राजनयिक बातचीत जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के साथ एक अच्छे समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि औपचारिक रूप से समझौता होने तक किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के बढ़ते जमीन

0: हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। फ्रांस ने स्थिति पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की दूसरी संवाद बैठक नई दिल्ली में हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं।
2: मैं आपकी सरकार को 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और एकीकृत निवेश कार्यक्रम की पहल के लिए बधाई देना चाहता हूं। चर्चा के दौरान मैं इन नीतिगत दस्तावेजों और भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों में विकास के संभावित अवसरों पर आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हूं।
1: श्री माल्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत किया है और दोनों पक्ष समुद्री क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। म्यांमा के नामकाम शहर में भीषण विस्फोट में 55 लोगों की मौत हो गई है। कल हुए इस विस्फोट में 70 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये घटना खनन के लिए रखे गए सामान में हुए विस्फोट के कारण हुई। स्थानीय अधिकारी प्रभावित निवासियों को राहत, चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट में 100 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने वाले नियमों को आज से लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत कम से कम 80 लाख उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी। नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर 100 लाख रिंगिट तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और जैसी चीजों से बचाना है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया सहित अन्य देशों ने भी बच्चों के सोशल मीडिया तक पहुंच पर आयु आधारित प्रतिबंधों की घोषणा की है। हांगकांग में 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित 19 पदक जीते हैं। पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा। घरेलू मोगली वेंकटराम ने कल पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान में 98% उत्पाद समूहों पर शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ। पीएम स्वनिधि योजना के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योजना ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए विकास के नए अवसर खोले हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਗੜਤੀ ਸਮਾਂ 2:30 ਤੇ 32 ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰੀਲੀ ਦੁਪਹਿਰ।

इस प्रोग्राम च सानू तकनीकी साथ समूह टेक्निकल स्टाफ वालों मिले। प्रोग्राम के निर्माता श्री बलजीत शर्मा, इस दे नाल ही मैनू अमरजीत मान नू प्रोग्राम सुरीली दुपहर खत्म कर दिओ आग्या। नमस्कार।

इस दो गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: कहिए कैसी है मंजरी जी आप?
2: बस यही कहेंगे ना कि हमेशा की तरह बिल्कुल मस्त अच्छी सी हूँ।
1: हाँ, जी वो तो आपको देखकर ही लग रहा है कि बिल्कुल जो है आप खुश लग रही हैं बहुत ज्यादा और फ्रेश लग रही हैं।
2: जी धन्यवाद।
1: और मुझे लगता है कि जब से मैं सुबह से आपको देख रही हूँ आप तरह तरह के गीत निकाल रही हैं, कभी किसी गाने को पसंद कर रही हैं कभी नहीं कर रही हैं, तो संगीत के बीच में रहकर भी आदमी जो है एकदम अपने आप को फ्रेश पाता है, ताजा महसूस करता है।
2: गीत संगीत की दुनिया ऐसी है कि आप कितने भी उदास हों आप गीत सुन लीजिए आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी उदासी आपके पास से कब कहां किधर चली गई अगर आप बिल्कुल दिल से सुनते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा मंजरी। हाँ लेकिन एक उदासी का सबब आज तो हमारे मन में है।
2: बिल्कुल
1: है ना।
2: बिल्कुल वही हम कहने वाले थे कि जब हमारे बीच से कोई चला जाता है और जब अच्छी अच्छे गायक गायिका चले जाते हैं तो उनके ना चाहिए उनके गाने हम सुनकर ही बड़े हुए हैं।
1: बिल्कुल
2: तो वो गाने हमेशा कानों में दस्तक देते रहते हैं और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो बहुत दुख होता है, आंखें भर आती है, दिल भर आता है।
1: बिल्कुल कल मैं एक कार्यक्रम दे रही थी मंजरी, उसमें मैंने कहा कि किसी का जाना कैसा महसूस होता है हमें जब हमारी जिंदगी से विचारों से हमारे दिल से हमारे घर से कोई चला जाता है या दुनिया से चला जाता है तो हम क्या महसूस करते। और हमारे श्रोताओं ने इतने अच्छे विचार हम तक पहुंचाए थे कि मेरा गला भर आया था और आंखें नम हो गई थी।
2: नहीं, वो बात ही ऐसी है कि हम पढ़ते पढ़ते आज भी आंखें नम हो जाती जब हम उन चीजों को याद करते हैं और जो हमारे बीच से अब चले गए हैं और हम सब उनके परिवार के ही सदस्य कहना चाहिए, वो गाने गाते हैं और हम लोग सुनते हैं ध्यान से तो हम कहीं ना कहीं उनके साथ एकदम जुड़े होते हैं।
1: और इस कार्यक्रम या इस नौकरी में हमने न जाने कितनी बार इन गायक और गायिकाओं को बजाया और खुद गुना उनके गानों को गुनगुनाया, उनके गानों को जिया हमने। मुझे याद है रफी साहब के इतने सारे गाने हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं, लता जी के, आशा जी के, और आज जो सुमन कल्याणपुर को हमने खो दिया है उनके गाए गीत जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हमारे ही गले का कोई सुर जैसे चला गया है।
2: बिल्कुल
1: ऐसा महसूस होता है,
2: है
1: ना। इतनी महान गायिका, इतनी शानदार गायिका जिन्होंने बहुत सादगी से अपनी आवाज को पेश किया आप तक पहुंचाया और हर गीत को उतनी ही कोमलता के साथ सादगी के साथ उतार चढ़ाव के साथ गाया
2: और उतनी ही उनका स्वभाव भी सादगी भरा था। बहुत ही सरल स्वभाव की महिला हैं वो थी और जो आज हमारे बीच नहीं है तो उनको हम सभी लोग और सभी विद भारती परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते
1: बिल्कुल,
2: हैं।
1: बिल्कुल।
2: और हमारी सखी ने भी एक
1: कुछ लिखा है, बताइए मेरी सखी ने क्या लिखा है।
2: इन्होंने गाने की एक लाइन लिखी है कि यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई एक बहाना। दुखद समाचार, दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर अब इस दुनिया में नहीं है, आज 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली दिग्गज प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर का आज निधन हो गया है और उन्होंने इतने साल उम्र मुंबई में स्थित अपने घर में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और उन्होंने पहले सुमन हेमदी नाम से गाने गाए थे, हालांकि शादी के बाद उन्होंने सुमन कल्याणपुर के नाम से अपनी पहचान बनाई और गीतों को आवाज दी।
1: आवाज दी बिल्कुल, और उनकी आवाज हमने जन जन तक पहुंचाई रेडियो के माध्यम से, तो विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सखी सहेली के इस मंच से इस परिवार से उन्हें बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं।

0: हाँ तो मंजरी, आज हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं, हमारी सखियां और सखा जानना भी चाहते होंगे।
1: बिल्कुल, तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के व्यंजन बनारस का, मंगौड़ी वाला मटर का निमोना और धनिया की मट्ठी, इसके बारे में बात करेंगे। और वैश्विक अभिभावक दिवस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और विश्व दुग्ध दिवस भी आज है, तो दूध तो सभी जानते हैं कितना अच्छा होता है सभी के लिए पीना, बच्चों के लिए खासकर बहुत जरूरी है, तो इस पर चर्चा करेंगे। और कथा सुधा के अंतर्गत आभूषण भाग एक, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ये आज सुनाई जाएगी और इसका भाग एक है, तो हम लोग इस कहानी का आनंद लेते हैं।
0: चलिए तो पहले ही कहानी सुन लेते हैं।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। आज सुनते हैं इस कहानी की पहली कड़ी।

आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं के निर्दय घातक वाकवाणों को नहीं ओढ़ सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है, उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीना महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम ये भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही जरूरत है जितनी

0: घर के लिए दीपक के, किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना अशांत और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता। इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती हैं। ये चमक दमक, कितनी ईर्ष्या, कितने द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी दुश्चिंता और कितनी दुराशा का कारण है, इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें भूषण नहीं, दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो ये कब हो सकता था कि कोई नववधू पति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती,
1: मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में ढकेल दिया है।
0: शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहिता वधु को देखने गई थी। उसके सामने ही वो मंत्रमुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। और वो जब से लौट कर घर आई, उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। अंत को ज्यों ही उसका पति आया, वो उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी जमाने में इलाकेदार थे। इस गांव पर भी उन्हीं का सोलहों आने अधिकार था, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई है। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था। उसे दिन में दो बार भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे, पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में, मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा प्राप्त करके वो यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहां से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। वहां के जड़वाद, कृत्रिम भोग लिप्सा और अमानुषिक मदांधता ने उनकी आंखें खोल दी थीं। पहले वो घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे। लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे, पर यूरोप से लौटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसी पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने हुए विवाह कर लिया। अब वो विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वो मर्माहत सी हो गई। विमल सिंह ने व्यथित होकर कहा,
2: तो माता पिता से कहा होता, सुरेश से ब्याह कर देते और वो तुम्हें गहनों से लाद सकते थे।
1: तो गाली क्यों देते हो?
2: गाली नहीं देता, बात कहता हूं। तुम जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याह।
1: लजाते तो नहीं, उल्टे और ताने देते हो।
2: भाग्य मेरे वश में नहीं है और इतना पढ़ा भी नहीं हूं कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊं।
1: ये क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है? प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे।
2: तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है।
1: सभी को होता है, मुझे भी है।
2: अपने को अभागिनी समझती हो?
1: हूँ ही, समझना कैसा, नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पड़ता।
2: गहने बनवा दूं तो अपने को भाग्यवती समझने लगोगी?
1: तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर ही बैठा है।
2: नहीं, सच कहता हूं, बनवा दूंगा, बनवा दूंगा, लेकिन कुछ दिन सबर करना पड़ेगा।
0: समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं, सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमल सिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से। या तो आभूषण ही पहनेगी या सिंदूर को भी तरसेगी।

0: दिन भर वो चिंता में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पाश से नहीं बंधता, कंचन के पाश ही से बंध सकता है। पहर रात जाते जाते वो घर से चल खड़ा हुआ, पीछे फिर कभी न देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो, पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अचल होता है। प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है, पर अंधकार में कितना साहस है जो लीक से जौबर हट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था, उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्मत्याग ही का आधार था। वो पहले कलकत्ते गया, वहां कुछ दिन तक एक सेठ की अगवानी करता रहा। वहां जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है, तो वो रंगून जा पहुंचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वो बीमार हो गया। शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही, फिर भी उससे ज्यादा मेहनती मजदूर बंदर पर दूसरा न था। और मजदूर थे, पर ये मजदूर तपस्वी था। मन में जो कुछ ठान लिया था, उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर को अपना कोई समाचार न भेजा, अपने मन से तर्क किया, घर में मेरा कौन हेतु है, गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि ये रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है। और मजदूर प्रातः काल सेरों मिठाई खाकर जलपान करते थे, दिन भर दम भर पर गांजे चरस और तंबाकू के दम लगाते थे, अवकाश पाते तो बाजार की सैर करते थे। कितनों ही को शराब का भी शौक था, पैसों के बदले रुपए कमाते थे तो पैसों की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी के देह पर साबुत कपड़े न थे, पर विमल उन गिनती के दो चार मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवा कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई, धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। ये प्रायः सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है, सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूरों का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो चुके थे। संध्या हो गई थी, वो कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था।
1: यहाँ की सभी स्त्रियां निष्ठुर होती हैं। बेचारा झिंगुर 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था।
2: अच्छा,
1: कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता सो उसके हाथ में रख देता था। 3 लड़के थे, अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे। न कोई लड़ाई, न बात, न चीत। रात को औरत न जाने कहां चली गई, लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है, अभी कुल 6 महीने का है। कैसे जिएगा भगवान ही जाने।
3: गहने बनवाता था कि नहीं?
1: रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे, गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता। गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम छम छम की आवाज से कान भर जाते थे।
3: जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की, तो यही कहना पड़ेगा कि नारी ही बेवफा होती है।
0: इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला,
2: चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिला था, वह तुम्हारा नाम, गांव का नाम और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है।
3: हाँ है, तो मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं।
2: उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगावेगा उसे 1,000 रुपए का इनाम मिलेगा।
3: तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया?
2: चौधरी, मैं कोई गवार हूं क्या? समझ गया, कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्यों खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं,
3: अच्छा
2: जसोदा पांडे है, बाप का नाम सुखू बताया और घर जिला झांसी में।

0: पूछने लगा, यह कितने दिन से रहता है? मैंने कहा, कोई 10 साल से। तब कुछ सोचकर चला गया, मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपए मैं तुम्हें दिला दूं। मैंने सोचा, आप तो 1000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपए दिलाने को कहता है। फटकार बता दी।
1: मगर जो 200 रुपए देने को कहता तो तुम सब ठीक ठाक नाम ठिकाना बता देते, क्यों धत तेरे लालची।
0: 200 रुपए नहीं, 2000 भी देता तो ना बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो, जब जी चाहे परख लो।
2: मजदूरों में यूं वाद विवाद चलता रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वो सोचने लगा,
3: अब क्या करूं? जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब मैं किसका भरोसा करूं? नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और ना गया तो फिर कहीं का ना होगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5000 हो जाते और शीतला की इच्छा भी पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3000 ही होंगे, इतने में उसकी अभिलाषा ना पूरी होगी। खैर, अभी चलू, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या है, आने जाने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा न रहूंगा। वहां कौन पूछता है, आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं? वहां तो गहनों से प्रेम है।
2: इस तरह मन में निश्चय करके वो दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में ये कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधु मंगला कुमारी गृह कार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषिणी और धर्म भीरु स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मांगते, किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति ये थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वो दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास, प्रायः सभी ऐहिक और पारमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था। फल ये हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वो अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि स्वामी नाराज होंगे। स्वामी को खुश करने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती, नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वो पति की नजरों से गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वो भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वो भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वो इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वो प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी।
4: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का पहला भाग। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश

0: ने जैन पात्रकर, मंगला ममता सिंह, मजदूर राजेश झा और आदमी दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। इस कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग अगले सोमवार कथा सुधा में।
1: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
4: हाँ तो मंजरी, कल सखी सहेली का जन्मदिन है और लड्डू तो हमको कल मिलने ही वाले हैं।
5: बिल्कुल मिलने वाले हैं। हाँ,
4: और हिमानी शिवपुरी हमारे बतौर मेहमान कल आने वाली हैं और उनका सजीव प्रसारण कल
5: जी, और हम लोग मिलकर करेंगे उनका स्वागत और हमारे श्रोता साथ में मिलकर सुनेंगे प्रोग्राम और भेजेंगे बहुत सारी कमेंट्स, विचार,
4: शुभकामनाएं
5: भेजेंगे, तो बड़ा अच्छा लगेगा सब मिलके एक समय पे इकट्ठे होंगे।
4: हाँ, तो ये कार्यक्रम जो है 3 से लेकर 4 बजे के बीच में होगा। हिमानी शिवपुरी हमारी कल की मेहमान है, लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। फेसबुक पेज पर आप बराबर बने रहे और अपने विचारों से अवगत करते रहे और आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है इसके बारे में बताएं और खासतौर से हमारे जो सखी सहेली की कल वर्षगांठ है उनको शुभकामनाएं देने के लिए आप लगातार हमसे बने रहें, सभी सखी और सखा तैयार होकर
5: क्योंकि हम लोग भी तैयार होकर कल आएंगे पर्दे बनाने।
4: बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तैयार रहेंगे कल। और अब तो समय हो गया है एक अंतराल लेने का। मंजरी, पहले अंतराल लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं।

0: हाँ तो मंजरी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना है
1: जी।
0: और जीवन में जब हम किसी सुंदर चीजों के आसपास होते हैं ना तो जिंदगी थोड़ा आसान भी लगती है।
1: बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत होते हैं हमारे वो रिश्ते भी जो हमें जन्म देते हैं, जिन्हें हम माता पिता के रूप में जानते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आँख खुलती है वो उंगली हम उनकी पकड़ते हैं, उनका स्पर्श सुख पाते हैं माता पिता के रूप में, तो वो हमारे लिए बहुत ही अजीज होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, और इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए वैश्विक अभिभावक दिवस ये जो है मनाया जा रहा है। 17 सितंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र ने 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिवस का उद्देश्य माता पिता होने के महत्व और बच्चों के सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक सुरक्षा और साधन प्रदान करने में उनकी भूमिका में प्रगति जागरूकता बढ़ाना है। तो कहना चाहिए मंदाकिनी जी, आज के दिन हम अपने माता पिता के लिए एक जश्न जैसा घर में कुछ सेलिब्रेशन करें,
0: करना चाहिए
1: और
0: ना?
1: हाँ, उनका सम्मान करें, उनके चरण छुएं, और आप जो भी उनके लिए पसंद का खाना बना सकते हैं वो बनाएं, उपहार में उन्हें चीजें दें, तो देखिए कितना अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जो माता पिता के सबसे करीब होते हैं वो हमारे माता पिता ही जो हमारे सबसे करीब होते हैं, और बच्चा जब घर से कई बातें सीखता है और जैसा अपने माता पिता को करते देखता है वैसा ही व्यवहार उनकी उसकी आदत में भी आता है। और कहना चाहिए कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं, हमारी पहली पाठशाला होते हैं, और इसलिए बच्चों के सामने हमेशा कहा जाता है कि अच्छा आचरण करें ताकि आपके बच्चे भी जब आपको देखें तो वैसे ही बड़े होकर आगे अपना उदाहरण पेश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये दिन माता पिता और अभिभावकों के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए समर्पित है। बच्चे के जीवन में अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती, केवल पालन पोषण ही नहीं करते बल्कि उनके जीवन जीने की सही दिशा, संस्कार, अनुशासन और नैतिक मूल्य भी सिखाते हैं, और वो अपने बच्चों के सुख दुख के साथ मंदाकिनी जी हमेशा खड़े रहते हैं, और बच्चे की सफलता के पीछे उसके अभिभावकों का त्याग, मेहनत और समर्पण छिपा होता है। वे अपनी को पीछे रखकर अपने बच्चों के सपने को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और आज की अगर हम बात करें मंजरी, तो आज के आधुनिक समय में बच्चों और अभिभावकों के बीच थोड़ा संवाद कम हो रहा है ना,
1: और उसका कारण भी है
0: मोबाइल और सोशल मीडिया, ये हमारी जिंदगी बन गए हैं, है ना, तो रिश्तों में दूरी बढ़ गई है। ऐसे में क्या है कि वैश्विक जो अभिभावक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने माता पिता को समय देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: और ये दिन आज का केवल ये नहीं कि आपने हमें जन्म दिया धन्यवाद कि अगर हमने इतिश्री कर दी,
1: नहीं
0: ये वो दिन नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने का ये दिन हमें संदेश दे

0: सकता है और हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका प्यार तो निस्वार्थ होता है और उनका स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होना चाहिए।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, हम कह सकते हैं कि माता पिता वो छांव है जिसके रहते जीवन की हर धूप हल्की लगती है, उन्हें सुरक्षा स्नेह और अपनापन में उनसे मिलता है। जैसे तेज धूप में पेड़ की छाया राहत देती, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में माता पिता अपने बच्चों को संभालते हैं, उन्हें उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही बच्चे सही राह पर चलना सीखते हैं। और मंदाकिनी जी, जब पुराने समय की हम बात करें तो उस समय ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, तो घर में सभी सदस्य होते थे, तो माता पिता तो घर बच्चे देखभाल करते थे, लेकिन दादा दादी हुए, नाना नानी है, चाचा चाची, मामा मामी, सब लोग परिवार के जितने भी लोग होते थे, बुआ हो चाहे कोई भी हो, सब लोग बच्चे का ख्याल रखते थे। तो बच्चे कैसे पल जाते थे
0: पता ही नहीं चलता था।
1: और बच्चों के अंदर सबके गुण आते थे, कोई कहानी सुनाता था, कोई उनको अलग तरीके

0: आते थे,
1: पता ही नहीं
0: पता ही नहीं चलता
1: लगता
0: था।
1: था।
0: और बच्चों के अंदर सबके गुण आते थे, कोई कहानी सुनाता था, कोई उनको अलग तरीके बातें सिखाता था, कोई कर्तव्य करना सिखा रहा है तो कोई व्यायाम सिखा रहा है, कोई कह रहा सुबह जल्दी उठो। तो ये जो रोक टोक का टाकी बच्चों को होती थी सिखाने की, कहना चाहिए नियम अनुशासन सिखाने की,
1: बिल्कुल,
0: तो उससे बच्चे सीखते थे और सभी उनके माता पिता के ही समान थे उस समय।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो सभी लोग हम बच्चे की कद्र करते थे, बच्चे का लालन पालन कैसे होता था माता पिता तो को पता नहीं चलता था। लेकिन मंजरी आज स्थिति बिल्कुल अलग है, आज हम ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, जहां तक है एकल परिवार हो गए हैं, और ऐसे में बच्चे को जो नौकरी करने वाले माता पिता हैं वो किसी केयर टेकर के उसमें छोड़ जाते हैं। और मुझे खुद भी याद है, मेरे माता पिता दोनों सरकारी नौकर थे, सरकारी नौकरी करते थे, और हमें किसी केयर टेकर के पास छोड़ जाते थे, वो किस तरह से हमारा लालन पालन करती थी ये तो भगवान ही जाने। और होता था कि जब माता पिता आते थे बड़े परेशान आते थे, क्योंकि जो केयर टेकर है वो उस तरह से तो नहीं पाल सकती बच्चों को जैसे माता पिता या परिवार के सदस्य पालते हैं।
0: और देखिए हमारे बहुत सारे साथियों ने भी संदेश लिखकर भेजा है। एक लिखते हैं कि माता पिता सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो हमारा पहला विद्यालय होते हैं जहाँ से हमारे संस्कारों की नींव गढ़ी जाती है। माँ अगर उंगली पकड़कर चलना सिखाती है तो पिता उंगली छोड़कर संभलना, दुनिया का हर रिश्ता कुछ ना कुछ मांगता है, पर माता पिता वो होते हैं जो अपनी संतान के प्रति जीवन भर निस्वार्थ स्नेह रखते हैं। उनका प्रेम किसी पैमाने पर मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाना, जवानी में परछाई की तरह साथ रहना और वृद्धावस्था में भी संतान के प्रति चिंतित रहना ही उनके निस्वार्थ प्रेम को दिखाता है। बहुत प्यारी सी,
1: बहुत सुंदर बात लिखी है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सखी सहेली मंच संभाल रही दोनों बहनों को बहुत सपने नमस्कार लिखते हैं। आज अभिभावक दिवस है, इस दिन विशेष का बड़ा महत्व है। इस दिन का आज के दिन दुनिया के सभी माता पिता के साथ साथ सभी अभिभावकों को बच्चों के लालन पालन के साथ उनकी सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और बलिदान के लिए सम्मानित करना है। माता के लिए गुजराती मुहावरा है, माई माँ बाकी बगा वगड़ा नावा, मतलब माँ के बिना सब जग उजड़ा हुआ यानी वीराना सा लगता है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर सी बात लिखी है। ऐसे हमारे साथी लिखते हैं कि आज अभिभावक दिवस पर विशेष बधाई। अभी तो कोई कलम नहीं बनी है जो माता पिता पर कुछ सर्वश्रेष्ठ लिख सके, ये तो ईश्वर के बस की भी बात नहीं। मेरी हर खुशी का रास्ता माँ से होकर जाता है और मुझे दुनियादारी का सबक मेरे माता पिता सिखाते हैं। माता पिता का प्यार इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ पवित्र और अनमोल एहसास है। ये वो पूंजी है जो हमें जीवन के हर कदम पर हिम्मत, सुरक्षा और सही संस्कार देती है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है।
1: वही एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता का ही तो प्यार है जो कभी नहीं बढ़ता। जीवन रूपी खुले आकाश में उन्मुक्त पक्षियों के जैसे उड़ने की सीख और हौसला देने वाले वे ही हैं। रोते रोते हंसा देते हैं, दुनियादारी की बातें समझा देते हैं। उनकी ही दुआ से हम बड़ा नाम करते हैं और इस दुनिया पर राज करते हैं। असफलता में भी मुड़कर मत देखो पर अपनी गरिमा को भी संभाल कर रखो। ऐसी हिदायतें उनसे ही मिलती हैं, उनके आशीर्वाद से बिगड़े काम बन जाते हैं। उनकी सुनाई कहानियों की खुशबू पूरे जीवन भर महसूस करते हैं। और वैश्विक अभिभावक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये हमें देते हैं। तो अब एक गीत सुन ले
0: जी।

0: हाँ
1: तो
0: तो
1: देखिए अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। विश्व दुग्ध दिवस है और हम सभी जानते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, सभी के लिए, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, सभी के लिए दूध बहुत आवश्यक है। और विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व को मान्यता देना है। ये दिवस 2001 से प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और मंजरी, विश्व दुग्ध दिवस केवल हम इसे कोई उत्सव के रूप में नहीं मना रहे हैं बल्कि एक आंदोलन है जो दूध को एक महत्वपूर्ण और सुलभ खाद्य स्रोत के रूप में उजागर करता है जो अरबों लोगों का पोषण करता है। और यही दूध आवश्यक पोषक तत्व हमें प्रदान करता है जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है।
1: बिल्कुल। और विश्व दुग्ध दिवस की जो इस वर्ष की थीम है, महिला किसानों का सम्मान है। रोजाना दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है क्योंकि ये कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों को एक बेहतरीन स्रोत है। और ये आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, मांसपेशियों के विकास में मदद करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कुछ मंदाकिनी जी, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कुछ बच्चे को परेशानी हुई तो तबियत खराब हुई तो सीधे वो दूध को ही बोल देते हैं, दूध बंद कर दो, इसका दूध नहीं पिलाना है। तो बच्चों के मुख से दूध छीनना बहुत गलत बात होती है। आप पहले उसका चिकित्सीय इलाज कीजिए, डॉक्टरी इलाज कीजिए कि उसको क्या समस्या है, तब आप सोचिए कि दूध
0: नुकसान कर रहा है या नहीं कर रहा है।
1: कुछ समय तक तबियत खराब है तो दूध आप नहीं ना दें, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा जीवन पर्यंत दूध बंद कर दें, ये गलत बात।
0: हाँ ये बिल्कुल गलत है। और हमें डॉक्टर खुद नहीं बनना है ना, चाहे कोई भी, अपना भी डॉक्टर हमें खुद नहीं बनना चाहिए। हमें चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए कि क्या दूध हमें नुकसान कर रहा है। दूध हमारे लिए कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए कुछ लोगों को दूध नहीं सूट करता तो वो नहीं पीते हैं, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक कारण होने चाहिए, केवल ये नहीं, वहम नहीं होना।

0: चाहिए
1: होना चाहिए।
0: एक श्रोता लिखते हैं हमारे कि अभिभावक दिवस के साथ साथ आज विश्व दुग्ध दिवस हम मना रहे हैं। दूध एक ऐसी जरूरत है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए जरूरी है। वैश्विक आहार में दुग्ध का बड़ा महत्व रहा है। इसे संपूर्ण आहार माना जाता है जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और पोटेशियम जैसे शरीर के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं और इसके बिना सुबह की चाय भी नहीं बनती है। आए हुए मेहमानों का स्वागत नहीं होता और इसके विधिवत उत्पादन के लिए डेयरी उद्योग का एक बड़ा योगदान रहा है। अपनी हड्डियों के साथ साथ डेयरी उद्योग को भी हमें मजबूत बनाना चाहिए।
1: और एक साथी लिखते हैं, दूध भी हमारे जीवन का अभिन्न चीज है, खासकर के मेरे लिए तो है, क्योंकि दूध के बिना मेरी मन पसंद अदरक इलायची वाली चाय नहीं बनती।
0: अरे हमारी तो ये भी चाय के शौकीन है
1: जी। और एक लिखते हैं, देश में दूध उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है, इन्होंने लिखा है। और एक लिखते हैं कि दूध को अक्सर प्रकृति का संपूर्ण भोजन माना जाता है क्योंकि इसमें मानव के शरीर के लिए आवश्यक लगभग सभी प्रमुख पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और विटामिन का प्राकृतिक संतुलन होता है। दूध में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व जो है प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए, विटामिन ए, डी और B12, आंखों, त्वचा, तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा स्तर को के लिए ये बेहतर है। बेहतर रखता है कहना चाहिए।
0: बिल्कुल अच्छा लिखा है। और साथ ही एक श्रोता लिखते हैं कि जो दूध है वो भोजन में महत्वपूर्ण तो होता ही है, साथ ही हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत लोगों को दूध पसंद नहीं आता, लेकिन दूध को ठंडा पदार्थ के रूप में पीना बहुत लोगों को पसंद होता है, खासकर गर्मियों के दिनों में।
1: बिल्कुल। और मंदाकिनी जी, देखा जाए अगर बच्चे आपके सीधा डायरेक्ट दूध नहीं पी रहे हैं तो आप सोचिए कि उसमें थोड़ी सी इलायची मिला के हम पिला दें, या फिर आप दूध को खीर में कन्वर्ट कर दें, या चावल की खीर या सूजी की खीर में भी आप कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट पीस करके मिला के कुछ चेंज कर करके, या ठंडे शरबत उसमें मिक्स करके भी आप गुलाब का शरबत मिलाकर भी आप दूध किसी ना किसी रूप में आप बच्चों को
0: पिला सकते हैं। खासतौर से छोटे बच्चे और किशोरावस्था वाले जो बच्चे हैं ना, ये थोड़ा परेशान करते हैं कि मम्मी दूध नहीं पीना है, तो उन्हें दूध को तरह तरीके से करके आप पिला सकते हैं ताकि फाइनली दूध तो बच्चे के पेट में जाना ही चाहिए।

0: तो भाई मंजरी दूध की हम बात कर रहे थे और हमारे जो चाय वाले श्रोता हैं जो हमारे ही जैसे हैं, चाय पसंद करते हैं, चाय मिल जाए और साथ में ये बनारस की मटर मुंगोड़ी वाला नीमोना या नमकीन मिल जाए तो फिर कहने ही क्या होते हैं।
1: हमारी सखी ने ये रेसिपी लिखकर भेजी तो हम वही पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश का नीमोना मुंगोड़ी या मूंग की बड़ी, उड़द की बड़ी, ताजी हरी मटर, पिसे हुए मसालों और मूंग दाल की मंगोड़ियों से बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और पारंपरिक करी है। ये उत्तर प्रदेश के घरों में सर्दियों के मौसम में चावल के साथ बहुत चाव से खाई जाती है। इसकी सामग्री इन्होंने लिखी, हरी मटर 2 कप, मुंगोड़ी 1 कप, मुंगोड़ी 1 कप, आलू
0: चाहिए आधा कप
1: आलू, 2 लंबे पतले कटे हुए, मसाला पेस्ट इसका है, हरा धनिया, लहसुन की कलियां, अदरक और हरी मिर्च, मिक्सी में पिसा हुआ होना चाहिए ये। और तड़का के लिए आप जीरा, हींग और तेजपत्ता, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार और सरसों का तेल लगेगा। और इसको बनाने की विधि है कि मंगोड़ी को और आलू को भून लें, एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करें, मूंग की मंगोड़ियों को सुनहरा होने तक भूनें और निकाल कर रख लें, उसी तेल में कटे हुए आलू को भी फ्राई करें और अलग रखें, मटर भूनें, बचे हुए तेल में दरदरी पिसी हुई मटर डालें और मध्यम आंच पर 3 से 4 मिनट तक इसे भून लें ताकि मटर का कच्चापन दूर हो जाए। इसे एक प्लेट में निकाल कर लें, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालें जिसमें हींग जीरा तड़का लगाएं, अब कटा बारीक प्याज, हरा धनिया, लहसुन वाला मसाला पेस्ट डालकर तब तक भूने जब तक तेल अलग ना होने लगे, भुनी हुई मटर, साबुत मटर, तले हुए आलू और मंगोड़ी डालें, सभी को अच्छी तरह मिलाएं और इसमें आवश्यकता अनुसार गर्म पानी और नमक डालें, कढ़ाई को ढककर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें जब तक कि मंगोड़ी और आलू पूरी तरह से नरम ना हो जाए, अंत में ऊपर से गर्म मसाला छिड़के, आपकी गर्मा गर्म यूपी स्पेशल मंगोड़ी और नीमोना तैयार है।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया है और मुझे लगता है कि बहुत ही स्वादिष्ट होता होगा मंजरी।
1: बिल्कुल, क्योंकि मटर और मुंगोड़ी दोनों ही बहुत स्वाद से भरपूर होते हैं और मेरी तो बहुत फेवरेट है मंदा।
0: बिल्कुल, और मैं धनिया वाला जो मट्टी है ना, धनिया वाली मट्टी, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। अगर हमारे श्रोता पसंद करती हैं सखियां, वैसे तो उन्हें बनाना आता होगा पर मैंने भी इसको बना के देखा था, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैसे बनेगी ये। आप मैदा ले लें 2 कप, हरा धनिया ले लें, कटा हुआ साबुत धनिया ले लें और 2 चम्मच कुटी हुई साबुत धनिया ले सकते हैं, घी ले सकते हैं तेल मोयन के लिए, जीरा ले लें, 1/6 चम्मच अजवाइन ले लें और काली मिर्च ले लें और दरदरी कुटी हुई नमक और तेल तलने के लिए और साथ में पानी। अब आप स्वादानुसार ये सब चीजें ले सकते हैं कम या ज्यादा, क्योंकि मैं आपको जो बताऊंगी हो सकता है आप उसे ज्यादा पसंद करते हो। फिर आटा को तैयार करें, एक बड़े बर्तन में मैदा ले लें, इसमें जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, नमक और मोयन और पिघला हुआ घी 1/4 कप डाल सकते हैं या तेल डालें। सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह से मिला लें ताकि मैदा में मोयन अच्छे से रच बस जाए और उसके बाद बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर उसको मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा आप गूंथ लें। इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर आप रख दें। फिर आटे को थोड़ा मसल लें और फिर उसमें से छोटी छोटी लोइयां तोड़ लें। अब एक लोई को हथेली से दबाकर चपटा करना है, इसे ज्यादा नहीं पतला करना है, ना बेलना नहीं है। एक फिर दबाकर कांटे की मदद से मट्टी की दोनों तरफ थोड़ा छेद कर लें 5-6 और इसको गर्म गर्म तेल में तलें और धीमी आंच में तलने के बाद जो कुरकुरी मटरी निकल के आएगी ना वो गर्मा गर्म चाय के साथ तो
1: गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: और अब मंजरी सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त तो खत्म हो चला है, इस कार्यक्रम से हम इजाजत लेते हैं। तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं।
1: जाओ जाओ जल्दी जाओ डॉक्टर को बुलाओ, नब्ज दिखाओ मेरा हाल बताओ।
0: जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश खुखे।
2: दांतों का जमाना, प्यारे दांत बचाना, कोई तोड़ दे या टूटे तो पास हमारे आना।
0: इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
1: जाओ जाओ जाओ किसी वैद्य को बुलाओ।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हाल ही में डेंटिस्ट डे मनाया गया और इस मौके पर आज हमारे साथ हैं मुंबई के डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका।
3: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं अपनी तरफ से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यहाँ पे आज न्योता दिया गया। मुझे बहुत खुशी होगी कि आज मैं डेंटिस्ट्री के बारे में, दांतों के बारे में लोगों के साथ रूबरू हो पाऊंगा, बहुत सारी जो मिथ्स है उनके ऊपर से हम लोग पर्दा उठा पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, दांतों को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे लोगों के मन में खाम ख्यालियां हैं, गलत मान्यताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बातचीत की शुरुआत हम करते हैं दूध के दांतों से।
3: ठीक है,
0: जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अपने दांत होते हैं जो बड़े मायने रखते हैं, लेकिन अमूमन परिवार में उनके टूटने का इंतजार किया जाता है कि ये दांत निकल जाएंगे।
3: हाँ जी,
0: तब जो दांत आएंगे वो असली दांत होंगे।
3: सही है,
0: जरा इसके बारे में तफसील से बताइए।
3: जैसे आप जानते हैं कि बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तब उसके दूध

0: के दांत आने चालू हो जाते हैं। 2 से 2.5 साल तक दूध के दांतों की ग्रोथ पूरी हो जाती है, ठीक है। दूध के दांत होते हैं 20, टोटल मिला के 20 दांत होते हैं। दूध के दांतों का फंक्शन क्या होता है या फिर उनका काम क्या होता है? नॉर्मली लोगों का ये मानना होता है कि दूध के दांत हैं गिर जाएंगे तो वो सड़ जाए, गल जाए, और आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि जंक फूड बच्चों को इजिली अवेलेबल हो रहा है, प्लस बच्चों को पॉकेट मनी अच्छी मिलने लग गई है तो चॉकलेट्स वगैरह बच्चे इजिली खा लेते हैं, तो उनको सड़न वगैरह बाकी के इश्यूज दांतों के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी दूध के दांतों का मेन फंक्शन क्या होता है कि अपने जबड़े की साइज मेंटेन रखना। जितना जबड़ा काम करेगा खाना चबाने के लिए उतने बाजू के मसल्स जो होते हैं वो काम करते हैं और उस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, जबड़े की हड्डी बढ़ती है, ताकि जो पक्के वाले दांत आएंगे तो वो बड़े साइज के होते हैं तो उनके लिए जगह बनाए, प्लस उनको डायरेक्शन दिखाए, जो दांत बनते हैं पक्के वाले नीचे वो एक सही तरीके से अपनी पोजीशन में आ जाए, उसको वो रास्ता दिखाने का काम जो है वो दूध के दांत करते हैं। तो इसके लिए दूध के दांत अगर खराब है आपके तो पक्के वाले दांत खराब होने की आपकी जो संभावना है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूध के दांत अगर जल्दी गिर जाए, इवन लेट भी गिर जाए, अगर उसमें टाइम लग जाए गिरने में, तो भी जो पक्के वाले दांत आएंगे, परमानेंट दांत आएंगे, वो आड़े टेढ़े ही आएंगे। दूध के दांतों में सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरली दूध के दांतों में एक स्पेसिंग होता है, जिसको टर्मिनोलॉजी, अगर मैं डेंटल टर्मिनोलॉजी बताऊं तो उसको फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग कहा जाता है। तो वो जरूरी है। और वो क्यों होती है? क्योंकि आने वाले दांत, जो परमानेंट दांत आने वाले होते हैं, वो सारे डायमेंशन में, चौड़ाई में, लंबाई में बड़े होते हैं। तो वो जगह, जो फिजियोलॉजिकल स्पेसेस है, वो जगह उनकी चौड़ाई से भर दी जाती है।
1: अच्छा,
0: जिन बच्चों में या फिर जो दूध के दांत है उनके बीच में अगर उतनी जगह नहीं होगी, जबड़े की साइज अगर छोटी है पहले से ही, तो कुछ ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं बचपन में ही, ताकि जबड़े की साइज नॉर्मली बढ़े। घरेलू तौर पे हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं तो नॉर्मली कड़क चीजें आजकल जो अवेलेबल होती है वो होती है कड़क चकली, सूप स्टिक्स, या फिर कड़क बूंदी के लड्डू, वो कड़क चीजें मायने नहीं रखती है। जैसे गाजर, जो अपनी पारंपरिक चीजें हैं, गाजर हो गया, मूली हो गया, ककड़ी हो गया, उसको बिना उबाले कच्चा खाओ, ताकि जो नेचुरल एक्सरसाइज है जबड़े की होनी चाहिए वो होती है और नेचुरल ग्रोथ अपने आप नॉर्मल रहती है। ये एक चीज है।
1: लेकिन बच्चे तो ये चीजें खाते ही नहीं है।
0: बच्चे बच्चे हैं, वो तो जिद करेंगे। उनको खिलाना, उनको उन चीजों का महत्व समझाना, वो पेरेंट्स का काम है
1: जी,
0: ठीक है। इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा सतर्क होना जरूरी है कि बच्चा अपना क्या खा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट उसके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। एक चीज, अगर दांतों की बात करूं तो खाने की पाचन क्रिया जो है मुंह में चालू होती है। अगर मुंह में कैविटीज है, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ है, कीटाणु मुंह में है, तो वो खाने के साथ मिक्स होंगे और वो कहां जाएंगे?
1: पेट में।
0: पेट में जाएंगे तो पेट की बीमारियां, बार बार लूज मोशंस होना बच्चों को, कॉन्स्टिपेशन होना, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स, ना सिर्फ बच्चों में, बड़ों में भी फ्रीक्वेंट एसिडिटी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें हैं। इवन अगर जनरलाइज मैं बताऊं, ना सिर्फ बच्चों के केस में, लॉन्ग टर्म कैविटीज कैन कॉज यू हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो एंड ब्रेन प्रॉब्लम्स ऑल्सो। बैक्टीरियल डिसीजेस हार्ट के भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया हम लोग खा रहे हैं वो अपने खून में मिक्स होने वाले हैं। वो खून में मिक्स होंगे, वो कहीं ना कहीं पे तो जाके लॉज करेंगे और उस जगह की वो बीमारियां फैलाएंगे।
1: अच्छा, ये जो दूध के दांतों की आपने बात की, तो जब बच्चे अपने तरीके से ब्रश करने लायक हो जाते हैं, तब से माँ बाप को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह की आदतें बच्चों में डालनी चाहिए?
0: सबसे पहली बात, ब्रशिंग कब चालू होना चाहिए ये लोगों को पता ही नहीं है। ब्रशिंग मुंह में जैसे ही पहला दांत दिखता है तब से चालू हो जानी चाहिए
1: जी।
0: उसके पहले, मतलब 6-8 महीने तक तो कोई दांत आते नहीं है, उसके बाद ही दांत आने चालू होते हैं। तो उसके पहले, मतलब दांत आने से पहले भी मसूड़े क्लीन करना जरूरी है, मसूड़ों की मसाज करना जरूरी है, ताकि आने वाले दांत जो है वो इजीली आए, बच्चों को तकलीफ ना हो। क्योंकि दांत जो आ रहा है हड्डी में से आ रहा है, वो हड्डी को सेपरेट कर रहा है, मसूड़ों को सेपरेट कर रहा है, तो वो सेपरेट करने के लिए मसूड़ों की अगर मसाज, मसाज होती रही तो वो इजीली सेपरेट होंगे और उसको मसाज करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अपनी उंगली से आप मसाज कर सकते हो बच्चे के मुंह में, और वो भी ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट दिन में 1 या 2 बार, ये बहुत है। दूसरी बात, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को तो उसके बाद उनका मुंह क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि दूध में जो शुगर्स होती है वो जो दांत आते हैं उनको खराब कर सकती है। अभी उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ कि दांत आने के बाद कैसे ख्याल रखना है, कि जैसे ही पहला दांत मुंह में दिखना चालू हुआ, उंगली में पहनने वाले ब्रश आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो, या फिर सिंपल एक गौज होता है, गौज पीस, कॉटन की तरह, जो हम लोग नॉर्मली जख्मों पे पट्टी लगाते हैं जो बांधी जाती है, गौज पीस बोला जाता है, वो स्टराइल गौज पीसेस मिलते हैं मेडिकल शॉप में। अगर बच्चे का मुंह उतना नहीं खुल रहा या फिर बच्चा ब्रश को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आप वो सिंपल गौज पीस को पानी में डुबा के गीले गौज पीस से दांत को साफ कर सकते हो उंगली से,
1: छोटे बच्चों की,
0: छोटे बच्चों के लिए एकदम, हाँ एकदम छोटे बच्चों के लिए, जिनके 1 या 2 दांत या 4 दांत आए हुए हैं। फिर धीरे धीरे दांत जैसे बढ़ते जाएंगे तो उंगली में ब्रश जो मैं बोल रहा हूँ वो आप यूज कर सकते हो। अभी उसमें 0 to 3 years, मतलब बचपन, पैदा होने से लेके 3 साल

0: एक अलग टूथपेस्ट आता है जो बच्चे इंजेस्ट करे खा ले तो भी कोई उनको तकलीफ ना हो।
1: बिल्कुल,
0: उसकी जो बनावट रहती है वो उस तरीके से की जाती है। 3 से 9 से 10 साल तक अलग टूथपेस्ट आती है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। फ्लोराइड की मात्रा क्यों जरूरी है? क्योंकि दांतों में बनने वाली कैविटीज को रोकना, दांतों की बेसिकली इम्यूनिटी अच्छी रखना फ्लोराइड करता है, दांतों की ग्रोथ अच्छी रखना फ्लोराइड करता है। तो इसके लिए 3 से 10 साल की उम्र तक एक अलग टूथपेस्ट आता है। 10 साल के बाद वो जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं मिक्स डेंटिशन, जहां पे आधे दांत दूध के होते हैं आधे होते हैं परमानेंट के, तो मिक्स डेंटिशन बोला जाता है। तो वो स्टेज चलती है और परमानेंट दांतों का डेवलपमेंट लगभग चलता है 16 साल तक। तो 10 से 16 तक एक अलग टूथपेस्ट यूज किया जा सकता है या फिर होता है, और 16 के बाद आप कोई भी टूथपेस्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। तो बेसिकली बच्चों में 2 टाइम ब्रशिंग, जैसे आपने सवाल पूछा अभी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, पहले तो उनको बचपन से ही ये उंगली वाले ब्रश से अगर आप ट्रेनिंग लगाओगे तो उनको आदत पड़ेगी कि ब्रशिंग करना जरूरी होता है। वो साइकोलॉजिकली उनमें वो डेवलपमेंट होगी कि हाँ ब्रशिंग इज मैंडेटरी, 2 टाइम ब्रशिंग इज मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद समझ लीजिए 3 से 4 मिनट ब्रशिंग करना होता है, उससे ज्यादा ब्रशिंग की जरूरत नहीं होती है। हाँ अभी मुद्दा निकला ही है तो मैं यहाँ पे ये भी बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक टूथब्रश कितने दिन यूज करे।
1: ये हम सभी के मामले में करें।
0: हाँ,
1: चाहे बच्चे हो,
0: बच्चे हो या बड़े हो, 1.5 से 2 महीने के बाद अपना टूथब्रश चेंज करना है, ठीक है। वो भले कितना भी अच्छा दिखे, नॉर्मली अपना इंडियन मेंटेलिटी है जब तक वो ब्रिसल्स है ब्रश के
1: टेढ़े मेढ़े
0: घस ना जाए या फिर वो अलग अलग आकार ना ले ले तब तक हम लोग चेंज नहीं करते, बट ऐसा नहीं होता है। माइक्रो ब्रिसल्स रहते हैं वो, उनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी एक लाइफ होती है। मतलब आपने कुछ टूथब्रश ऐसे सुने भी होंगे या देखे भी होंगे, उनके ऊपर कलर इंडिकेटर दिया जाता है अभी ब्रिसल्स में कि वो फेड हो जाए या फिर इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने ब्रश को चेंज करना है। तो उसका भी टाइम फ्रेम उतना ही होता है कि 1.5 से 2 महीने तक आपका वो उसका कलर चेंज हो जाता है या फेड हो जाता है, जो कुछ भी है, तो तब आपको वो चेंज करना होता है। अभी वापस बच्चों की बात करें तो 2 टाइम ब्रशिंग मैंडेटरी होता है। अभी बच्चों को जैसे हमने बात की कि जंक फूड इजीली मिल रहा है, क्रेविंग करते हैं बच्चे, स्कूल्स भी अभी ज्यादा पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज होती है, तो वो चीजें खिलाए नहीं खिलाए, बच्चे हैं उनका खाना हक बनता है, लेकिन उसको खाने का एक तरीका होना चाहिए। ये जो खाना मैं बात कर रहा हूं वो सारा जंक फूड, स्टिकी फूड,
1: चॉकलेट,
0: स्वीट्स, तो उनके लिए अगर आपके बच्चों के केस में नॉर्मली कैविटीज नहीं है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन आप उनको दे सकते हो, लेकिन उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, 15 मिनट का विंडो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की बात बता रहा हूँ। आपके घर में जितनी बड़ी थाली हो, परात बोलते हैं कोई लोग, बड़ी से बड़ी थाली हो, वो थाली पूरी भर के सजा दो उनके सामने जो चीजें उनको पसंद है। उसमें बिस्किट्स आ गए, चॉकलेट्स आ गए, वेफर्स आ गए, 10 पैकेट आपके चिप्स के आ गए, कुछ भी, सब उसके सामने रख दो बच्चों के सामने, और उनको बोलो कि ये 15 मिनट है आपके पास, जैसे खाना है वैसे खाओ, फिर दोनों हाथों से खाओ, दोनों पैरों से खाओ, थाली में बैठ के खाओ या थाली सर पे रख के खाओ, चलेगा। लेकिन 15 मिनट के बाद वो सब उठा के रखना है, 15 मिनट के बाद उनको इमीडिएटली ब्रश करवाना है।
1: ओके,
0: सो नॉर्मल 2 टाइम ब्रशिंग प्लस ये तीसरा वाला ब्रशिंग जंक फूड के बाद, इससे कैविटीज नहीं होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बच्चों का ऐसे होता है कि हमें घर पे सारी चीजें मिल रही है
1: तो हमको कहीं बाहर
0: क्रेविंग नहीं होता है। बाहर इजिली जो बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर कोई देता है तो तुरंत खाने के लिए जिद करते हैं, तो वो क्रेविंग चली जाती है। हाँ, जब आप ये उठा के रख रहे हो तो ऐसी जगह पे रखना कि एक डब्बा है जो उनको दिखे, एक्सेसिबल ना हो, इजीली वो पहुंच ना पाए, नहीं तो आप सो जाओगे, वो वापस खाने बैठ जाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो ये चीज अपने को ध्यान देनी है।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, फिर आगे की बातें करते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो बताइए आपको कौन से गायक बहुत पसंद है?
0: मुझे पुराने गायक पसंद है, सबसे ज्यादा पसंद है मुझे किशोरदा जी, किशोर कुमार जी।
1: क्या बात है, तो पहला गाना कौन सा चुन रहे हैं आप?
0: पहला गाना मुझे अभी जो याद आ रहा है, ओ साथी रे, मुकद्दर का सिकंदर।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये गाना हमने सुना हो, साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा लग रहा था जैसे ये दांतों के लिए कहा जा रहा हो, क्योंकि क्योंकि दांत अगर नहीं हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाए। दांतों की समस्या लोगों को तब समझ में आती है जब समस्या सामने आती है, यानी जब दर्द होता है तब डॉक्टर नजर आता है। यहाँ हम बात करेंगे कैविटी की,
1: हाँ जी,
0: कि कैसे कैविटी बनती है और व्यक्ति को सावधान कब हो जाना चाहिए, तब नहीं जब असह्य दर्द हुआ और डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर दो।
1: तो ये समझने से पहले मैं आपको दांत का नेचुरल स्ट्रक्चर कैसे होता है ये थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। कुदरती तौर पे वैसे तो पूरी बॉडी ही इतनी खूबसूरती से बनाई गई है, तो दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में मैं अगर बताऊं तो दांत में एक नस होती है, नस के ऊपर एक पार्शियली मिनरलाइज्ड 60% मिनरलाइज्ड लेयर होता है, उसको बोलते हैं डेंटिन। सबका डेंटिन का कलर येलोइश टू ब्राउनिश होता है।
0: अच्छा,
1: उसके ऊपर कोटिंग आती है इनामल की।
0: हाँ।
1: डेंटिन की थिकनेस होती है 4 से 6 mm तक। उसके ऊपर रहती है 2 से 4-5 mm तक इनामल की थिकनेस।
0: ठीक है,
1: तो अभी जो नस है उसके जो सिरे हैं वो डेंटिन तक आए हुए रहते हैं, इनामल में कोई भी नस का सिरा नहीं आया है।
0: बिल्कुल,
1: इसके लिए कैविटी जब स्टार्ट होती है, बैक्टीरियल ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, तब कभी दर्द नहीं होता है। दांतों में एक ब्राउनिश स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है।
0: ओके।
1: कभी कभार खाना फंसता है तो हम लोग उसको निकाल देते हैं, टूथपिक से, पिन से, जो कुछ भी मिले उससे निकाल देते हैं।
0: लेकिन नस तक
1: अभी तक पहुंचा नहीं है
0: जी।
1: लेकिन धीरे धीरे वो बैक्टीरियाज अंदर बढ़ेंगे, जब डेंटिन तक पहुंचेंगे, नसों के एंड तक पहुंचेंगे, तब कभी कभार पानी पी लिया, ठंडे पानी पे झिंझिनाहट हो रही है, या फिर स्वीट खाया तो जब तक वो स्वीट का असर है तब तक झिंझिनाहट हुई, उसके बाद चला गया, तभी भी हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही चीज जब आगे बढ़ के नस तक पहुंच जाती है, तो नस एक ऐसा एरिया होता है कि दांतों की संवेदनाएं ब्रेन तक पहुंचाता है, और दांतों को खून का सप्लाई रखना, दांतों को न्यूट्रिशन देना नसों से ही होता है। तो जब वो नस तक पहुंच जाता है तब जाके असहनीय दर्द जो बोलते हैं वो तब होना चालू होता है,
0: जिसकी हमने चर्चा की।
1: एग्जैक्ट,
0: डॉक्टर साहब मर गए बचा लो।
1: हाँ जी, उसमें भी कुछ लोग काउंट

0: सेल पे जो मेडिसिन मिलते हैं मेडिकल में जाके दर्द की दवाई ले लेते हैं, चला लेते हैं। अभी वो नस सड़ गई है।
1: हाँ।
0: नस सड़ने के बाद नीचे हड्डी के नीचे सेप्टिक जमना चालू होता है, उसको डेंटल एब्सेस बोलते हैं।
1: ये बहुत खतरनाक है।
0: यस, फिर कोई दवाई भी असर नहीं करती है, तब जाके डॉक्टर को याद किया जाता है और तब जाके लोगों की नींद खुलती है कि हमें दांतों की समस्या है या फिर दांतों का ध्यान हमें रखना चाहिए। यहाँ पे मैं और एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों में ना एक मिथ है कि मुंह में जितना दांत दिखता है ना उतना ही दांत होता है।
1: अच्छा।
0: पर असलियत ऐसी नहीं है। असलियत जितना मुंह में दांत दिखता है उसका कम से कम डेढ़ गुना दांत अंदर होता
1: है,
0: हड्डी में बैठा होता है, जबड़े की हड्डी में, तभी हम लोग सारी चीजें चबा पाते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ इतना सा दांत होता तो हम लोग जितनी चीजें खा रहे हैं आज, जिस तरीके की चीजें खा पी रहे हैं, वो जरा भी पॉसिबल नहीं था, मुमकिन ही नहीं था। तो ये मिथ लोगों ने थोड़ा तोड़ लेंगे अपना तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, कि दांत मुंह में दिखता है उतना नहीं होता है, उससे डेढ़ गुना दांत अंदर होता है। मतलब सिंपली अगर इस चीज को मैं समझाऊं तो बिल्डिंग जितनी बाहर दिखती है उसका पाया उतना नीचे गहरा होता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तब जाके वो खड़ी रह पाती है।
1: सेम बात है,
0: सेम बात यहाँ पे है। फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है कि बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर का स्ट्रक्चर काम करेगा, वही प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है। तो ये चीज है। तो ये कैविटीज जब नस तक पहुंच गई है, नीचे एब्सेस बना रही है, तब जाके दवाई असर नहीं कर रही, तब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। अभी जैसे मैंने बोला कि कैविटी शुरुआत में स्टार्ट होती है, बैक्टीरियाज की वजह से होती है। ये बैक्टीरियाज कहां से आते हैं? तो बॉडी में बहुत तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, लेकिन अपने मुंह में और अतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में, बहुत सारे तरीके के, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि दुनिया में जितने अवेलेबल बैक्टीरियाज है उतने सारे तरीके के बैक्टीरियाज अपने इंटेस्टाइन में और मुंह में अवेलेबल है। लेकिन उसमें से कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसानदायी होते हैं। तो जब ये हार्मफुल बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं तब सड़न बढ़नी चालू होती है, क्योंकि वो सर्वाइव करते हैं कैल्शियम पे एंड हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स, जो इनामल का स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर इनामल का, उसको गला के वो अपना कैल्शियम की नीड पूरी करते हैं। और ये कब होता है? दांतों पे चिपका हुआ कोई भी खाना कैविटी बना सकता है लंबे समय तक। हम लोग स्वीट्स को या चॉकलेट्स को जल्दी दोष दे देते हैं। हाँ, उसका कारण भी है वैसे, क्योंकि स्वीट्स खाने के बाद में नॉर्मली जो अपनी थूक है, सलाइवा है, उसका पीएच वो होता है 7.2 to 7.4, लेकिन जब हम लोग स्वीट्स खाते हैं तो इट ड्रॉप्स, वो कम हो जाता है इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वो 4 से 5 के बीच में आ जाता है। मतलब न्यूट्रल रीडिंग होता है पीएच का 7, मतलब वो चीज ना एसिडिक है ना अल्कलाइन है, नॉर्मली सलाइवा अपना अल्कलाइन होता है। तो जब वो एसिडिक बन जाता है तो एसिडिक एटमोस्फियर में जो बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं वो दांतों को गलाने के लिए, या फिर वो हार्मफुल बैक्टीरियाज है, वो खुद को सर्वाइव करने के लिए दांतों को गलाना चालू कर देते हैं।
1: और ये हम खुद इस तरह का माहौल बनाते हैं दांतों में।
0: एग्जैक्टली। नॉर्मली ये तभी होता है जब आप ब्रश नहीं कर रहे हो या फिर स्वीट्स खाए हैं, टेस्ट अच्छा लग रहा है तो बहुत देर तक उसको मुंह में ऐसे ही घोलते बैठे हो
1: जी।
0: रात में नॉर्मली जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं या फिर खाना खा के तुरंत सो जाते हैं तो अपना जो थूक है, सलाइवरी सिक्रीशन है, वो भी कम हो जाता है। नहीं तो सुबह तक, वो भी कुदरती देन है, वो फंक्शन वैसा है, नहीं तो सुबह तक अपना तकिया पूरा सलाइवा से भर जाएगा।
1: बिल्कुल
0: ठीक है। तो वो सिक्रीशन कम होता है, तो इसकी वजह से जो सलाइवरी एंजाइम्स रहते हैं जो इम्यूनिटी का काम करते हैं वो भी कम होंगे। सलाइवा का दूसरा काम होता है कि वॉश आउट करना, रिंसिंग देना दांतों को, तो वो भी नहीं हो पाता। इसके लिए रात में जो लंबा समय 8 से 10 घंटे हम लोग जब सोते हैं तब ये बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं। इसके लिए रात में ब्रश करके सोना जरूरी होता है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, और सुबह उठते ही ब्रश करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, बातें ओरल हाइजीन की चल रही हैं और आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से कैविटी पैदा होती है और बाकी तमाम चीजें हैं। आज हम देख रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी के दांत बड़े मजबूत देखे गए हैं। हमारी दादी नानियां कड़क से कड़क चीज, मतलब आपने गाजर और ककड़ी को कड़क कहा, उससे कहीं ज्यादा कड़क चीजों को, अखरोट जैसी चीजों को, गन्ने को मजे से छील के खा ले रही। आज के बच्चों में तो वो उनके दांतों में वो दमखम दिख ही नहीं रहा है। तो मुद्दा ये है कि क्या आज का समाज दांतों को लेकर कम अवेयर है और हम कमजोर दांतों वाले जमाने में आ गए?
0: अभी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने जैसे पहले भी बताया था वैसे ही आएगा यहाँ पे, कि प्रॉब्लम ये हो चुका है ना कि ज्यादा पका हुआ खाना खाने की आदत बन चुकी है, सॉफ्ट खाना खाने की आदत बन रही है लोगों की, जिसकी वजह से मसल्स और जॉ बोन, हड्डी जो होता है जबड़े का, उतना स्ट्रांग बन ही नहीं पा रहा
1: जैसे पहले के बुजुर्गों का।
0: एग्जैक्टली, क्योंकि वो कच्चा खाना खाते थे, खेतों में चलते चलते उनका गन्ना चूसने का काम होता था, गन्ना दांतों से छील के खाने का काम होता था, उनका खाना उतना फाइबरस था, फाइबर्स बोलते खाने में, बेसिक है। मतलब जैसे जिम जाते हैं हम लोग मसल्स बढ़ाने के लिए, वहां क्या करते हैं हम लोग, मसल्स को एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं, एक्स्ट्रा उसकी काबिलियत से ज्यादा उसके ऊपर लोड डाला जाता है, तब जाके मसल एक्स्ट्रा बड़ा बनता है। सेम फेशियल मसल्स का होता है, जो चबाने वाले मसल्स है उनमें भी वही चीज है। जितना काम आप उनको दोगे उतना वो बनेंगे।

0: और ये चीज अगर डेवलपमेंटल स्टेज में हो तो ज्यादा अच्छा है। बट हम लोग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोगों का अवेयरनेस कम हो रहा है, पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है। बच्चों का पैम्परिंग ज्यादा बढ़ गया है। मतलब अगर हमारे भी बचपन की बात करें तो पेरेंट्स ये बना है ये खाना पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: ये रूल होता था घर का। आज ऐसे होता है, मतलब मेरा बच्चा भी छोटा है अभी, तो हमारे घर पे भी ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन मैं खुद वहां पे एक विलन का रोल ले लेता हूँ कि नहीं ये नहीं होना चाहिए,
1: ये तो खाना ही पड़ेगा।
0: हाँ जी, तो नॉर्मली आजकल खाना बनता है कि बच्चा तुझे क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए।
1: हाँ, उनके मुताबिक बन रहा है।
0: हाँ, उनके मुताबिक बन रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये चीज पूरी तरीके से गलत है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए। हम लोग वो लिमिट कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक आध साल पहले की बात है, या फिर बहुत बार हुआ है वैसे, लेकिन ये एक एपिक पेशेंट मेरे क्लिनिक में आए थे जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। 5 साल की बच्ची को लेके आए थे, दांतों में कैविटीज थे, मसूड़ों में सूजन थी, मतलब उसका एब्सेस बन गया था अंदर, इतना उसका इन्फेक्शन फैला हुआ था। उसके पिताजी उसको लेके आए थे, मैंने देखा, चेक किया, ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने सुना, सुनने के बाद उन्होंने बच्ची को पूछा, बेटा आपको करवाना है? अभी 5 साल की बच्ची को क्या पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसने पहली बार दांतों का दवाखाना देखा है। तो मैंने उनको पूछा कि आप उसे क्यों पूछ रहे हो, वो तो छोटी है, उसको क्या समझेगा क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन उनका जवाब बहुत यादगार था मेरे लिए, कि नहीं, आजकल बच्चों को पूछना पड़ता है।
1: ओहो,
0: अभी इतना बच्चों को पूछ के अगर आप जियोगे तो। मैंने उनको भी ये चीज हंसते हुए बोल दी थी कि ये थोड़े दिनों बाद आपको नहीं पूछेगी।
1: बहुत सही है, बहुत सही है।
0: तो ये जो दुलार है ना,
1: ये बहुत नुकसानदेह है।
0: हाँ, मतलब एक लिमिट तक होना चाहिए। इसके लिए मैंने बोला ना कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि कहाँ प्यार करना है और कहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की बारी है, उसके बाद हम रूट कैनाल की बात करेंगे।
0: श्योरली। तो अभी किशोरदा का ही गाना सुनेंगे, मेरे नैना सावन भादो।
1: क्या बात है,
0: क्योंकि दांतों में दर्द होता है तो नैनों से तो सावन बरसना ही है।
1: सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, रूट कनाल ट्रीटमेंट आजकल बहुत लोगों को कराना पड़ता है और दांतों को लेकर एक जरूरी ट्रीटमेंट है जब सड़न हो जाती है। क्या इससे बचा जा सकता है? किन मामलों में, किन सावधानियों के जरिए और कब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है?
1: जैसे मैंने आपको दांत का स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि नस अंदर होती है, उसके ऊपर डेंटिन होता है, उसके ऊपर इनामल होता है, तो जब सड़न नस तक पहुंची है तब जाके रूट कैनाल करना पड़ता है। रूट कैनल में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो आपकी नस सड़ रही है उसको साफ किया जाता है और उसकी जगह पे नकली नस बोल सकते हो आप उसको, या फिर आर्टिफिशियल मटेरियल का फिलिंग किया जाता है।
0: yes.
1: जिसकी वजह से दांतों का सेंसेशन तो चला ही जाता है बट उसका ब्लड सप्लाई भी काफी हद तक कम हो जाता है।
0: yes.
1: इसके लिए रूट कैनल करने के बाद कैप लगाना मैंडेटरी हो जाता है।
0: जी
1: क्यों? क्योंकि एक तो दांत का स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है, ब्लड सप्लाई कमजोर हो रहा है, मतलब जो न्यूट्रिशन मिल रहा है दांतों को वो भी कम हो रहा है, और तीसरी बात, जितना बड़ा गड्ढा होता है उतना बड़ा सीमेंट वहां पे टिके रहना मुश्किल होता है। चौथी बात यह है यहाँ पे कि नस तो चली गई, सेंसेशन चली गई, तो जब वापस उसमें अगर कैविटी लगेगी तो पेशेंट को भी पता नहीं चलेगा और दांत टूट जाएगा। अभी दांतों के ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं और किस तरीके से किए जा सकते हैं, सबसे पहली बात तो होती है नॉर्मल सफाई करना। जब आपके दांतों में सड़न नहीं है लेकिन दांतों पे कुछ परत दिख रही है आपको, तो उसको साफ कर लो। उसके बाद आता है फिलिंग करना। जैसे मैंने बताया कि शुरुआती दौर में कैविटी दांतों में एक ब्राउन स्पॉट या काला स्पॉट की तरह दिखती है, या फिर कभी कभार थोड़ा बहुत खाना फंस रहा है, उसी वक्त अगर उसको ट्रीट किया जाए तो सिंपल ट्रीटमेंट होता है कि उसको साफ किया जाता है, फिर वो गड्ढा बनता है उसमें सीमेंट भरा जाता है। अभी ये दांतों के स्पेशल सीमेंट्स होते हैं, कुछ लोगों का मिथ यहाँ पे ये भी है, और ये मॉक डेंटिस्ट या फिर स्ट्रीट डेंटिस्ट जो होते हैं वो ये चीज करते भी है कि बहुत बार दांतों में एक्रेलिक भर के दे देते हैं।
0: अरे,
1: एमसील भरे हुए दांत देखे हैं मैंने,
0: अरे बाप रे,
1: व्हाइट सीमेंट भरा हुआ देखा हुआ है, जिसकी वजह से फिर कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि वो दांत तो चला ही गया, जबड़े का हड्डी भी गल गया, और उसकी वजह से आजू बाजू के भी दो दो तीन तीन दांत निकालने पड़े।
0: ओहो।
1: और ये होता है सस्ते के चक्कर में जब लोग भागते हैं, सस्ते में हमारा काम हो रहा है। सीधी सी बात है, दुनिया में आज हर कोई बिजनेस करने बैठा हुआ है। अगर कोई चीज 10 रुपए की बन रही है तो बनाने वाला उसको 15 रुपए की या 20 रुपए की बेचेगा।
0: बिल्कुल।
1: वो डिस्ट्रीब्यूटर वहां से लेगा, वो अपना मार्जिन जोड़ेगा, और फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास आ रही है या फिर पेशेंट के पास जा रही है, तो हर एक का मार्जिन जुड़ के अगर वो 10 रुपए की चीज आपको कोई 9 रुपए में ऑफर करे तो सीधी सी बात है उसकी बनावट में कुछ खोट है, खामियां है, कुछ भी है, मतलब बनावट खराब है। डेंटिस्ट्री मतलब बहुत सारी फील्ड्स ऐसी है शरीर के मामले में कि जहां पे हम लोग शरीर में कुछ चीजें डाल रहे हैं जो एक्सटर्नल है, पर अगर वो शरीर से सुसंगत नहीं होंगी, शरीर के मुताबिक नहीं होंगी, तो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
0: और लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि दांतों में कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है।
1: एग्जैक्टली।
0: तो उस चीज का मजबूत होना कितना जरूरी है।
1: एग्जैक्टली, मतलब अगर यहाँ पे नंबर वाइज मैं बताऊँ,
0: वही मैं जानना चाहता हूँ,
1: दांतों का जो नॉर्मल हमारा बाइटिंग फोर्स रहता है इट इज रेंजिंग फ्रॉम 110 to 130 पास्कल, दैट इज न्यूटन सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर पे 130 न्यूटन का प्रेशर हम लोग डालते हैं, ये नंबर वाइज।
0: ये बहुत ज्यादा है।
1: बहुत ज्यादा है। तो ट्रीटमेंट्स पे हम लोग थे, तो पहले तो फिलिंग हो गया, उसके बाद फिलिंग प्लस कैप होता है। ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। ये कब किया जाता है? जब कैविटी से दांत का ऊपर का स्ट्रक्चर अच्छा खासा सड़ गया है लेकिन वो नस तक नहीं पहुंचा है, तो उतना बड़ा सीमेंट लोड नहीं ले पाएगा जितना हम लोग फोर्स की बात कर रहे थे अभी, तो वो सीमेंट को रिटेन करने के लिए, उसको एक स्ट्रक्चर रखने के लिए उसके ऊपर कैप लगाया जाता है।
0: यस।
1: फिर तीसरा ट्रीटमेंट आता है रूट कैनाल। जब नस छू गई है, नस इन्फेक्ट हो गई है या फिर नस के नीचे इन्फेक्शन हुआ है, फिर उसमें 2-3 बार नस के एरिया की सफाई की जाती है, पूरी सड़न साफ करके नस तक एक्सेस लिया जाता है, नस के एरिया की सफाई की जाती है, दवाई डाली जाती है ताकि जो बैक्टीरियाज अंदर चले गए वो मर जाए, खत्म हो जाए और वो पूरा एरिया असेप्टिक बने, फिर उसको पूरा स्टराइल करके, मतलब फिलिंग करने से पहले भी अलग अलग दवाइयां डालते हैं हम लोग उसमें ताकि वो पूरा एरिया स्टराइल हो जाए, डिसइन्फेक्ट हो जाए, और फिर हम लोग फिलिंग करते हैं। फिलिंग करते वक्त हम लोग इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि जो पहले वाला फिलिंग या फिर सीमेंट निकाला हुआ है वो कहीं पे भी टच ना हो, या फिर थूक भी अपनी टच ना हो उसको, क्योंकि थूक में भी बैक्टीरिया होते हैं जैसे हमने बात की, तो वो भी वहां पे टच ना हो, ये ध्यान हम लोग रखते हैं। फिर उसके बाद फिलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाई जाती है, और आखिरी ट्रीटमेंट होता है दांत निकालना, जबकि पूरा ही दांत टूट चुका है या फिर बहुत ज्यादा सड़न बढ़ चुकी है। जैसे बड़ी चौबर होती है पीछे वाली, उनकी 2 या 3 जड़े होती है, वो जड़ों के बीच में क्रैक आने लग गया है, उस सिचुएशन में रूट कैनाल भी असर नहीं करता है, तब दांत निकालना पड़ता है। अभी यहां

0: पे एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि दांत निकालने के बाद बच्चों में भी एक चीज होती है जिसको बोला जाता है स्पेस मेंटेनर, और बड़ों में एक चीज की जा सकती है, दांत बिठाने की जरूरत होती है। मुंह में एक इकलौता दांत ऐसा है जिसको बोलते हैं अक्कल दांत, विजडम टूथ, वो अगर निकाल दिया जाए और ना बिठाया जाए तो चलता है, क्योंकि नेचुरली भी जब हम लोग मुंह बंद करते हैं तो विजडम टूथ बहुत सारे केसेस मतलब मैक्सिमम केसेस में वो टच होता ही नहीं ऊपर नीचे, तो खाना चबाने का एज सच कुछ फंक्शन नहीं होता उसका, ना दिखने में वो काम में आता है, तो इसके लिए वो दांत ना बिठाए तो चलता है। लेकिन उसे छोड़ के बाकी कोई भी दांत अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसे बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अभी ये क्यों होती है?
1: बिल्कुल,
0: नॉर्मली लोगों का सवाल आता है कि क्यों बिठाना है, मैं तो खा
1: इसके
0: पा
1: बिना
0: रहा हूं।
1: भी चल सकता है,
0: इसके बिना भी मेरा चल रहा है, क्योंकि एक ही साइड का एक दांत निकाला हुआ, पीछे की चौबर तो है, आगे के दांत है, दूसरे साइड में मेरे सब फाइन है। सबसे पहली बात ये होती है कि नॉर्मली जब हम लोग दांतों पे प्रेशर देते हैं तो जैसे हमने बोला कि उसकी 1.5 गुना जड़ें अंदर होती है, वो जड़ों के द्वारा हड्डी में फोर्स पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो दांत के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो पूरे जबड़े के हड्डी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये उसका फंक्शन है। बॉडी की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि जो भाग हम लोग यूज नहीं करते हैं बॉडी वहां पे न्यूट्रिशंस वेस्ट नहीं करती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यहाँ पे, तो किसी का हाथ अगर प्लास्टर में है, समझ लीजिए किसी वजह से फ्रैक्चर हुआ है प्लास्टर में, 1.5-2 महीने बाद जब प्लास्टर निकाला जाता है तो आपने भी देखा होगा कि वो हाथ उतना मजबूत नहीं दिखता है जितना उसका पहले था। क्यों? क्योंकि उतना फंक्शन वो कर ही नहीं रहा था 1.5-2 महीने तक। वहां पे न्यूट्रिशंस की सिर्फ जरूरत थी वो घाव भरने के लिए, वो हड्डी भरने के लिए उतने ही न्यूट्रिशंस पहुंचाए जाते हैं। तो वही होता है जबड़े की हड्डी के मामले में।
1: अच्छा,
0: जब दांत निकल गया वो हड्डी का फंक्शन खत्म हो गया तो हड्डी गलना चालू हो जाता है। वो गलते गलते इतना गल जाता है कि आजू बाजू के दांतों का भी हड्डी गल जाता है। एक चीज ये होती है। दूसरी चीज, आगे का दांत पीछे झुक जाता है, पीछे का दांत आगे झुक जाता है, ऊपर वाला दांत नीचे आता है या नीचे वाला दांत एंटी ग्रेविटी ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी ट्राइज टू रिस्टोर इट्स फंक्शन।
1: ओके,
0: खाना खाना तो चालू ही है, बॉडी को सिग्नल्स मिल ही रहे कि यहाँ पे खाना चबाया जा रहा है,
1: तो वो
0: बैलेंस करने के लिए जो दांत अवेलेबल है उनको वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है।
1: ओके,
0: एक दो दिनों में ये चीज नहीं होती है, टाइम लगता है, लेकिन ये सब जब होता है और जब पेशेंट की नींद खुलती है तब उनके आजू बाजू के दांत भी खराब हो चुके होते हैं।
1: इसलिए डॉक्टर के पास जितने जल्दी हो सके, डेंटिस्ट के पास समस्या से पहले पहुंचना चाहिए।
0: सही बात है, और इसके लिए सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, डेली आप अगर ब्रश कर रहे हो ना तो उसी टाइम पे ब्रश होने के बाद मुंह में सिर्फ अपने झांकना है 1 मिनट के लिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं दिख रहा, कहीं कुछ और तो नहीं दिख रहा, और अगर दिख रहा है नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकल रहा वो चीज तो एक बार डेंटिस्ट का ओपिनियन लिया जाए।
1: ठीक बात है,
0: इतनी सी बात होती है, पर हमारा अभी लाइफस्टाइल इतना स्पीड वाला हो गया ना कि उतना भी वक्त हमारे पास नहीं है। और जब तक प्यास लगती नहीं है हम लोग कुएं के पास जाते नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप गुनगुनाते भी हैं और गाने का शौक रखते हैं।
0: हाँ जी, शौकिया तौर पे रखता हूँ, मैं खुद को गायक नहीं मानता हूँ
1: जी,
0: बट हाँ कभी कभार छोटे मोटे घरेलू जो गेट टुगेदर होते हैं वहाँ पे हम लोग गा लेते हैं।
1: तो हमारे लिए भी गाइए।
0: ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ
1: जी।
0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, जिंदगी एक सफर तो है, लेकिन जब दांतों का दर्द होता है तो इंसान बहुत सफर करता है। ये दूसरा वाला सफर जो है ये बड़ा खतरनाक है। माँ बाप दो बातों से परेशान रहते हैं, एक बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत और दूसरे बाहर निकले हुए दांत। इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ चारों तरफ ब्रेसेस लगे हुए बच्चे नजर आते हैं, ये सब क्या मामला है?
1: जैसे हमने बात की कि जब जबड़े की ग्रोथ बराबर नहीं होती है, तब दांतों को आने के लिए जगह नहीं होती है। परमानेंट दांत बड़े होते हैं तो वो जैसे जगह मिलती है वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तब दांत आड़े टेढ़े हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: अभी आड़े टेढ़े दांत क्यों नहीं होने चाहिए? नॉर्मली लोग एक चीज समझते हैं कि एस्थेटिक वाइज दिखने के लिए वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, या फिर ज्यादा आगे है तो इसके लिए वो सोचते हैं कि हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन इसका और एक प्रॉब्लम होता है आगे चल के। क्या होता है ना, दांतों के ऊपर ही नहीं, दांतों के बीच में भी गैप्स होते हैं नॉर्मली। वो गैप्स में जब खाना फंसता है, और अगर आपके दांतों के अरेंजमेंट ठीक नहीं है तो आपको फंसा हुआ खाना समझ में भी नहीं आता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसकी वजह से कैविटीज ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से दांतों के प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ते हैं, और वो व्यक्ति परेशान रहता है जिंदगी भर कि मेरे दांतों में हमेशा प्रॉब्लम ही होती है। दूसरी बात, हाँ हमने ब्रशिंग की बात की, यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि दांतों के बीच के एरिया को साफ करने के लिए कोई भी ब्रश आज तक बना नहीं है।
0: ओके,
1: उसके लिए बना है, लेकिन जब गैप्स उतने बड़े हो, उसको प्रोक्सा ब्रशेस बोला जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि गैप कितना है, बट नॉर्मली जो टचिंग होते हैं दांत, या फिर जो नॉर्मल गैप्स होते हैं जहां पे खाना फंस रहा है, वो नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलता है, तो उसके लिए करना पड़ता है फ्लॉस।
0: फ्लॉस के लिए वो
1: धागा आता है, नायलॉन का धागा रहता है, इसको फ्लॉस ही बोला जाता है। अलग अलग कंपनियां बनाती है उसको, उसमें भी दो तीन टाइप के आते हैं, आपके लिए कंफर्टेबल रहे वो आप कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी यहाँ पे। अभी आड़े टेढ़े दांतों की बात करेंगे, आगे आए हैं, एस्थेटिकली अच्छे नहीं दिखते हैं, तो ब्रेसेस, यस इट इज द सोल्यूशन। अभी तो ब्रेसेस में बहुत सारे एडवांसमेंट्स आए हुए हैं, अलाइनर्स करके चीज आई हुई है जो पूरे ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस होते हैं कि पहना है व्यक्ति ने कुछ समझ में नहीं आता है।
0: ओके,
1: जिसको अलाइनर्स बोला जाता है। तो अभी उसमें भी कैसा है कि बनाने वाली कंपनीज बहुत है, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज बहुत कम है। और प्रोडक्ट जब तक अच्छा नहीं है तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा डिजिटल प्रोग्रामिंग होता है, स्कैन किया जाता है आपके जबड़े का पूरा
0: जी,
1: और वो प्रोग्राम बताता है कि वो सेट्स कितने लगेंगे अलाइनर्स के, फिर हर सेट आपको 15 से 20 दिन पहनना होता है, तब जाके कुछ चेंज होता है दांतों में अरेंजमेंट में, तब दूसरा सेट पहनना होता है। अभी ये निकालने पहनने वाली चीज है, इसकी सबसे बड़ी खामी भी ये है और अच्छाई भी यही है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि खामी मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली लोग निकाल के भूल जाते हैं वापस पहनना। वो भले निकालने पहनने वाली चीज हो, लेकिन उसको दिन में 20 से 22 घंटे पहनना जरूरी होता है, वो सिर्फ ब्रशिंग के टाइम पे या खाना खाने के टाइम पे आप निकाल सकते हो, बाकी टाइम आपको पहन के रखना है, पहन के बात करनी है, पहन के सोना है, वैसे भी वो दिखता नहीं है, तो मोस्ट कंफर्टेबल थिंग। पर अभी भी कुछ चीजें हैं जो अलाइनर्स से नहीं की जा सकती, जैसे ज्यादा ही कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसके लिए फिर हम लोग हाफ ब्रेसेस से करते हैं और हाफ अलाइनर्स से ट्रीटमेंट कर देते हैं कि हाँ नॉर्मल पे आ गया, फिर हम लोग अलाइनर्स पे शिफ्ट करेंगे। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर बजट, बाकी फाइनल रिजल्ट जो आपको चाहिए होता है वो सब में आता है।
0: ओके,
1: सेम ही आता है, ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपकी चॉइस क्या है। जितनी एस्थेटिक चीजें आप लोगे जो ना दिखे या फिर दिखने में ज्यादा खूबसूरत हो, तो वो थोड़ी महंगी जाती है, और जितना सिंपल लुकिंग चीज रहेगा या फिर थोड़ा और दिखने के लिए होगा, जैसे नॉर्मली आप मेटल के ब्रेसेस देखते हो, स्टील के ब्रैकेट्स लगाए हुए होते हैं, वो एक सस्ता ऑप्शन है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली पेशेंट्स को कभी सजेस्ट नहीं करता हूं कि महंगे वाली चीज के लिए जाइए आप, अनलेस एंड अंटिल उनका प्रोफेशन डिमांड ना कर रहा हो, या फिर लेट वो ब्रेसेस कर रहे हैं, मतलब बड़े उम्र में कर रहे हैं, तब मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इनविजिबल चीजों में जाइए। पर यंग बच्चा है जहां पे एस्थेटिक उसके कंसर्न नहीं है उतने, तब हम लोग नॉर्मली सस्ते वाले ब्रेसेस में भी जाने का ऑप्शन दे देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, दांतों की अरेंजमेंट ठीक हो जाती है, तो कहीं पे खाना फंस रहा है नहीं फंस रहा है वो सारी चीजें क्लीन रहती है, और जबड़े की हड्डी की ग्रोथ अच्छी रहती है। लॉन्ग टर्म में अगर आपके दांत आड़े टेढ़े हैं, आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है उनके ऊपर, भले आप नॉर्मल खाना पीना भी खा रहे हो और फिर भी आड़ा टेढ़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर भी आपका हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी गल जाता है, उसको ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन बोला जाता है, मतलब नॉर्मल बाइट की वजह से ट्रॉमा हो रहा है दांतों पे और वो हड्डी गल रही है।
0: ओके,
1: तो

0: ये सारी चीजें आप ब्रेसेस से ठीक कर सकते हो, ये चीज है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, कई लोग होते हैं जिनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, दांतों की बहुत सड़न होती है, पुराने जमाने से एक बहुत बड़ी समस्या पायरिया रही है।
0: हाँ जी,
1: इसकी बात करते हैं और उसके बाद उन मरीजों की बातें करेंगे जिनको पूरा डेंचर बदलने की जरूरत पड़ती है, एक्सट्रीम केसेस की बात उसके बाद करेंगे।
0: चलेगा। तो आपका पहला सवाल है पायरिया के बारे में। पायरिया जो चीज होती है, एक्चुअली ये बीमारी है जबड़े की हड्डी और मसूड़ों की।
1: अच्छा, वो दांतों की बीमारी?
0: दांतों की बीमारी नहीं है।
1: ओहो,
0: ये पहले समझने वाली बात है। सबसे बुरी बात पायरिया की ये है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन के लिए, कि इसमें मैक्सिमम लोगों को दर्द होता ही नहीं है। बहुत सारे केसेस में तो एक्सट्रीम बुरा हो जाता है, तभी भी दर्द नहीं होता है। लोग सिर्फ इतना बोलते कि दांत अपने आप हिलने लग गए और अपने आप गिर गए।
1: ओके,
0: अपने आप कभी दांत नहीं हिलता है। आप खुद सोचिए कि जितना दांत मुंह में दिख रहा है उससे 1.5 गुना दांत अंदर हड्डी में बैठा हुआ है। वो हड्डी जब गलेगी तब उसका सपोर्ट जाएगा,
1: यस,
0: तब दांत हिलेगा।
1: तो हड्डी मामला है।
0: एग्जैक्टली, वो एक दिन में होता नहीं है। पायरिया का बीमारी एक दिन में होता नहीं, उसके भी 4 स्टेजेस है, Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4 बोलते हैं हम लोग उसमें, टेक्निकल चीजें हैं। लेकिन ये क्यों होता है, तो दांतों के ऊपर जो परत जमती है, अभी इसमें जो काम करते हैं वो बैक्टीरियाज अलग है, दांतों को सड़ाने वाले बैक्टीरियाज अलग है। उसके डिटेलिंग्स में मैं नहीं जाऊंगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें। पर ये जो परत जमती है दांतों के ऊपर, खाने की परत समझ लो या फिर कोई भी स्वीट की परत है, उसमें बैक्टीरियाज पनपने चालू हो जाते हैं। स्पेशली जहां पे आप ब्रश नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि नॉर्मल लोगों को एक ही साइड से खाना चबाने की आदत होती है, तो दूसरे साइड में सलाइवरी सिक्रेशन कम होता है, तो वहां पे भी ये परत जमना चालू हो जाता है। तो उस परत में जो बैक्टीरियाज जमते हैं उनका भी खाना होता है कैल्शियम, वो मसूड़ों में से अंदर जाके हड्डी से कैल्शियम लेना चालू करते हैं।
1: ओके,
0: तब जाके हड्डी गलती है। तो इसमें पायरिया जो बड़ा टर्म है उसको 2 टर्म्स में डिवाइड किया जाता है, एक जिंजिवाइटिस और फिर होता है पेरियोडोंटाइटिस।
1: ओके,
0: दांत और हड्डी इनके बीच में एक लिगामेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट।
1: ओके,
0: वो लिगामेंट की बीमारी होती है पेरियोडोंटाइटिस। तो ये जो बैक्टीरियाज है वो कहां से जा रहे हैं, दांतों के ऊपर जमी हुई परत से ही जा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी जरूरी होती है, जैसे मैंने बोला कि जो चीज आपके ब्रश से साफ नहीं हो रही है तो उस चीज के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। उसको वक्त रहते ही आपने साफ कर लिया तो बहुत सारे केसेस में Grade 1 वाली स्टेजेस में तो सेल्फ रिपेयरिंग चीज है, उसके लिए कोई ज्यादा मेडिसिन भी नहीं देने पड़ते, सिर्फ साफ करना पड़ता है और अपने आप बॉडी ठीक कर लेती है उसको। अभी पायरिया जब होता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, एक मसूड़े में सूजन दिखना, अगर आप देखोगे तो समझ में आएगी, नॉर्मली लोगों के पास देखने के लिए वक्त है नहीं। वो आगे चल के मुंह से बदबू आना,
1: हाँ, ये थोड़ा विजिबल साइन है।
0: ये विजिबल साइन है, लेकिन इसको भी लोग नजरअंदाज करते हैं क्योंकि अपने मुंह की बदबू अपने आप को नहीं आती है,
1: लेकिन वो एक सोशल डिलेमा बन जाता है।
0: सोशल डिलेमा बन जाता है अगर खुद को आई तो। अगर आप उस बारे में अवेयर हो,
1: हाँ, लोग आपसे दूर जाने लगते हैं।
0: हाँ, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता। और नॉर्मली कोई आके खुल के आपसे ये बोलेगा नहीं कि भाई साहब आपके मुंह से बदबू आ रही है, इजीली बोलेगा नहीं, अनलेस एंड अनटिल आपका उस बंदे के साथ या बंदी के साथ उतना क्लोज रिलेशनशिप ना हो।
1: जी,
0: ठीक है। फिर उसके बाद में आगे होता है कि कभी कभार ब्लीडिंग होना चालू होता है मसूड़ों में से।
1: हाँ जी,
0: ब्रश करते वक्त खून आ गया, फिर उसके बाद चालू होता है दांत हिलना। ये एक स्लो पॉइजन है बॉडी में, मतलब ये बहुत कॉमन है। अभी कल की बात है, मेरे एक दोस्त के पिताजी के 4 दांत गिर गए। बोले शुक्रवार को गिरे हैं, मुझे कल फोन आया तो मैंने पूछा कैसे गिरे, अपने आप गिर गए।
1: कितना नॉर्मल है ना,
0: कितना नॉर्मल है। आपको अभी जो आगे की चीज है कि पूरा डेंचर वगैरह, उसमें जब हम लोग जाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा कि कितनी महंगे दांत है,
1: बिल्कुल,
0: जो हमें फ्री मिले हैं, इसके लिए हम लोग उसकी कदर नहीं कर रहे। ऐसा मुझे बहुत बार लगता है, जिसके लिए मुझे बुरा लगता है।
1: यस,
0: या फिर पूरे शरीर की ही कीमत आप लगा लो, रिपेयरिंग की कीमत लगा लो, तो करोड़ों में जाती है, कई 100 करोड़ों में जाती है।
1: यस,
0: लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि फ्री में मिला हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: उल्टा उसको बर्बाद करने वाली चीजों पे हम लोग खर्चा करते हैं। फिर उसमें वो सुपारी आ गई, पान आ गया, अभी मुंह के बारे में बात कर रहे तो
1: वो सारी
0: चीजें,
1: तंबाकू,
0: स्मोकिंग, और बहुत यंग एज में बहुत गंदी हालत देखी हुई है मैंने
1: दांतों की,
0: ओवरऑल मुंह की, मसूड़ों की, जबड़ों की। मतलब बहुत बार मैंने जो पेशेंट को लाइन बोली है, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, 25-30 साल की उम्र है लेकिन उनका दांत का कंडीशन होता है 60-65 साल की उम्र के बुड्ढों की तरह।
1: अरे अरे,
0: तो उनको भी मैं ये समझा देता हूँ। और ये नॉर्मली हैबिट्स जब होती है तभी होता है।
1: बिल्कुल,
0: और जब ये पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट मांगते हैं तो मैं उनसे एक ही चीज मांगता हूँ कि आप अपनी हैबिट बंद कर दो, मैं बाकी की सारी चीजें रिपेयर करने की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप अपनी हैबिट चालू रखोगे तो कुछ भी आप कर लो, आप पूरा पैसा डाल के आप अपना भी वक्त खर्चा करोगे, मेरा भी करवाओगे, मेरी मेहनत भी लगवाओगे, लेकिन बाद में बर्बादी आप करोगे। तो इसके लिए जो फ्री मिला है उसकी थोड़ी वैल्यू कर लो।

0: ये सजेशन मैं यहाँ दूंगा।
1: इसी बात पर एक गाना सुनते हैं और उसके बाद वो डेंचर वाली बात करते हैं।
0: सही है, तो हम यहाँ पे सुनेंगे, यहाँ पे दाद बोलेंगे कि हम बेवफा हरगिज न थे।
1: वाह, पर हम वफा करना सीखे क्योंकि आप
0: क्योंकि आपने
1: करना सीखे।
0: एग्जैक्टली
1: क्या बात है, सुनते
2: हैं।

0: डॉक्टर साहब, बहुत एक्सट्रीम केसेस की अब हम बात करना चाहते हैं। जो आपने कहा कि इतने महंगे दांत हैं और फ्री में मिले हैं तो हम कदर नहीं करते, इसको जरा तफसील से बताइए कि कितने लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं अपने दांतों को वापस लाने के लिए, जब पूरा डेंचर बदलना पड़ता है।
1: हाँ जी, अभी जैसे हमने बात की कि एक दांत भी अगर आपका निकला है तो उसको इमीडिएटली रिप्लेस करवाना चाहिए, क्योंकि उसका फंक्शन रेस्टोर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
0: बिल्कुल
1: ठीक है। तो वैसे ही ऑप्शंस क्या क्या है उसके, पहले तो ये बताऊंगा मैं कि वहां पे मुंह में दो ही कड़क स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर हम लोग सपोर्ट लेके परमानेंट वाला फिक्स दांत दे सकते हैं। एक तो खुद दांत अपने, या फिर हड्डी जिसमें दांत बैठे हुए, जबड़े की हड्डी। तो दांतों के ऊपर सपोर्ट लेके जो चीज की जाती है उसको बोलते हैं ब्रिज। जैसे बीच में एक दांत नहीं है तो आगे के एक दांत को छोटा किया जाता है, पीछे के एक दांत को छोटा किया जाता है, और तीन दांत तीन
0: लेवल में लाए जाते
1: हैं। एग्जैक्टली, और तीन कैप एक साथ बिठाए जाते हैं, जिस चीज को बोलते हैं ब्रिज, क्योंकि जो बीच वाला है वो ब्रिज है।
0: करेक्ट,
1: दो दांतों के सपोर्ट पे। ये हो गया एक ऑप्शन। अभी उसमें भी अलग अलग टाइप के कैप्स आते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपके दांत कैसे हैं, कौन से तरीके का कैप आपके केस में बेटर रहेगा, या आपके डेंटिस्ट आपको अच्छे से सलाह दे सकते हैं।
0: इसमें दांतों का प्रेशर भी काम करता है।
1: एग्जैक्टली, आपका बाइट फोर्स कितना है, आपके फूड हैबिट्स कैसे हैं, दांतों का अरेंजमेंट कैसा है।
0: यस,
1: क्योंकि जैसे लंबे स्पैन वाले ब्रिज होते हैं, तो अगर आपके अपोजिट साइड के दांत नीचे के जबड़े का कर रहे, तो ऊपर साइड के दांत अगर आपके आड़े टेढ़े हैं तो ब्रिज के ऊपर सीधा फोर्स नहीं पड़ने वाला है, आड़ा टेढ़ा फोर्स पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा मटेरियल ज्यादा सूटेबल रहेगा,
0: yes.
1: वो डिपेंड करता है आपके अरेंजमेंट के ऊपर, क्योंकि वो फोर्स जहां पे पड़ेगा वहां पे अगर टूटते रहेगा तो क्या होता है ना, ये भी एक चीज है कि एक दो बार टूटता है तो पेशेंट खुद ही गिव अप कर देते हैं और नहीं करना है बोल के छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको ये चीज समझनी जरूरी है कि हर बार महंगी चीज ही अच्छी होगी जरूरी नहीं है, और हर बार सस्ती चीज ही आपके केस में काम करेगी वो भी जरूरी नहीं है। तो केस टू केस डिपेंड करता है कि क्या आपके केस में सबसे बेस्ट होगा, वो आपके डेंटिस्ट आपको बेस्ट तरीका बता सकते हैं। अभी दूसरा तरीका जो है रिप्लेसमेंट का, उसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट्स, जहां पे हड्डी में एक इम्प्लांट डाला जाता है। एक स्क्रू जैसी चीज होती है, एक्चुअली उसका डिजाइन स्क्रू जैसा होता है, एक्चुअल में स्क्रू नहीं होता। वो डिजाइन स्क्रू की तरह देने का कारण ये होता है कि उतना ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होता है हड्डी को उसके साथ पकड़ बनाने के लिए। तो इसके लिए वो इम्प्लांट जाता है हड्डी के अंदर, उसके ऊपर एक अटैचमेंट लगती है जिसको अबटमेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर कैप लगाई जाती है। ये सबसे

0: बेस्ट तरीका है आज की तारीख में दांत बिठाने का, क्योंकि इस तरीके में नेचुरली जैसे दांत फंक्शन करता है वैसे ही दांत हम लोग रिस्टोर कर रहे हैं। और अभी टेक्नोलॉजीज इतनी आ चुकी है, ये तो एक इम्प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो पूरे मुंह के इम्प्लांट्स 2 दिन में 3 दिन में हम लोग केसेस खत्म करते हैं। पूरे मुंह के दांत हम लोग इमीडिएट इम्प्लांट करके पेशेंट को 2 दिन में फाइनल दांत दे देते हैं।
1: बहुत जल्दी होने लगा ये,
0: बहुत जल्दी होने लगा है। हाँ, खर्चीली चीजें है। अभी इसका खर्चा अगर मैं बताऊं तो लाखों में जाता है
1: बाकायदा,
0: क्योंकि जो हड्डी में स्क्रू जा रहा है वो बना होता है टाइटेनियम से,
1: और वो महंगी चीज है।
0: टाइटेनियम सोने से भी ज्यादा महंगा आता है, तो वो महंगी चीज है। प्लस उसके टेक्निकल चीजों में अगर मैं जाऊं तो जो कंपनीज उसको बनाती है तो उसके जो मशीन्स होते हैं, मतलब एक बार चालू कर दी मशीन तो बल्क प्रोडक्शन करेगी तभी वो रुका पाओगे आप, नहीं तो 1 या 2 सैंपल पीस बना के आप रोक नहीं सकते, वो हजारों में बनाने पड़ते हैं। ये कंपनी की मजबूरी है क्योंकि मशीन्स वैसे है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको खर्चा ज्यादा करना पड़ता है उसके पीछे। ऑब्वियस सी बात है, वो बाहर भी अपना नफा जोड़ेंगे। तो अगर मैं आपको अंदाजा दूं तो कम से कम 20-25 हजार से लेके 70-80 हजार, 1 लाख रुपए तक का इम्प्लांट होता है एक दांत का।
1: एक दांत का,
0: तो अगर हम लोग पूरे मुंह की बात करें तो कम से कम 4-5 लाख रुपए से लेके 20-25 लाख तक आपका खर्चा जा सकता है, सारे दांत अगर आपको फिक्स में बिठाने हैं। ये हो गए फिक्स दांतों की बात। अभी आते निकालने पहनने वाले दांतों पे, डेंचर्स, या फिर हमने बहुत अपने दादा दादी को वगैरह देखा होगा पहनते हुए, निकालते हुए, वो निकाल के डब्बे में रखते हैं दांत, तो वो चीज आज की तारीख में ज्यादातर आउटडेटेड हो चुकी है। वो चीज वही पुरानी जनरेशन ही पहनना चाहती है जो पहले से पहन रहे हैं, लेकिन वो चीज का ड्रॉबैक बहुत सारा है। एक, जैसे हमने दांतों के ऊपर फोर्स की बात की थी, 120-130 न्यूटन सेंटीमीटर का प्रेशर रहता है, डेंचर में आपको प्रेशर रेस्टोर होता है 5 से 15 का।
1: बहुत कम है,
0: बहुत कम है। वही हम लोग इम्प्लांट के साथ रेस्टोर कर पाते हैं 110 से 115 तक।
1: इक्विवेलेंट है,
0: ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। तो इसके लिए डेंचर पे आप बहुत सारी चीजें नहीं खा पाते हो।
1: पर इम्प्लांट बहुत महंगा होता है,
0: इम्प्लांट बहुत महंगा होता है
1: जी,
0: डेंचर उसके मुकाबले काफी सस्ते होते हैं।
1: तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, आज की इस पूरी बातचीत का जो सबक है वो ये है कि दांत बहुत बेशकीमती हैं, और जैसे कि आपने कहा कि चूंकि मुफ्त में मिले हैं तो लोग उनकी केयर, उनकी कदर नहीं करते।
0: Exactly.
1: तो रोजमर्रा की स्थिति में इन दांतों को बचाकर रखना जरूरी है। अब अगर मैं आपको कहूं लास्ट में एक वन लाइनर दे दीजिए अपने मरीजों को, सुनने वालों को, तो आप वो दांतों की केयर के लिए क्या वन लाइनर देंगे?
0: स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। क्यों? क्योंकि दांत अच्छे हैं तो आप खुल के स्माइल भी करोगे, खुल के स्माइल करोगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू सो मच सर।
1: ये थी जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर जयेश घुगे से यूनुस खान की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: Sí. आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आवाज दी दुनिया दे प्यारे दोस्तो, तुसी सुन रहे हो अपना पसंदीदा प्रोग्राम अपना विरसा अपना सभ्याचार। जी हाँ दोस्तो, अज इस प्रोग्राम दे विच आप जी दा दोस्त निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा ते अज इस प्रोग्राम दी प्रस्तुति दे विच मेरा साथ दे रहे ने आकाशवाणी दे दो सीनियर अनाउंसर्स मैडम ममता अरोड़ा ते सतपाल ब्राड़ साहिब। दोस्तो अज दा प्रोग्राम है एक खास जोड़ी दे नाम, ओ जोड़ी जिन्हां ने पंजाबी ड्यूएट सिंगिंग नूं सिर्फ गाया ही नहीं बल्कि ज्योया महसूस कीता ते लोकां दे दिलां दे विच बसा दिता। जी हां दोस्तो, अज असी गल करांगे पंजाबी म्यूजिक दी आइकॉनिक जोड़ी जगमोहन कौर जी ते के दीप साहिब जी दी। दोस्तो शुरुआत करदे आ उन्हां वल्लों गाया गया एक खूबसूरत गीत बापू वे अडहुनिया। दोस्तो ए सिर्फ गाना नहीं, ए हर पंजाबी कुड़ी दे दिल दी आवाज है। गाने दी सिचुएशन वेखो, एक कुड़ी अपने बापू नाल गल कर रही है। ओ कह रही है हुण मैं वड्डी हो गई हां, हुण मैं अपने फैसले खुद लेना चाहुणी हां। एक बेटी दी आवाज सी, एक घर दी कहानी सी इस गाने विच। जो कह ना सकी जुबान, जो कह ना सकी जुबान ओ गीतां दे विच बयान सी।

0: दोस्तों, ना कोई स्क्रीन सी ना कोई कैमरा, पर उन्हां दे गीतां विच फिल्म चलदी सी। दिल दी स्क्रीन ते यादां दी रील चलदी सी।
1: कड़ा वजदा कड़ोली वजदी, कड़ा वजदा

0: एलो बाशो टैक्सी भी हाजिर है।
1: मैं का कितने कितने ले जाऊंगे दीप जी?
0: दिल्ला मंदिर सिंध में अंदर शहर जलंधर कला कलंदर मुगल काटे राम तलाई हेठ तलाई उत्ते रजाई सब्जी मंडी मोया दी मंडी बिच जमना दे गोते चोते वड्डी जेल कोतवाली थाना गंदा नाला मैका वाला हस्पताल परिवार नियोजन बस।

0: हाय हाय, वापस कदों आओगे सोने हो?
1: एक महीना, दो महीने, तीन महीने, चिट्ठी पत्र, लारा लप्पा, अड्डी टप्पा, एक साल, फिर दो साल, फिर तीन साल, फिर हौली हौली किस आना ते किस जाना, रड़ा रप्पा, शोर शराबा, फिर मुकदमा, नार तरीका, फिर तलाक ते
2: बस करो जी, बस करो, एक ही जगह ला दियो, शुगर गुस्से बच आके ना किते रंडा मेनू बना दियो।
3: दोस्तों, जिथे प्रोफेशनल लाइफ विच सक्सेस आउंदी है, उथे परसनल लाइफ नू बैलेंस करना सब तो वड्डा चैलेंज हुंदा है। ते दोस्तों, इस जोड़ी ने यह भी बाखूबी निभाया। रिस्पैक्ट, अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों उन्हां दे रिश्ते दी फाउंडेशन सी। स्टेज ते कैमिस्ट्री सी, पर रियल लाइफ विच ट्रस्ट सी। उन्हां दी सिंपल सिटी ही उन्हां दी स्ट्रेंथ सी। ना ईगो, ना कॉम्पिटिशन, बस एक दूजे दी इज्जत। दोस्तों, रिश्ता ओ नहीं जो सिर्फ नाम दा होवे। दोस्तों, रिश्ता ओ नहीं हुंदा जो सिर्फ नाम दा होवे। रिश्ता ओ है जो एहसास दा होवे। जिथे लफज घट, जिथे लफज घट पर समझ ज्यादा होवे, पर समझ ज्यादा होवे।
1: शिखर दुपारे चन्ना तो पेगड़ मार दीदा, जांदा सुख दा शरीर।

0: तेनू लक दी इक सुनावा
1: सुना।
0: तेनू दफ्तर हुणे पचावा
1: सच्ची।
0: किसे बुढड़े ड्राइवर ताई किसे बुढड़े ड्राइवर ताई ना बाबा आ कु सुनाई
1: तोबा।
0: तेनू लक दी इक

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी दे विशेष प्रसारण संबंधी सूचना। आकाशवाणी दा समाचार सेवा प्रभाग भारत सरकार दे 12 साल पूरे होण ते मिति 1 जून 2026 तो मिति 21 जून 2026 तक प्रसारित करेगा विशेष प्रोग्राम। ए प्रोग्राम तुसी शाम 7:10 तो 7:45 तक सुन सकोगे। इस विशेष प्रसारण दे चलदिया शाम 7:30 आकाशवाणी जलंधर तो प्रसारित किते जान वाला पंजाबी विच खबरां दा बुलेटिन हुण तुसी सुनिया करोगे शाम 7:00 तो लेके 7:10 तक। इस दे नाल ही तुहानू दस दईए प्रोग्राम शाम सुहानी दा समा मिति 1 जून तो 21 जून तक बदल के रात 7:45 तो 8:15 तक कर दिता गया है। अते NCERT वालों प्रायोजित प्रोग्राम उमंग हुण प्रसारित होया करेगा रात 7:15 तो लेके 9:15 तक। प्रोग्रामा दे समय विच ए सारे बदला मिति 1 जून 2026 तो लेके मिति 21 जून 2026 तक लागू होणगे। सूचना समाप्त हुई।

0: Iran before this Jam Treaty came into effect. Yeah, Shubham, one cannot actually ignore the government scheme, especially directed at the women folk, especially when we talk of the BPL households and the rural folk. Now, PM Ujjwala Yojana is one such scheme which has really revolutionized, if you can say, the healthcare, the upliftment of the healthcare of the rural women. Now, how do you see this PM Ujjwala Yojana actually, benefiting the rural women?
1: That's a very interesting thing that you've asked. And frankly speaking, when PM Ujjwala, which is basically supply of LPG cylinders to the places which were earlier using only firewood, so rural areas, semi-rural areas, those sort of areas. Now, when we get this phenomena, the first thing that happened is that not only did the cylinders reach, but authorities were pleasantly surprised by what is called the incidental benefit, which is that there was a sharp reduction in bronchial problems of women. So basically, in any village household, the big problem was the kitchen would typically be highly smoke-laden. And from there, a clean fuel was doing a substantial change in the health conditions of the people, of the women. Now, this was studies that was done by independent agencies, and frankly, it was something that wasn't even thought of initially as how significantly it will change the needle in terms of the health benefits. So this is surprisingly useful and a surprisingly refreshing add-on of the PM Ujjwala scheme, because Ujjwala did its primary role, which was that it ensured that a steady supply of fuel reached the households. This immediately not only did, I mean, while the health benefits, as I said, came along and caught everybody pleasantly surprised, the basic thing that it was supposed to do was to cut down the time that women spent collecting firewood, getting cow dung, and so on and so forth. In fact, the third benefit that had happened was it released a lot of manure for use in what is called the biofuel changes, which has actually now become a very significant add-on. So there's been a lot of what we should say cascading impact of the Ujjwala benefit. As you would have noticed, that what has happened is that this has also led to a very strong financial security in those households. So together, it has been a very impressive package of reforms that have been delivered, impressive package of benefits that have been delivered.
0: या एब्सोल्युटली शुभ अदिति शुभ मैं अभी बात कर रहे थे किस तरह से ये बीपीएल हाउस होल्डर को खास करके उज्ज्वला योजना ने बेनिफिट पहुंचाया है रूरल वेमेन फोक को, खास करके उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से स्मोक लेडन हमारा किचन हुआ करता था और सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज अगर हम बात करें वो है जल जीवन मिशन का. टैप वाटर ये एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे, खास करके भारत देश में, सीजनल रेन्स एंड ऑल एंड वाटर बोर्न डिजीजेज, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता था. जल जीवन मिशन एक ऐसा एक स्कीम, मतलब ये लेकर आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जहां पर कि हर घर नल योजना की शुरुआत की गई. कैसे देखते हैं आप, खास करके अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ को प्रायोरिटी देने की बात करें तो?
2: ये बहुत एक महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, जिसके तहत सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है एक हाउस होल्ड की महिला को, क्योंकि हम जानते हैं कि इतने साल हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को, लेकिन फिर भी अभी भी इतने सारे हाउस होल्ड्स ऐसे थे रूरल एरियाज में, ये रूरल हाउस होल्ड्स को जोड़ने की स्कीम है ज्यादातर, और इतने सारे हाउस होल्ड्स थे कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते थे, पढ़ते थे. आज तक ऐसी खबरें छप रही थी कि 8-8, 9-9 घंटे तक लोगों को चल के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, या बहुत किलोमीटर्स का सफर तय करके दूर दराज इलाकों में लोगों को जाना पड़ता है. जो हिली टेरेन्स हैं उसमें पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी, जो डेजर्ट एरियाज हैं खासकर जैसलमेर, राजस्थान और गुजरात, कच्छ के साइड में बहुत सारे ऐसे हमें एविडेंस मिलते थे कि जहाँ पानी की समस्या इतने साल बाद भी आजादी के, मतलब ये एक किसी भी देश के लिए कोई अच्छी कन्वीनियंट स्थिति नहीं है, कन्वीनियंट पिक्चर नहीं है कि आप एक बेसिक सुविधा, जैसे आप पावर की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लीजिए, या पानी की बात कर लीजिए, टॉयलेट्स की बात कर लीजिए, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जो आम तौर पर अभी तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी वजह से जो नहीं हो पाई. और आपने सही कहा कि अगर आप स्वास्थ्य लाभ भी देखें इस योजना से, तो बहुत ज्यादा लाभ होता है, और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पेपर्स भी निकाले हैं, जिससे ये भी कहा है कि इससे जल जीवन मिशन की वजह से बीमारियों में बहुत कमी आ रही है. चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स

0: इम्प्रूव हो रहे हैं, महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति इम्प्रूव हो रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट गर्भवती महिला के लिए ये एक बून की तरह आया है, क्योंकि बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीजेस गर्भवती महिला को गंदे पानी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ता था। और जल जीवन मिशन से क्या हुआ है, ना सिर्फ पेयजल घर तक गया है, बल्कि बहुत सारी मतलब प्रोडक्टिव टाइम जो महिला का पानी इकट्ठा करने में जाता था वो अब और चीजों में वो व्यस्त हो सकती है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन सकती है, वो लखपति दीदी योजना का लाभ उठा सकती है, क्योंकि उसके पास अब वक्त है, घर में पानी आ रहा है। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है लेकिन बहुत बड़ा प्रभावी कदम है।
1: जी जी जी अदिति, और इसी क्रम में हम आगे बढ़े। शुभ में सैनिटेशन की अगर बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ये एक फ्लैगशिप मिशन जिसे कहें, और जब भी इसे इम्प्लीमेंट किया गया था उसके पहले शायद पता नहीं इस तरह की योजना कभी सुनने को नहीं मिली थी। सैनिटेशन की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन जिसे ओपन डेफिकेशन एलिमिनेट ऑलमोस्ट कर दिया गया, मास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसहोल्ड एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। शुभ में क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
2: हाँ, ये वाला चीज जो आप देखेंगे
1: जी
2: कि पानी का सप्लाई, स्वच्छ भारत मिशन, इन सभी चीजों से जो बदलाव अभी दिख रहा है वो है काफी सिग्निफिकेंट। आप इसके पहले एक आम बात थी कि बहुत सारी जगहों पे ओपन डिफिकेशन और उससे चलते जितने सारे तरह की बीमारियां, उनका खासकर मॉनसून में फैल जाना, बाकी समय में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें एक आम सरफ चीज था कि भाई होता है, क्या किया जाए। इसमें जो अभी जो नेशनल हेल्थ सर्वे के आप डेटा देखेंगे तो सबसे बड़ी बदलाव आप उस डेटा से देख सकते हैं कि ये एक से कहते हैं आपका एक मेजरमेंट आ गया है कि कितना और कितना प्रभावी ये सारे बदलाव हुए हैं। अभी आप मैं आग्रह करूंगा कि कोई आकाशवाणी के जो लिसनर्स हैं, कभी अगर वो ट्रेन का सफर करे, दूर दराज के रास्ते में चलते हुए एक जो कॉमन साइट था ओपन डेफिकेशन का, वो करीब एकदम वैनिश हो गया। और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है, इसमें टाइम लगा, इसमें करने में शुरुआत में बहुत सारे हिचक आए, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस करने पड़े, लोगों को बहुत सारी हिदायतों के साथ साथ बहुत सारे आग्रह का भी इंटरेस्ट चीजें दिया गया, इधर उधर की जिसे कहते हैं शॉर्टकमिंग्स भी आई, लेकिन इतने साल के बाद अब जाके उनका इफेक्ट लोगों के जिंदगी के ऊपर अभी दिख रहा है। और ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज इसलिए है कि ये एक सॉर्ट ऑफ एक सिविक चेंज आ गया है हमारे देश में, बहुत सारे इलाकों में। अब जिन सारी चीजों की बात करें, जैसे ओपन डेफिकेशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन के साथ उज्ज्वला, या उसके पहले जब जैम ट्रिनिटी, इन सब के चलते लोगों में जो एक नया वार्तालाप का एक सिस्टम आ गया, एक नया जैसे कहते हैं आइडियाज का एक कॉम्बिनेशन बन गया है कि ये सारी चीजें तो जिंदगी में होनी चाहिए, इनका ना होना ही आज आश्चर्य की बात लगता है बहुत काफी जगहों पे। ये जिसे कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, एक बहुत बड़ा चीज है डेमोक्रेसी के लिए, बहुत बड़ा चीज है लोगों में अपना भरोसा बनाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कि हम इससे आगे चल सकते हैं। ये सारी चीजों के लिए हमें डेली का जो लड़ाई है वो जूझना नहीं पड़ेगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये सब हमारे लिए, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और वो उपलब्ध रहेंगी।
1: Absolutely, Shubma. Aditi, talking of social security and safety nets, of course, Shubma also mentioned about, you know, the health aspect. Now, health is one thing which just cannot be ignored, that is one. And of course, the importance of it cannot be overstated. If you look at the Western countries, the more advanced economies, they have their own safety nets, they have their own social healthcare schemes and so on and so forth. In India, if you talk of, you know, maybe let's say 10, 12 years or 15 years back, or even more, probably there was not much to offer by any of the governments, if I may say, over the years, over the decades, in fact, that they could offer something like that to the common man, especially the poor or maybe the lower middle income group, that kind of. Now, with the Ayushman Bharat scheme coming in, you know, it again revolutionized, you know, the kind of safety net which was so very much required for the common man. Now, this, in fact, has turned out to be the world's largest government-funded health insurance scheme, offering up to 5 lakh rupees per family. Now, how important this is, how significant is this?
0: See, this is extremely significant in the sense that it has helped in very deep penetration of cutting-edge health services across the country. Earlier, what was happening is that for even a very small procedure or a small facility visit, people had to come all the way to AIIMS, New Delhi, or in the north part.

0: being able to support themselves, being able to support their families, being able to carry on the business for long length of time, not being drawn into the race for getting a job. Here, there we are talking of plenty of changes, which is not very easy to think of as just, you know, suddenly that we've done it and it's one-time support. It's not a one-time support. It's something which is actually a result of series of interventions, which brings a scheme like Mudra into being a success that it is being envisaged.
1: Yes. Right, Shubh. Diti, abhi Shubh ne self-employment ki baat ki. Stand-up India scheme bhi ek aisi scheme hai, jiske tahat 15,000 प्लस करोड़ लोन अभी तक डिसबर्स किए जा चुके हैं. इस बारे में भी थोड़ा हमें बताएं. और पीएम स्वनिधि योजना जो कि एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, एक फ्लैगशिप स्कीम जिसे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को ये लाभान्वित कर रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे?
2: देखिए, ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल रिफॉर्म है. वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ ही इसका आरंभ किया गया था कोविड-19 के दौरान. जून 2020 में ये शुरू की गई थी. उस वक्त मंशा ये थी कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो बहुत बुरी तरीके से हिट हुए थे, जिनकी वजह से हम और आप कोविड से लड़ पाए थे, क्योंकि वो सब्जी बेच रहे थे, वो वेयर्स बेच रहे थे, तो हम उसको खरीद रहे थे.
1: इवन अगर गिग वर्कर्स की बात करें,
2: बिल्कुल गिग वर्कर्स की भी स्वनिधि में वो भी काफी हद तक कवर होते हैं. तो उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी कि बेसिकली आइडिया था कि वर्किंग कैपिटल जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको दी जा सके, ताकि वो ऐसा ना हो कि कोविड-19 की वजह से बिल्कुल ही त्रस्त हो जाएं. तो तब से इतनी इंपॉर्टेंट बन गई स्कीम और इसका लाभ इतना दिखाई देने लगा फाइनेंशियल सिस्टम में कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिग्निटी मिली, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिला. सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग कैपिटल हाथ में है तो आप 10 तरीके की चीजें कर सकते हैं. तो अब क्या किया गया है, हाल ही में 2025 में यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को रिस्ट्रक्चर भी किया है और लोन देने की जो अवधि है वो 2030 तक बढ़ा दी गई है. और ना सिर्फ ये किया गया है, 3 लेवल्स पर लोन दिया जा रहा है स्वनिधि में स्ट्रीट वेंडर्स को. पहले लेवल पर आप ये 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है, वैसे ही दूसरे लेवल पे 20,000 से 25,000 कर दिया गया है, और फाइनल लेवल जो है वो 50,000 है. और इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उन लोगों को जो टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं. प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण जो इस स्कीम का बिंदु है वो ये है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको कैशबैक इंसेंटिव भी दे रही है ये स्कीम. तो अभी तक अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करीब 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पूरे देश में हैं जो इसमें लाभान्वित हो चुके हैं, और करीब 17,000 करोड़ तक का जो लोन है वो दिया जा चुका है. 122 लाख लोन्स दिए जा चुके हैं करीब 17,000 करोड़ के.
1: राइट आदिति, लेट्स टॉक द वुमेन फोक. लखपति दीदी अभियान, ये लगभग 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी, और 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी है. कुछ बताएं इसके बारे में.
2: जी, ये एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार की. और किसान सम्मान निधि की जो बात हुई उसमें बस छोटी सी एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि जब ये अमाउंट तय हो रहा था तब एक स्टडी करवाई गई थी कि फार्मर्स का कॉस्ट इनपुट क्या है, उनकी कॉस्ट कवर करने का ये कवायद है.
1: जी,
2: जो 6,000 की रकम तय की गई है, ऐसा पाया गया कि अगर ये दे दी जाए तो एटलीस्ट उनका जो इनपुट है वो कवर हो जाएगा. इस वजह से ये 6,000 पे तय हुई थी. पर अब जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं को क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बहुत सारे वक्तव्यों में ये कहा है कि विकसित भारत के 4 स्तंभ होंगे, जिसमें से पहले हम चर्चा कर चुके हैं गरीबों की, उसके बाद हम चर्चा कर चुके किसानों की, तीसरा यूथ, आपने स्टैंड अप इंडिया की बात की, और अब चौथी आप बात कर रहे हैं महिलाओं की. ये 4 स्तंभ हैं. जब तक आप इनको फाइनेंशियली एम्पावर नहीं करते तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि आप विकसित भारत के गोल को अचीव कर पाएं, जिसकी वजह से ये हुआ है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की मूवमेंट इस देश में चल रही है. करीब 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त कार्यरत हैं. उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं जो भाग ले रही हैं, लखपति दीदी योजना उसके तहत ये कोशिश कर रही है कि हर महिला 1 साल में 1,00,000 रुपए अपने बलबूते पर कमा सके. उसमें तरीके तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जैसे द्रोण दीदी का प्रोग्राम भी उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है. कुछ महिलाएं द्रोण दीदी प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग लेकर खेतों में ड्रोन के माध्यम से मतलब पेस्टिसाइड्स छिड़काव कर रही हैं या और बहुत चीजें कर रही हैं. सिमिलरली कुछ लोगों को आप हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं. इस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है. फिशरीज में भी इन्वॉल्व कर रहे हैं महिलाओं को. उनका फाइनेंशियल जो इक्वेशन है, फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है, उसको बढ़ाने की कवायद है.

और एक चीज की वर्ल्ड बैंक की अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी जिसको हम जिनी इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो देशों को मापती है इस माध्यम से कि कितनी इक्वल सोसाइटीज हैं और जो फ्रूट्स ऑफ पावर हैं वो कितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं लोगों में। ये जितना कम होता है इसका वैल्यू उतना एक सोसाइटी को इक्वल माना जाता है। तो वहां मैं पढ़ रही थी कि भारत का जो वैल्यू है जिनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और यूएस का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक की, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट एक इंपॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा

0: मनी इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक की, वो 25.5 है और चाइना का 35.7 है और यूएस का 41.8 है। कहने का मतलब है कि ये जो सरकार ने लैंडस्केप तैयार किया है वेलफेयरिज्म का, इससे ये प्रूव हो रहा है, और ये थर्ड पार्टी ऑडिट है, दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है वर्ल्ड बैंक, ये हम और आप नहीं कह रहे हैं या सरकारें नहीं कह रही हैं यहाँ बैठकर, ये एक थर्ड पार्टी ऑडिट एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी कह रही है कि भारत में अब धीरे धीरे वेलफेयर बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे हैं। और जैसा आपने अपने वक्तव्य में कुछ देर पहले कहा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसका मेजर क्या है, उसका मेजर है कि $3 से कम पर प्रतिदिन कितने लोग इस देश में रहते हैं, उसकी जो संख्या है वो 16.2% 2011-12 में थी और अब घट के 5.3% रह गई है। तो धीरे धीरे एविडेंस क्रिएट हो रही है। इसी वजह से बहुत सारी एजेंसीज जो सरकारी ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज भी अपने एविडेंस बेस्ड पेपर्स में ये कह रही है कि भारत अब उस तरफ बढ़ रहा है जहां उसको विकसित भारत बनने के लिए जो मैकेनिज्म चाहिए थे वो इन प्लेस हैं। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित भारत का मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ानी है हमने अपनी।
1: जी,
0: अभी हम लो मिडिल इनकम कंट्री के कैटेगरी में है, हमें हाई इनकम कंट्री बनना है 2047 तक। वो बनने के लिए चर्चा की है आपने, जिन तबकों की, उनको आपको धीरे धीरे फाइनेंशियली इंक्लूसिव बनाना है, उनको एम्पावर
1: करना है। राइट राइट, थैंक यू सो वेरी मच शुभमा आदिति, बोथ ऑफ यू फॉर हैविंग जॉइंड अस एंड शेयर्ड योर व्यूज ऑन द टॉपिक। थैंक यू सो वेरी मच।
0: थैंक यू।
2: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं और उनका जमीनी असर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक सुभमोय भट्टाचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या WhatsApp के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR@nsgtalks@gmail.com और WhatsApp नंबर है 9289094044।
3: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government, key welfare schemes and their grassroots impact. Participants were Shubhamoy Bhattacharji, economic analyst, and Aditi Tandon, senior journalist. Moderator was Nishit Kumar. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at AIRNSDtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

मिडवेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। हुणे तुसी साडे दिल्ली केंद्र तो विशेष प्रोग्राम सुन रहे सी। अपने श्रोतियां नूं असीं एक बार फिर याद करवा दईए कि अज यानी 1 जून 2026 तो लैके 21 जून 2026 तक ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 7:10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7:45 ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ 7:30 ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 7 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ।

0: जी वाकई जिंदगी दे विच बहुत काम ने, बहुत प्रोजेक्ट ने, बहुत कुछ है करन वाला। जे मन च ठान लईए तां इन्हां दी पूर्ति भी हो जांदी है। ते साडे अगले स्रोतां ने जिन्हां ने कई महीनियां तों ठानिया होया सी प्रोग्राम दे विच हिस्सा लैणा, ते अज उह शामिल हो गए ने अपना।
1: हेलो,
0: हैलो,
1: सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। रेडियो सेट दी आवाज घटा दो।
1: घटा दा जी, दूर हो गए जी।
0: दूर हो गए नहीं कहना भाई।
1: हाँ जी, घटा दा जी फोन।
0: आवाज
1: बंद कर दे।
0: आवाज घटा दी।
1: हाँ जी, घटा दी जी।
0: हाँ जी, हाँ जी। ता नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी भाई जी।
1: हाँ जी, सत श्री अकाल जी।
0: हुन जान पहचान करवा दो।
1: दर्शन सिंह बेदी जी, उल्लू मिट्टी तो जी।
0: किन्ने महीने बाद, किन्ने सालां बाद तुसी प्रोग्राम
1: च? ओ लागे जी, 2 महीने बाद लगे जी मैडम जी।
0: 2 महीने बाद को इन्ना?
1: हां जी, अज लोड करा, ब्लड लोड करा के लंदे जी हुनी।
0: अच्छा,
1: हां जी,
0: ठीक है ठीक।
1: रोटी नहीं खाद्दी मैं तो, हुन लबखा रोटी फेर ही खाऊंगा जी।
0: हां जी जी, ठीक है। अच्छा, हां जी, केड़ा सुनोगे?
1: कुलदीप मालक दा जी, मेरे का साथी है जो ना ले जी।
0: हां जी, ना क्यों?
1: हां, बचित्र मिस्त्री ते हरजन ढिल्लो जी।
0: जी जी, बस हुनो खुश है छोटे दोस्त।
1: हां, खबरे खुश है, वधिया।
0: अगली बार फोन मिलानगे?
1: हां जी, बुलावांगे जी।
0: थोड़े दोस्त मिलानगे तुसी 15 दिन बाद?
1: नहीं नहीं, मैं तो बुलावांगा नहीं जी।
0: ठीक है जी,
1: ठीक है जी।
0: पहुंच गए जी कुलदीप मानक दी आवाज थोड़े तक, शुक्रिया।
1: हां जी, फुल्लो मिट्टी तो भजा दो
0: जी।

0: प्रोग्राम श्याम सुहानी।
1: हुने तुसी सुन रहे सी फरमाइशी गीत संगीत दा प्रोग्राम शाम सुहानी FM बैंड 101.1 MHz ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR राही तुसी जुड़े हुए हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारणा नाल। शाम दे 8:15 ते 40 सेकंड हो चुके ने। हुन पेश है NCERT CIET द्वारा तैयार किया गया विशेष सिक्ख्या दा एक प्रोग्राम उमंग। अज तुसी इस प्रोग्राम दी 1296वीं किश्त सुन रहे हो।

0: पतंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। साथ ही साथ नए महीने जून की आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: मौसम चाहे जैसा हो, मन में उम्मीद की धूप हमेशा खिली रहनी चाहिए। बहुत खूबसूरत विचार है। आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद।
3: और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कोटकुटिया नायक, पद्मलोचन मोहंती, अभिराम साहू, सत्यजीत नायक और साई प्रसाद नायक जी का।
2: रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी ने लिखा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं जी? आशा करते हैं आप सकुशल होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र भेज रहे हैं। काम की कुछ व्यस्तताओं के कारण आपके उमंग कार्यक्रम में पत्र नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपका उमंग कार्यक्रम सुन रहे थे। उमंग कार्यक्रम में इन दिनों राग रस बरसे कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद इस कार्यक्रम को उमंग कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपने संगीत प्रेमियों की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जेल रोड कानपुर से फातिमा वली बेलदार, सरफुद्दीन वली बेलदार, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम बेलदार जी का।
2: खेरागढ़ राजलालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए।
3: और अब आ रही है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ है?
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका का शीत मरुस्थल।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में सकुरा कहते हैं।
3: और अब हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है?
2: ट्यूलिप फूल मूल रूप से कजाकिस्तान का है। यहाँ से ये तुर्की पहुँचा और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया।
3: और फिर हमने आपसे पूछा था श्रोता, और रजनीगंधा फूल रात में ही अधिक खुशबू क्यों देता है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। प्रकृति ने रजनीगंधा फूलों को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए बनाया है। रात को इस फूल के अंदर का सुगंधित तेल बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण रात्रि बेला के कीट पतंगे इस फूल की ओर आकृष्ट होते हैं।
3: हमारा अंतिम प्रश्न था, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
2: इसका उत्तर है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का क्या नाम था?

0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आज का हमारा पहला कार्यक्रम है श्रोता संवाद। चर्चा का विषय है समावेशी शिक्षा।
0: ये कार्यक्रम उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण है, जिसे हम CIET NCERT और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जाने वाली डिजिटल व अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हैं। आज की चर्चा की विषय विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। श्रोता संवाद।
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने हमारा विशेष मासिक रेडियो संस्करण श्रोता संवाद प्रसारित होता है, जिसमें हम जानकारी देते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और CIET NCERT द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही विभिन्न पहलों पर। इस क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर भारती कौशिक। आप CIET के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्ष हैं। तो प्रोफेसर कौशिक, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: हमारे श्रोता ये जानने के लिए हमेशा बहुत उत्सुक रहते हैं कि श्रोता संवाद में हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं?
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर आपको और मुझको छूता तो है, हम देखते तो हैं
1: जी,
2: लेकिन कहीं ना कहीं हम झिझक जाते हैं इस पर बातचीत करने में
1: जी।
2: आज हम बातचीत करेंगे समावेशी कक्षाओं की, समावेशी शिक्षा की।
1: क्या बात है। तो मेरा पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से ये है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम समता मूलक शिक्षा भी कह सकते हैं?
2: इसको हम समता मूलक शिक्षा तो शायद नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को सम दृष्टि से देखना
1: जी,
2: तभी तो वो समावेशी शिक्षा है, सबको साथ लेकर के चलना। लेकिन जहां हम बात करते हैं समता मूलक, मतलब हर एक की विशिष्टता को, हर एक की आवश्यकता को पहचान देना, हर एक की आवश्यकता को समझना और उसके अनुरूप उसकी पूर्ति करना
1: जी।
2: अब ये विद्यालयों में, हमारे कक्षा कक्ष में कैसे हो सकती है, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं
1: जी।
2: आप ये समझिए कि समावेशी कक्षा के या समावेशी शिक्षा के प्रावधानों में आता है कि सबको समान तरह की पुस्तकें देना, सबको समान तरह का खाना देना मिड डे मील के अंतर्गत, या सबको समान तरह की आप यूनिफॉर्म देते हैं, ठीक है
1: जी।
2: अब अगर कोई विद्यार्थी मेरी कक्षा में ऐसा है जो देख नहीं सकता या जिसको देखने में दिक्कत है, तो क्या होगा? लेकिन मैं तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत काम कर रही हूँ, तो मुझे तो उसको मुद्रित या प्रकाशित या छपी हुई किताबें ही देनी है
1: जी।
2: लेकिन वो विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा, उसका क्या? उसके लिए तो वो किताबें किसी काम की नहीं है। यहाँ पर मुझे क्या करना है? यहाँ मुझे समतामूलक शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं उनके लिए ऐसी किताबें दूं जो या तो वो सुन ले, यानी ध्वनि के रूप में हो किताबें, रिकॉर्डेड हो
1: जी,
2: या मैं उन्हें ऐसी किताबें दूं जो ब्रेल में हो, जिनको वो छू करके पढ़ सकें, या एक तीसरा स्वरूप हो सकता है कि मैं उन्हें डेजी में भी किताबें दूं, जो भी ध्वनि आधारित किताबें होती
1: जी।
2: समतामूलक शिक्षा में हम क्या करते हैं? हम प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम तब उसको पूर्ति करते हैं। और समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं? सबको सम दृष्टि, एक समान दृष्टि से देखते हैं। यानी अगर हम एक को अगर हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो पूरी कक्षा को हम मुद्रित किताबें दे रहे हैं, तो वहां व्यक्तिगत आवश्यकताओं का उतना ज्यादा ध्यान हम नहीं दे पाते हैं
1: जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमें बताया कि समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा में क्या अंतर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके इतिहास की। प्रोफेसर भारती, हमें अब ये बताएं कि भारत में समावेशी शिक्षा की शुरुआत कब हुई?
2: सबसे पहला जिक्र विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा का आता है हमारे कोठारी कमीशन में, जो 1964 का जो शिक्षा आयोग है, जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं
1: जी।
2: इस कमीशन में बातचीत तो की गई थी कि हमें दिव्यांगजन, विकलांगजनों को हमें शिक्षा देनी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी
1: जी।
2: क्या इन्हें सामान्य विद्यालयों में, मुख्य धारा विद्यालयों में बिठा करके पढ़ाना है, या इनके लिए अलग से कुछ हमें एक विद्यालय खोलने होंगे। लेकिन हाँ, जिक्र जरूर किया गया था। तो शुरुआत हमने किया कि ठीक है, इनके लिए हम कुछ अलग से विद्यालय बनाते हैं, वहां हम इनको पढ़ाएंगे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये विद्यार्थी

0: टीबी, अंततः हिस्सा तो हमारे ही समाज का बनेंगे। तो एक पहल छोटी सी ये की गई कि इन विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों से निकाल करके कुछ समय के लिए मुख्यधारा विद्यालयों में लाया गया, ताकि दोनों तरह के विद्यालयों के बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और घुल मिल सकें और एक दूसरे को अजूबा न समझें। विशेष विद्यालयों में पाठ्यचर्या भी विशेष थी, शिक्षक भी विशेष थे और बच्चे भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले थे। तो जब ये हम मुख्य धारा में इनको कुछ समय के लिए लेके आए तो ये हमारा एक प्रयोग कुछ आंशिक रूप से सफल हुआ
1: जी।
0: उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, कुछ विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को हमने विद्यालय से पूर्व उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और फिर उन्हें मुख्य धारा विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से समावेश करना उनका शुरू किया। इसमें भी कुछ सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली, लेकिन सफलताओं से सीख करके आगे बढ़े और आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हम कहते हैं कि हर बच्चे को मुख्य धारा विद्यालय में दाखिला दे। इसीलिए हम जीरो रिजेक्शन पॉलिसी अपनाते हैं कि एडमिशन में हमें सभी को दाखिला देना ही है। इसीलिए आज हमारा हर एक विद्यालय समावेशी विद्यालय है।
1: जी प्रोफेसर भारती, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में पढ़ाने की बात की है। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश की शिक्षा के पूरे परिदृश्य को बदल दिया है।
0: बिल्कुल।
1: आज हम विशेष रूप से आपसे ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत क्या क्या है।
0: हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारे शिक्षा के परिदृश्य को बहुत अच्छी तरह से परिवर्तित किया
1: जी,
0: ठीक है। इसने मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में तो बहुत परिवर्तन किए ही हैं, साथ ही साथ जो समावेशी शिक्षा की हमारी परिकल्पना है
1: जी,
0: उसमें भी बहुत बदलाव किए हैं। जैसे अभी तक हम समझते थे कि समावेशी शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजन या विकलांग शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई है या उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है जो अलाभान्वित वर्गों या क्षेत्रों से आते हैं
1: जी।
0: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने हमारी इस अवधारणा को और व्यापक और विस्तृत स्वरूप दिया है
1: जी।
0: इसने सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूहों की पहचान की है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो इसमें 5 उपसमूह आते हैं
1: जी।
0: सबसे पहला उपसमूह इसमें लिंग के आधार पर है, जिसमें हम जेंडर आधारित आवश्यकताओं को पहचानते हैं और उनकी पूर्ति विद्यालयों में कैसे की जाए इस पर सोच विचार करते हैं
1: जी।
0: दूसरा जो हमारा उपसमूह है वो ऐसा उपसमूह है जो विषम भौगोलिक परिस्थितियों से आता है या वहां से संबंधित रखता है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आता है, मरुभूमि से आता है या ऐसी जगहों से आता है जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। विद्यार्थियों को अपने विद्यालयों तक पहुंचने में अतिरिक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है
1: जी।
0: तो वहां पर विद्यालय कैसे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दूसरा उपसमूह है
1: जी।
0: तीसरा उपसमूह हमारा सांस्कृतिक परिवेश को लेकर के है
1: जी।
0: सांस्कृतिक परिवेश कैसे, इसमें हमारे ऐसे उपसमूह में लोग आते हैं जो जनजातीय क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्रों से हैं या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित हैं
1: जी।
0: इन उपसमूहों के छात्रों को भी विशेष आवश्यकताएं हैं उनकी पाठ्यचर्या से संबंधित, उनके दिनों दिन की आवश्यकताओं और रहन सहन से संबंधित, जिनका पाठ्यचर्या से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, तो इन पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक चौथा उपसमूह है जो है हमारा आर्थिक रूप से कमजोर समूह, हमें दोनों ही जगहों पे मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता है और शहरी क्षेत्रों में भी मिलता है, तो इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी है
1: जी।
0: पांचवा उपसमूह इसमें आता है जो है विकलांगताओं का या विशेष आवश्यकताओं का, जिनको हम पहले से भी पहचानते हैं
1: जी।
0: इसमें NEP 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देती है और इस 2016 के अधिनियम में 21 तरह की विकलांगताओं या दिव्यांगताओं को पहचाना जाता है। तो हम इन पूरी 21 तरह की दिव्यांगताओं के सकारात्मक शैक्षिक समावेशन पे हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
1: जी।
0: इसके अलावा राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: पहली बार एक सरकारी दस्तावेज में भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा का एक ऑप्शन

0: कारिक दर्जा दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी हमारे शिक्षण अधिगम सामग्री है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या राजकीय स्तर पर हो, दोनों ही स्तरों पर यह सामग्री सांकेतिक भाषा में भी उपलब्ध कराई जाए। तो ये बहुत दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हमारी दृष्टि को बहुत व्यापक किया है।
1: जी, आपने अभी सांकेतिक भाषा की बात की, तो हमारे श्रोता जरूर ये जानना चाहेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है और समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है।
0: सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा जहां आप बोल करके नहीं बातचीत करते हैं
1: जी,
0: एक ऐसी भाषा जहां आप देख करके हाव भावों से, संकेतों से पहचानते
1: जी।
0: हैं। जैसे आपको प्यास लगी है लेकिन आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत शोर शराबा हो रहा है, आप चाहे जितना मर्जी चिल्ला करके बोले क्या होगा, कोई आपकी बात नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आपने पानी पीने का इशारा किया
1: जी,
0: तो जो देख रहा है वो समझ जाएगा ना कि भाई आपको पानी पीना है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तो बात हुई एक विशेष स्थिति की
1: जी।
0: आप सोचिए, आपके हमारे बीच में ऐसे लोग भी तो हैं जिनको सुनाई कम देता है
1: जी,
0: या जिनको बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, और ये स्थिति शायद उनकी जन्म से है
1: जी।
0: अच्छा, अब ये लोग क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सुनाई नहीं देता तो वो बात नहीं करना चाहते, अपने विचार नहीं रखना चाहते, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो उनके लिए जो भाषा है वो है संकेतों की भाषा
1: जी।
0: अब ये संकेत हर जगह के अलग हो सकते हैं। भारत में अगर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो है भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी।
0: अगर आप अमेरिका में जाकर के कुछ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो अमेरिकन सांकेतिक भाषा हो जाती है
1: जी।
0: दोनों भाषाओं में अंतर है, और ये अंतर उस तरीके से है जिस तरीके से आप अपने हाथों का, अपनी उंगलियों का या अपने हाव भावों का इस्तेमाल करते हैं। तो हर देश की अपनी एक सांकेतिक भाषा है, और आपको यहाँ ये जानकर आश्चर्य होगा, जैसे संज्ञा शब्द होते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, मौखिक भाषा में, बिल्कुल उसी तरह से, उदाहरण के लिए लेते हैं गणपति का संकेत
1: जी।
0: गणपति का संकेत मंगलवार को दर्शाता है महाराष्ट्र में
1: जी,
0: ठीक है, लेकिन मंगलवार को दर्शाएगा हनुमान जी की गदा का संकेत कहां? उत्तरी भारत में।
1: बिल्कुल।
0: तो ये संकेत भी हमारे अलग अलग जगह पे अलग अलग आते हैं
1: जी।
0: तो इसीलिए भारतीय सांकेतिक भाषा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी उतनी ही विविधता है जितनी की किसी और मौखिक भाषा में है
1: जी। ये तो हुई हमारी सांकेतिक भाषा के बारे में जानकारी और समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी। तो अब हमारे श्रोता विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारी यानी CIET NCERT द्वारा क्या क्या पहलें की गई हैं।
0: जी देखो, सांकेतिक भाषा में भी हम बहुत काम कर रहे हैं
1: जी।
0: जैसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अधिगम सामग्री बनेगी, तो हमारी जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं उनको हम सांकेतिक भाषा के वीडियोज में हम परिवर्तित कर रहे हैं
1: जी।
0: लेकिन इन वीडियोज में ऑडियो भी है
1: जी,
0: और इन वीडियोज में सांकेतिक भाषा तो है ही है, साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तक का पेज भी है
1: जी,
0: ताकि कोई भी छात्र, चाहे उसे सांकेतिक भाषा आती हो या नहीं आती हो, अपने साथी के साथ बैठ करके वो वीडियो देख सके। इसके अलावा CIT NCERT सभी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप भी बना रही है, जो बहुत सरलता से CIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है
1: जी।
0: इसके अलावा समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर रोज दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक हमारा एक विशेष लाइव सत्र हर DTH चैनल पर प्रसारित होता है। इस लाइव सत्र में हम क्या करते हैं? इस लाइव सत्र में हम एक कक्षा, एक विषय, एक पाठ्य पुस्तक और एक पाठ लेकर के हम विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, इस पाठ की सहायता से आप ये बताइए कि आप कैसे इस पाठ को समावेशी कक्षाओं में सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए
1: जी
0: आप पढ़ा सकते हैं। और जब आप आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो समावेशी कक्षा है, लेकिन सिद्धांत आपको समतामूलक अपनाना है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता को आपको ध्यान में रखना है। तो एक हमारी ये जाती है सीरीज
1: जी।
0: इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने विद्यालयों को किस तरह से अवरोध मुक्त बना सकते हैं
1: जी,
0: उसके लिए हमारे पास है प्रिया सुगम्यता योद्धा। अब ये प्रिया सुगम्यता योद्धा क्या है? ये एक छोटी सी कॉमिक बुक है जो बहुत सरलता से समझाती है कि सुगम्यता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप सीढ़ियां हटा करके रैंप बना लें,

0: जी, सुगम्यता का मतलब यह भी है कि आपकी जो कक्षा है उसका दरवाजा थोड़ा सा बड़ा हो,
1: जी
0: आपका जो सभागार है उसके मंच तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के साथ रैंप हो,
1: रैंप होना
0: व्हीलचेयर
1: चाहिए
0: आसानी से पहुंच जाए,
1: जी।
0: आपके विद्यालय में कौन सी कक्षा कहाँ है, कौन सी प्रयोगशाला कहाँ है उसका एक मानचित्र भी कहीं उपलब्ध हो,
1: जी
0: आपके विद्यालय में टेक्टाइल पाथ हो। टेक्टाइल पाथ क्या, आपने मेट्रो में सफर तो किया ही होगा,
1: जी जी
0: जब आप मेट्रो स्टेशन पर होते हैं तो आपने देखा होगा वो पीली टाइलें।
1: बिल्कुल
0: पीली टाइलें कैसी हैं, उनकी विशेषता यह है कि आप अपने जूते पहने हुए भी उनको महसूस कर सकते हैं,
1: जी
0: उनके उभारों को महसूस कर
1: बिल्कुल
0: सकते हैं, मतलब वो स्पर्शनीय टाइल हैं।
1: जी
0: ये स्पर्शनीय टाइल बताती हैं कि कहाँ रास्ता है, कहाँ इकट्ठा होना है हमें।
1: जी
0: तो उस तरह की टाइलें हमारे विद्यालयों की संरचना को भी बहुत सुगम्य बनाती हैं।
1: जी
0: इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल हमारी सीआईटी एनसीईआरटी की है, वो है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में पहचानी गई सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं को विद्यालयी स्तर पर पहचानने के लिए एक जांच सूची बनाना,
1: जी
0: जिसको हम कहते हैं प्रशस्त। प्रशस्त हिंदुस्तान की पहली स्टैटिस्टिकली स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत जांच सूची है,
1: जी
0: जो 21 तरह की सभी दिव्यांगताओं को शिक्षकों, विशेष शिक्षकों की मदद से पहचानती है, और इसके लिए शिक्षकों का दिव्यांगताओं के बारे में विशेषज्ञ होना भी जरूरी नहीं है।
1: जी
0: तो ये भी एक हमारी पहल है।
1: जी प्रोफेसर भारती, अभी आपने ये जानकारी दी कि एनसीईआरटी की बुक्स ऑडियो बुक्स के रूप में उपलब्ध हैं, तो ये किताबें हमें कहाँ से मिल सकती हैं?
0: ये किताबें आपको बहुत सरलता से सीआईईटी के वेब पेज से मिल
1: जी
0: सकती हैं। आप सीआईटी के वेब पेज पे जाइए, वहां पे ऑडियो बुक्स लिखिए तो आपको वो मिल जाएंगी।
1: जी
0: और एक और सरल उपाय है,
1: जी
0: आजकल तो गूगल हम सबकी मदद के लिए है ही है,
1: बिल्कुल
0: गूगल
1: बिल्कुल
0: पर जाइए, लिखिए ऑडियो बुक सीआईटी एनसीईआरटी, आपको
1: जी
0: सीधा वहां उसी पेज पे ले जाएगा
1: जी
0: और आप वहां से ले सकते हैं।
1: जी
0: एक चीज और भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किताबों के लिए आपको कुछ शुल्क देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है, और सीआईटी वेब पेज के साथ साथ आपको ये दीक्षा पर भी आराम से मिल सकती हैं।
1: जी
0: और यह किताबें आपको एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगी। तो सरलता से आप हमारी ऑडियो बुक्स को सीआईटी की वेबसाइट से,
1: जी
0: एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब से, और
1: जी
0: साथ ही साथ दीक्षा से बिल्कुल निशुल्क बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में आदिवासी समूहों और समाज के अन्य पिछड़े समूहों को भी शामिल करने की दिशा में एनसीईआरटी की क्या पहल है?
0: बिल्कुल, आदिवासी जाति या अन्य पिछड़े समूहों को शिक्षा से जोड़ने के लिए एनसीईआरटी की पहलों में सबसे मुख्य जो है वो यह है कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं,
1: जी
0: अगर आप ध्यान से देखें तो वो पाठ्य पुस्तकें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
1: जी
0: उनकी कहानियां, उनके पाठों की विषय वस्तु जनजाति समूहों, हमारे आदिवासी समूहों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवेश को भी दर्शाती हैं,
1: जी
0: जिससे ये पाठ्य पुस्तकें हर बच्चे को अपनी सी लगती हैं, उससे उनमें कोई अलगाव की भावना विकसित नहीं होती है।
1: जी
0: तो सबसे बड़ी बात तो यही है, और जब आप पाठ्य पुस्तकों से जुड़ते हैं तो फिर आप अपने विद्यालयों से भी जुड़ते हैं।
1: जी
0: ये पहल हमारी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन अंत यहाँ पर नहीं है।
1: जी बिल्कुल। तो अब आज का अंतिम प्रश्न, ये भी प्रश्न मेरा दिव्यांगों से ही जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कुछ विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
0: दिव्यांगों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, जैसा हमने बीच में भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तो बहुत सारे प्रावधानों की बात
1: जी
0: की है, उसके दो प्रावधानों पर हमने चर्चा की कि सामाजिक आर्थिक रूप से अलाभान्वित समूह कौन से
1: जी
0: हैं, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, और भारतीय सांकेतिक भाषा
1: जी
0: की। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक बच्चे की भागीदारी और उसको अपनापन या जुड़ाव महसूस हो, इस पर बहुत ज्यादा काम करना जरूरी है। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी कहती है कि व्यक्तिगत सहयोग और समर्थन दिया जाए प्रत्येक बच्चे को, तभी हम समतामूलक शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षाओं या शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरी चीज राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आपको तकनीक
1: जी
0: और सहायक उपकरणों का इस्तेमाल

0: इस्तेमाल करना बहुत जरूरी
1: जी.
0: है. इसका अर्थ यह भी है बहुत सरल से शब्दों में कि आप दीक्षा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आप ध्वनि पुस्तकों का इस्तेमाल कीजिए. साथ ही साथ अगर कोई बच्चा आकर के शिक्षक को कहता है कि जी मुझे आज की कक्षा रिकॉर्ड करनी है क्योंकि मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाता हूँ या ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता हूँ, तो शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भी समावेशी कक्षा प्रणाली का ही एक भाग है और सहायक उपकरणों का प्रयोग है. एक और चीज भी है इसी कड़ी में जुड़ता है, शिक्षकों का संवेदीकरण और उनकी तैयारी. मतलब शिक्षकों को आपको सेंसिटाइज करना भी जरूरी है विशेष आवश्यकताओं के प्रति, ताकि वो अपनी कक्षाओं को समतामूलक और समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके.
1: जी,
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा

0: समावेशी कक्षाओं में परिवर्तित कर सके
1: जी।
0: यह काम लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा शिक्षक और विद्यालय नहीं कर पाएगा, इस काम के लिए आपको परिवार और समुदाय का सहयोग भी लेना होगा
1: जी।
0: जब परिवार और समुदाय शिक्षा व्यवस्था प्रणाली से जुड़ते हैं तभी तो विद्यार्थियों का समग्र विकास हो पाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम एक साथ शुरू कर रहे हैं
1: जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर भारती इस उपयोगी जानकारी के लिए। इस आशा के साथ कि देश की शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा का भविष्य दिन प्रतिदिन उज्ज्वल होता जाएगा, हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहिए, ये आपके और हमारे आसपास ही हैं। कई बार हम इन्हें देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। याद रखिए, बूंद बूंद से ही सागर भरता है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें इस कार्यक्रम पर आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

0: तो हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए मुझे यानी अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: हुणे तुसी सुन रहे सी NCERT ते CIET द्वारा तैयार करवाया गया ते स्पॉन्सर किया गया विशेष सिक्ख्या दा एक प्रोग्राम उमंग। अज तुसी इस प्रोग्राम दी 1296वीं किश्त सुन रहे सी। FM बैंड 101.1 MHz ते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR राही तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। इस वेले शाम दे 8:44 ते 15 सेकेंट हो चुके ने। हुण तो थोड़ी देर बाद यानी के शाम दे ठीक 8:45 ते तुसी सुन सकोगे हिंदी च खबरां दा बुलेटिन समाचार संध्या। उस तो तुरंत बाद रात 9 बजे अंग्रेजी विच खबरां दा बुलेटिन रिले किता जाएगा। चंद पल करदे हां इंतजार।

0: वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमा के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: Of our shared future.
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग

0: को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
1: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं। उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
0: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
2: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
4: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए की इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
2: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने

0: रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DR पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481, 011-237-1717 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
3: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Mai Aung Lian hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense.

0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
1: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
2: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

वो अभिनेत्री जिसने कई दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, जिसने एक काली अंधेरी रात में चमकते चांद को देखकर ये बात कही थी।

का असली नाम था रशीद फातिमा। पैदा हुई 1 जून 1929 को कोलकाता में। नरगिस दत्त की माँ थी जद्दनबाई, जो उस जमाने की बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इसके अलावा वो नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के तौर पर बहुत ही मशहूर थी। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार थी जद्दनबाई। हमेशा वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी फातिमा रशीद अभिनय की दुनिया में जाए, लेकिन नरगिस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको बताते हैं कि सन 1935 में, जब फातिमा रशीद सिर्फ 6 की थी, जद्दनबाई ने उन्हें अभिनय का मौका दिया। फिल्म थी तलाश-ए-हक। बतौर बाल कलाकार नरगिस के अभिनय की पारी

जैसे कि हमने आपको बताया, नरगिस का अभिनय का कोई इरादा नहीं था, वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन माँ ने जिद पकड़ रखी थी कि बेटी बनेगी तो केवल अभिनेत्री। एक दिन जद्दन बाई ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान के पास। चूंकि नरगिस का मन नहीं था एक्टिंग करने का, इसलिए उन्होंने बड़े बेमन से स्क्रीन टेस्ट दिया, बस यूं ही अपने डायलॉग्स बोल दिए। ये सोचकर यूं ही बोल दिए कि महबूब खान उन्हें फेल कर देंगे और वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगी। लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका चुन लिया। ये फिल्म सन 1943 में रिलीज हुई। इसके बाद सन 1945 में महबूब खान ने फिल्म हुमायूं में काम करने का मौका दिया नरगिस को। इसके 4 बरस बाद नरगिस का करियर चमक उठा। सन 1949 नरगिस की 2 फिल्में आईं। एक थी राज कपूर की फिल्म

जैसा कि हमने कहा, सन 1949 में नरगिस का करियर चमक उठा। बरसात के अलावा इस साल आई दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म थी अंदाज।

अंदाज में राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ नरगिस का प्रेम त्रिकोण था। नरगिस अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही।

जिंदगी की राहों में कामयाबी और नाकामी जैसे बारी बारी से आती रहती हैं। सन 1949 में चमका नरगिस का तारा सन 1950 के बाद अचानक धूमिल पड़ने लग गया। एक के बाद

जिंदगी की राहों में कामयाबी और नाकामी जैसे बारी बारी से आती रहती हैं। सन 1949 में चमका नरगिस का तारा सन 1950 के बाद अचानक धूमिल पड़ने लग गया। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में नाकाम होती रहीं। इन फिल्मों में खास थीं शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शिकस्त, पापी और धुन। सन 1955 का जैसे नरगिस के करियर को इंतजार था, राज कपूर के साथ उनकी फिल्म आई श्री 400।

श्री 420 बेहद कामयाब रही। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बहुत पसंद की गई और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में फिल्में एक साथ की। यहाँ आपको बता दें कि राज कपूर और नरगिस ने सबसे पहले सन 1948 में फिल्म वर्षा में काम किया था। इसके बाद बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यार और फिर आई आवारा।

आवारा के बाद राज कपूर और नरगिस की जो फिल्में आईं, उनके नाम भी आपको बता दें, अनहोनी, आशियाना और उसके बाद आ

आह के बाद धुन, पापी और जागते रहो राज कपूर और नरगिस की फिल्में हैं। इसके अलावा एक और फिल्म जो राज कपूर ने प्रोड्यूस नहीं की, सन 1956 में आई चोरी चोरी राज कपूर और नरगिस के अभिनय वाली आखिरी

0: प्यारा प्यारा।
1: राज कपूर की फिल्म जागते रहो में नरगिस ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई और इस फिल्म के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना नरगिस पर फिल्माया गया।

नरगिस की अभिनय यात्रा में हम आ पहुंचे थे सन 1956 तक। अब चलते हैं आगे, साल 1958। महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया।

महबूब खान और नरगिस का नाता पुराना रहा है और आज नरगिस की अभिनय यात्रा में हमने आपको बताया है कि किस तरह से बहुत कम उम्र में महबूब खान ने नरगिस से अपनी फिल्मों में काम करवाया था। जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया की तैयारी महबूब खान ने की तो जाहिर है नायिका नरगिस ही होनी थी, लेकिन नरगिस के जीवन में ये फिल्म अभिनय के अलावा दूसरे कारण से बड़ी महत्वपूर्ण बनी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग बिली मोरा में चल रही थी। दृश्य था

आग से नरगिस को बचाने का। नरगिस आग में घिर गई थी। उनकी बेटी की भूमिका निभा रहे सुनील दत्त ने आग में कूदकर नरगिस की जान बचाई। वो सुनील दत्त से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया। 11 मार्च 1958 नरगिस और सुनील दत्त ने शादी

दिलचस्प बात यह है कि बलराज दत्त जब रेडियो में बतौर अनाउंसर काम करते थे तो उन्होंने अपने जमाने की नामी अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू किया था। नरगिस को इंटरव्यू करने का इस नौजवान का अंदाज बड़ा पसंद आया था। बलराज दत्त फिल्मों में आए सुनील दत्त के नाम से। सुनील दत्त और नरगिस एक साथ पर्दे पर ज्यादा नजर नहीं आए। सन 1964 में आई फिल्म यादें जरूर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने ऑन स्क्रीन अपनी मौजूदगी दिखाई। शादी के बाद सुनील दत्त और नरगिस के जीवन में तीन बच्चों की किलकारियां गूंजी, संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को इस फिल्म के कुछ दृश्यों में 110 बरस के बूढ़े का किरदार निभाना था। पंडरी सुकर ने उनका मेकअप कर लिया था और वो एक बूढ़े बाबा के भेष में सेट पर मौजूद थे। नरगिस सुनील दत्त से मिलने आई, सबसे पूछती रहीं दत्त साहब कहां हैं। वहीं मौजूद एक बूढ़े बाबा ने कहा, वो तो सेट पर आए ही नहीं हैं। नरगिस हार मानकर वहां से जाने लगी। इस बीच तकरीबन 2 घंटे बीत गए। मेकअप मैन पंडरी दादा ने धीरे से नरगिस को बताया कि जिस बूढ़े बाबा से आपने दत्त साहब के बारे में पूछा, असल में वही दत्त साहब हैं। इतने शानदार मेकअप को देखकर नरगिस दंग रह गईं। उन्होंने मेकअप मैन पंडरी दादा को अपनी कीमती घड़ी भेंट कर दी। सुनील दत्त और नरगिस का ऐसा था दिलचस्प जीवन। नरगिस भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। फिल्म मदर इंडिया में बेमिसाल अदाकारी के लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। शादी के बाद नरगिस ने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। वो परिवार और समाज सेवा में लग गईं। लेकिन अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन जो नरगिस के भाई थे, उनके जोर देने पर नरगिस ने सत्येन बोस की फिल्म रात और दिन साइन की। सन 1967 में आई रात और दिन। इस फिल्म के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

सन 1958 कार्लोवी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नरगिस को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। 3 मई 1981 पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस के हिस्से की सांसें खत्म कर दी। एक अभिनेत्री इस दुनिया से विदा।

नरगिस महज 51 साल की थी। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि वो अपने लाडले बेटे को रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आते नहीं देख पाई। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी नरगिस दत्त के देहांत के बाद रिलीज हुई और संजय दत्त को इसका हमेशा से अफसोस रहेगा। सन 1982 में नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये फाउंडेशन कैंसर पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए आज तक काम कर रहा है। नरगिस एक जागरूक नागरिक, एक बेमिसाल अभिनेत्री, एक शानदार इंसान। अभिनेत्री नरगिस को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें थी अभिनेत्री नरगिस की, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

मेरी किस्मत की किताब है तेरे हाथों में, सोच लो क्या करना है। मेरी तन्हाइयों का हिसाब है तेरे हाथों में, सोच लो इस दिल का अब क्या करना है।

ये बहाने इन बहानों के फसाने हमें कर रहे हैं बेकरार। कब बनेगी फूल ये कली है बस इसी का इंतजार।

0: जो चाहते हैं कि रेशम सा हो रिश्ता हमारा, तो ये कोशिश आज ही करें।
1: रेशम की डोरी।

जब से लगाया है दिल, इस दिल का तो बुरा हाल है। छोड़ जाओगे गर कभी तो क्या होगा, जी को सता रहा यही खैर।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।